एग्जाम्स हैं यार, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अभी मोबाइल मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तुरंत तुरंत हम मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, स्क्रीन को देखने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो अभी से एक गिलास सुबह पानी पीना शुरू कर देंगे तो रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाने के कारण से जो थकावट हो जाती है, एकाग्रता नहीं होती है, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। छठा पॉइंट है, हृदय और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम एक गिलास पानी सवेरे उठ करके पियेंगे जिससे खून गाढ़ा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, दिल पर दबाव कम पड़ता है, और कहा जाता है कि यदि हृदय आपका स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है। सातवां पॉइंट आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोज सुबह पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, सर्दी जुखाम जैसी समस्याएं कम होती हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं। आइए अब हम बता दें आपको कि ये नियम कैसे करना है और कितना करना है। सवेरे उठते ही नित्य क्रिया करने के बाद में, यानी सोच के करने के बाद में, उठते ही आप आराम से कहीं जमीन पर उकूड़ू बैठ जाएं, या तो फिर आप कहीं पे भी आराम से मैट पे बैठ जाएं। अगर आपको इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप किसी कुर्सी पे, मेज पे, पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी आप बैठ जाएं। उसके बाद में एक गिलास गुनगुना पानी लें। कहते हैं कोई भी शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, एक गिलास पानी से करें। अगर आपको एक गिलास भी भारी लग रहा है तो आधे गिलास से आप शुरू करें, आधा गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पिए। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टेक्निक और बता दूं कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। पानी मुंह में रख करके आपको दांतों को चबाना है, जिससे जिस तरीके से आप खाना चबा के खाते हैं और हमें यह पाचन में सहायता मिलता है, ठीक वैसे ही पानी को भी चबा करके ही पीना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आप चाहें, जिन्होंने अपना वेट कम करना है, जिन्होंने अपनी टमी को अंदर करना है, तो यदि आप चाहें तो उस गुनगुने पानी में 2 से 3 ड्रॉप नींबू की और आधा चम्मच शहद डाल लें। अगर आपको सूट करे तो, मतलब अगर आपको सूट नहीं करेगा, आप 1-2 दिन उसको पी के देखें। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ सादा पानी में 2 से 3 ड्रॉप नींबू की आप डाल करके इसको पी सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें ध्यान देने योग्य बातें। बहुत ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है। जो टैप से बिल्कुल गुनगुना पानी आता है, या तो आप उसे पिए, या आप रात में एक गिलास पानी को भर के रख दें और वही पानी सुबह उठ करके पिए। एक साथ ज्यादा पानी न गटके, सिप सिप करके पानी पिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर से लें। सुबह की हेल्दी रूटीन को जानने के लिए आइए हम एक चीज आपको और बता दें, वॉशरूम रूटीन। पानी पीने के 5-10 मिनट बाद पेट साफ होने की आदत जो बन जाती है ना, इससे सबसे अच्छा होता है कि आपकी लीवर की डिटॉक्स हो जाती है, जिससे आपको गैस, एसिडिटी नहीं बनती है। योग प्राणायाम शुरुआत करने वालों के लिए, अनुलोम विलोम 5 मिनट, कपालभाति 3 से 5 मिनट, भुजंग आसन और पवन मुक्तासन 5 मिनट, और पेट की चर्बी, गैस, तनाव में ये बहुत मदद करता है। इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद में आप एक गिलास आराम से बैठ करके सिप सिप करके पानी पीजिए, और उसके बाद में आप अगर चाहें तो थोड़ा सा वॉक, यानी कि अगर आपकी छत खुली हुई है, अगर छत खुली हुई नहीं भी है तो आप अपने आंगन में गोल गोल घूम सकते हैं, या फिर सामने से जाएं फिर वापस लौटें, फिर सामने से जाएं और वापस लौटें, या तेज चाल आपको चलनी है योग प्राणायाम करने के बाद में और पानी को पीने के बाद में। उसके बाद में जब आपको पसीना आ जाएगा और आपको थोड़ी सी थकावट लगेगी, बस उसी समय आपको आराम कर लेना है और फिर आपका जो भी रूटीन है रोज का, उसे ये कर लेना है। एक्सरसाइज के 20 से 30 मिनट बाद ही आपके पास कोई भी नाश्ता, यानी कि आप हेल्दी ऑप्शंस जरूर कर सकते हैं, जैसे फल ले सकते हैं, 4-5 भीगे बादाम खा सकते हैं, ओट्स या दलिया खा सकते हैं, या फिर उबला हुआ एग ले सकते हैं, पनीर यदि हो तो, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पूरे दिन का जो आपको पानी पीना है वो है 8 से 10 गिलास।
थोड़ा थोड़ा करके पिए ताकि ये पूरा रूटीन एक दिन में पूरा हो जाए। तो ये थे कुछ आज के टिप्स जो कि हमने योग के साथ में किए। योग के साथ में पानी का महत्व, पानी को कैसे पीना है,

कितना पीना है और किस दशा में पीना है, ये सारी चीजें आपको आज हमने बताई। तो क्योंकि मैं इन सारे रूटीन्स को करती हूँ और आप भी करिए, फिट रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ में, तब तक करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता, योगा एक्सपर्ट, योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना खुद से भी ज्यादा और बहुत सारा ध्यान रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करते हैं अपने एक नए प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, शीतली प्राणायाम के बारे में मुझे लगता है कि काफी लोगों को जानकारी भी है और काफी लोगों ने यह नाम भी जाना होगा और सुना होगा। तो जानेंगे आज हम विस्तार से शीतली प्राणायाम के फायदे और अभ्यास करेंगे। इनके नुकसान तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कि अगर हमको नहीं करना है या किस अवस्था में करना है वो बताएंगे, और साथ में हम जानेंगे इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शीतली शब्द का अर्थ है ठंडा करने वाला, यानी वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर को शांत करती है और शीतलता की भावना दे सकती है। शीतली शब्द को मूल रूप से शीतल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ठंडा या सुखदायक। जी हाँ दोस्तों, शीतल नाम से ही आपको ये प्रतीत हो रहा है कि शीतली का अर्थ होता है शीतल यानी ठंडा। और यदि हम यह प्राणायाम के रूप में लाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, यानी हमारे संपूर्ण शरीर को किस तरीके से यह शीतल करते हुए शांत करता है। शीतली प्राणायाम का दैनिक अभ्यास हमारे शरीर के साथ मन को भी शांत करता है। शीतली प्राणायाम का मूल उद्देश्य शरीर के तापमान को ठीक करना और उनसे हमारे तांत्रिक तंत्र और स्व अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति युवा और आकर्षक हो जाता है और इसका दैनिक अभ्यास प्यास और भूख को नियंत्रित करने में आपको सक्षम बनाता है। शीतली प्राणायाम कुछ हद तक शीतकारी प्राणायाम के जैसा है, यानी दोनों का ही उल्लेख प्राचीन पाठ में हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। इस लेख में शीतली प्राणायाम के आसन को करने के तरीके बहुत सारे उल्लेखों में बताए गए होंगे, लेकिन साथ में सावधानियां भी बताई गई होंगी जो आज हम पूर्ण रूप से उल्लेख में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे शीतली प्राणायाम किस तरीके से होता है, यानी हम साथ में करेंगे अभ्यास। तो आइए दोस्तों, हम आसन पर बैठ जाते हैं और किसी भी मुद्रा में, यानी पद्मासन की स्थिति, सुखासन की स्थिति में आकर के हम लोग जमीन पर योगा मैट या चद्दर बिछा लें और एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक ध्यान करने के आसन में बैठ जाएं। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें, यानी पूरे शरीर को हम यह मान लें कि यह शरीर हमारा नहीं और हम बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठ जाएं। जहां तक संभव हो सके तनाव के बिना। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि यदि हमारे दिमाग में कोई भी स्ट्रेस या कोई भी तनाव, कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रही है कि हमें ये करना है, अभी मुझे ये काम निपटाना है, या हमें कॉलेज जाना है, या हमें ये जॉब में ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से, आप अपने मस्तिष्क से यह सारी चिंताओं को अलग करके बैठ जाएं। जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं, जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब या नालिका जैसी बन जाए। जैसे दोस्तों आप अपने मुंह में, जैसे आपकी जुबान है तो जुबान को इस तरीके से फोल्ड कर लें, यानी मोड़ लें,
जैसे वो नालिका का शब्द जैसे मैंने अभी लिया, तो जैसे नाली का रूप होता है यानी उसके बीच में एक जगह बन जाती है, उस तरीके से आपको मोड़ लेना है और इस ट्यूब के माध्यम से श्वास लेंगे, यानी जब वो रोल हो जाएगी तो उसी रोल के माध्यम से हमको श्वास लेनी है। श्वास लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस अंदर ले लें और वैसे ही मुंह को बंद कर लें। नाक के माध्यम से श्वास को लेंगे, जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब नालिका जैसी बन जाए और फिर हम जीभ को अंदर लेकर के श्वास को लेंगे। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। जीभ और मुंह की छत पर बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। यह एक चक्र है, हम इस चक्र को 9 चक्र के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम फिर से इस अभ्यास को एक बार करते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में हम बैठ जाएंगे और उसके बाद मुद्रा करके घुटनों पर हाथ रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरी तरह शरीर को शिथिल बना लें। जहां तक संभव हो सके तनाव के बिना ही जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं, जीभ के किनारे को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब या नालिका जैसी बन जाए। इस ट्यूब के माध्यम से श्वास लें। श्वास लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस ले लें और जीभ को मुंह में वापस लेने के बाद में उसे अंदर कर लें। नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ें, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न होगी। जीभ और मुंह की छत पर यानी आपके पूरे मुंह में बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। यह अभी एक चक्र संपूर्ण हुआ। यही चक्र आपको पूर्णता 9 या 10 बारी करना है और किसी भी समय आप इस चक्र को कर सकते हैं। इस प्राणायाम यानी शीतली प्राणायाम को करने से हमारे पास कोई इसमें समय की बंधता नहीं है कि अगर हमने अभी खाना खाया है तो हम नहीं कर सकते हैं, हम शाम के समय नहीं कर सकते हैं, हम इस प्राणायाम को किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि

जासूस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: ये मखमली सी सुबह आप सभी को मुबारक हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है मौसम बदला बदला सा नज़र आ रहा है, और कल तो तब हद हो गई जब एक साथ शाम में सभी के सेलफोन पर आया अलर्ट। ऐसा लगा क्या कुछ हो गया है ना, फिर लगा कि अच्छा अगले 24 घंटे में थंडरस्टॉर्म आने की बात कही गई है, और साथ ही साथ हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलने की बात कही गई है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और अब चलते हैं सीधे कहाँ, आपके थॉट ऑफ द डे की तरफ। सो चलिए लेट्स गो।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? और आज का जो थॉट है वो सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल बन करके आया है, सो जाहिर सी बात है कि इतना स्पेशल तो होना ही है, राइट? सो क्या कहता है आज का थॉट ऑफ द डे, चलिए आपको बताते हैं। और आज का थॉट ऑफ द डे कहता है, बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जी हाँ, और दरअसल ये खूबसूरत सी बात जो है वो गोपाल दास नीरज साहब की है। सो ये अंधेरे कैसे हैं? ये अंधेरे वैसे ही हैं जिसमें किसी और का दोष है नहीं, जिसमें कोई और रुकावट बन ही नहीं रहा है, जिसमें कोई हमारा बुरा नहीं चाह रहा है, जिसमें हम खुद ही फंसे हैं, जिसमें रुकावट हम ही हैं, जिसमें हम खुद ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, ये वो अंधियारा है जो हम सोच तो रहे हैं करने को लेकर, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए हैं। उस बात को लेकर के आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। सो ये मौसम बदलने का वक्त आ गया है, उन आदतों को पूरा करने का वक्त आ गया है जो बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, अब उस अंधियार को हटाने का वक्त आ गया है। जिस तरह से भी हो आपको शुरुआत करने का अब वक्त आ गया है। जी हाँ, शुरुआत की बात यही होती है कि शुरुआत में न कुछ समझ आता है, न उतनी हिम्मत बंध पाती है, लेकिन अगर करना शुरू करो तो रास्ते निकलते जाते हैं, आसपास की चीज़ें समझ में आने लग जाती है, और उसके बाद फिर आप भी समझ पाते हैं कि अब आगे क्या होना है और कैसे होना है। यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आज का ये थॉट ऑफ द डे आपको सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल कैसा लग रहा है, ये हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और अब वक्त है आपको एक बेहतरीन सा नगमा सुनाने का, और उसके बाद वापस आने का, आने के बाद देखने का कि भाई क्या कुछ लिख रहे हैं आप मॉर्निंग वाले शो में अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास। और साथ ही साथ आप सुनते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो कहाँ कहाँ से आप सुन रहे हैं और क्या क्या है आपके जहन में जो आप जाहिर कर रहे हैं चैट बॉक्स पर आकर के। वेलकम टू एवरीवन।

0: इतनी खूबसूरत छाँव क्यों नहीं पसंद आने वाली है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो की धड़कन। सो चलिए चलते हैं मैसेजेस की तरफ, और आपने मैसेजेस भेजे हैं 89.6 एफएम की एप्लीकेशन के चैट पर, यानी जो कुछ आप वहां लिखते हैं वो 89.6 एफएम के आरजेस तक लाइव पहुंच ही जाता है।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

वैसे आप सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आज 30 मई है और 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। जी हाँ, सो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इसके बाद आइए अब सीधे आते हैं चैट बॉक्स की तरफ और बताते हैं किसने क्या कुछ लिख भेजा है। सबसे पहला मैसेज जो आया है वो आया है नव्या का, गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से। और इसके बाद अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, लिखा है गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे। ऑफ कोर्स ये दिन बहुत खूबसूरत है, आज आपसे मुलाकात सुबह सुबह में हो रही है, तो क्यों नहीं ये नाइस होगा, क्यों नहीं। एंड इसके बाद प्रीति शुक्ल जी है फ्रॉम बहराइच, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आशु मिश्र जी हैं लखनऊ से, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, थैंक यू सो मच। एंड फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुनने वाले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉकर जी अदनान। एंड इसके बाद जो है वो आप लोगों ने थॉट ऑफ द डे पर रिएक्शंस भी दिए हैं। क्या रिएक्शंस दिए हैं? अनुष्का जी लिखती हैं वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच टू यू, एंड वेरी नाइस थॉट सर जी, लिखा है आशु मिश्र जी ने, बट आज का थॉट आए कब और कब थॉट भी बता दिया। जी हाँ, हम आए और आपको थॉट भी बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो रोटियां जल रही थी उसको बचाने के चक्कर में आपने थॉट को मिस कर दिया। अब खैर कोई बात नहीं, आज का थॉट था प्रीति जी आपको बता देते हैं। और अभी जो लोग जुड़े हैं 89.6 FM से, जस्ट जुड़े हैं, अभी आंखें मल ही रहे हैं और आकर के जुड़ चुके हैं, इतनी मोहब्बत है 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा से, सो उनको हम बता देते हैं कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। सो ये मौसम बदलने का जो जिम्मा है वो मैंने बताया था आपका है, किस तरह बदलना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो ये मौसम जो है वो हमें खुद से चेंज करना है, और इस तरह के चेंज मौसम जो है वो हमारी लाइफ में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चेंज लेकर के आते हैं, और वो चेंज तो होता ही रहेगा है। और अब क्या है वक्त, अब वक्त है आपको ले चलने का एक बेहतरीन से सॉन्ग की तरफ। क्यों भाई, मॉर्निंग का टाइम हो, इतनी प्यारी बातें हो और खूबसूरत से सॉन्ग ना हो तो कहाँ बात बनती है, तो फिर ऐसा लगता है कि बात जो है वो अधूरी रह गई है। इसलिए बातों को मुकम्मल होने के लिए मुकम्मल होना किसका ज़रूरी है, इन सॉन्ग्स का। और एक बात याद आ रही है जो कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, बात बहुत ही प्यारी है, इवन आपको सुन करके अच्छी भी लगने वाली है मुझे ऐसा लगता है, खैर कितनी अच्छी लगी ये हमको ज़रूर बताइएगा। लेकिन कहते हैं कि मौसम चाहे कोई भी हो, पर दिल में अगर प्यार की केसरिया धूप खिली हो तो हर दिन हसीन लगता है। सो सुनिए अपना प्यारा सा ये म्यूज़िकल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके 89.6 FM पर विद योर मॉर्निंग चॉक। अच्छा हम तुम

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: हजारों शेर मेरे सो गए कागज़ की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज़ की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और हमारे बीच से साहित्य जगत का एक इतना बड़ा सितारा जिसको जाने अनजाने आप अपनी जुबां पे लाते हैं, पर आप शायद कई बार ये नहीं जान पाते कि ये अल्फाज और ये अलकाब बशीर बद्र साहब के हैं। जी हाँ, 28 मई 2026 यानी परसों ही बशीर बद्र साहब हम सब को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। आइए जानते हैं कौन थे बशीर साहब।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता।

उर्दू जगत की, साहित्य जगत की एक ऐसे सितारे के बारे में जो अब फिलहाल इस दुनिया में तो नहीं रहे, दो दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ चले गए, लेकिन ये शख्सियत, ये सितारा हमेशा हमारे बीच में रहने वाला है। और ऐसे सितारे को शायद हम कभी भी नहीं भूल पाने वाले हैं। जी हाँ, कभी भी नहीं। सो 91 साल की एज में 28 मई 2026 को बशीर बद्र साहब रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले ऐसे कई किताबें, ऐसे कई अल्फाज, कई सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास में छोड़ गए हैं। और ये छोड़ी हुई बातें हमेशा हमारे पास में रहने वाली है ना। चलिए, एक ऐसे सितारे के बारे में बात जिन्होंने इतना कुछ दिया है पढ़ने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। दरअसल यूं ही नहीं बशीर साहब हुए, यूं ही नहीं ये पद्मश्री अवार्डेड हैं। दरअसल इनका पूरा नाम है डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जो एक शायर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक शायर कहना शायद काफ़ी नहीं होगा उन लोगों के लिए जो इनको जानते हैं, जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है, जो इनके बारे में थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इस शेर के ज़रिए पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बहुत ही आसान से शब्दों में सामने रखा। और जैसे ही इनकी डेथ की खबर सुनी, साहित्यकार अरुण डंग ने इसी शेर के साथ ही याद किया और कहा कि अपनी शायरी से वो लोगों की यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। सो आगरा में कई बार मुशायरों में शामिल होने आए थे और मुशायरों के मंच पर बशीर बद्र साहब की नूरानी मुस्कान उनकी जहन में अब भी ताज़ा है। अरुण डंग जी ने बताया कि साल 1997 की बात है, जब मिर्ज़ा गालिब की 200वीं जयंती पर ग्रैंड होटल में एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने मिर्ज़ा गालिब की नज़मों पर खुलकर दिल से बात की थी और इस इवेंट में अलग ही अंदाज में नज़र आए थे। एक बार उन्होंने जो शायरी शुरू की तो रात तक उनके शेर लोगों के दिलों में उतरते चले गए। कैंट एरिया में उनके छोटे भाई रहते थे, वो इसी वजह से कभी होटल में नहीं रुके। हास्य कवि रमेश मुस्कान साहब लिखते हैं कि ताज महोत्सव के साथ चित्रांशी संस्था की तरफ से आयोजित मुशायरे में वो आगरा आ चुके हैं और उसके बाद मेरठ दंगों के बाद उनकी शायरी में दर्द नज़र आने लगा था। उन्होंने डॉक्टर बद्र के साथ कई बार मंच साझा किया, वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। एक टीवी प्रोग्राम में वाह वाह में उन्होंने प्रोत्साहित किया। कवि पवन आगरी के मुताबिक वो टीवी प्रोग्राम्स में वाह वाह में उनके सामने अपनी प्रतिभा दिखाने गए थे। उस प्रोग्राम में डॉक्टर बद्र जज के रूप में शामिल हुए थे और आगरा में भी कई मुशायरों में आए थे। सो ब्रज की खड़ी बोली से जन्मी है उर्दू। जी हाँ, आगरा में साल 2003 में प्रताप नगर में इनका स्वागत किया गया। तत्कालीन जो मेयर थे किशोरीलाल माहौर, राजकुमार सामा, पूर्व विधायक को केशो मेहरा, शहजाद अली की मौजूदगी में बशीर बद्र साहब ने उर्दू का जन्म ब्रज की खड़ी बोली से बताया था। उन्होंने कहा था कि उर्दू ब्रज भाषा का आयाम है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने आगरा में अपने अभिनंदन के दौरान बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडियन कल्चर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में हर भाषा के सिर्फ दो प्रतिनिधि ही बुलाए गए हैं और उनमें से डॉक्टर बद्र साहब एक थे। जी हाँ, सो भाई ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने बताई जब ये रुखसत हो गए इस दुनिया से, यानी परसों 28 मई 2026 को। ऐसे न जाने कितने सारे अशार हैं, न जाने कितने सारे शेर हैं। जितना भी आप पढ़ेंगे बशीर बद्र

साहब की कविताओं के बारे में, गज़ल्स के बारे में, उतना ही आप इनके अंदर उतरते चले जाएंगे और इतने आसानी से कि शायद किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं बनेगी। जैसे बद्र साहब ने लिखा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में, हर पल एक पल यहाँ नया हादसा है, मैं कैसे जी रहा हूँ ये नेक मोजज़ा है ना। बशीर बद्री साहब लिखते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदोस्तान कहते हैं। शायद इनके शब्द जो हैं वो किसी एक ख़ास पर्सन के लिए नहीं है, किसी एक ख़ास काम करने वाले के लिए नहीं, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए, हर जगह रहने वाले लोगों के लिए, हर तरह की तकलीफ़ों का सामना करने वालों के लिए, हर तरह के इनकलाब में शामिल होने वालों के लिए। सब कुछ तो छोड़ गए हैं बशीर बद्र साहब अपने पीछे। अब जो उनको जान पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि ये सिर्फ एक शख्स थे या सच में एक ऐसा सितारा जो इस जहां में अब वापस तो ना आएगा, लेकिन जब भी चमकेगा हमको याद बहुत आएगा। और इनके अल्फाज हमेशा कई सारे मंचों से, कई सारे राजनेताओं के ज़रिए कहलाता रहेगा, शायद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कितना भी हो बशीर बद्र साहब जैसा आसान हो पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फिलहाल आपने ट्यून किया है गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कैसे
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: जी तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम 99.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो चलिए भाई अब वक्त हो गया है कुछ नई बातों की तरफ आपको ले चलने का, क्योंकि आज है सैटरडे मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग कोई भी हो, हम आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं और स्पेशली वो इन्फॉर्मेशंस जो आपकी होती है काम की और कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होता है। सो एक इंटर्नशिप के बारे में हम बताने वाले हैं। सो क्या है पूरी खबर, आइए आपको ले चलते हैं और बताते हैं इंटर्नशिप के बारे में। स्पेशली वो जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की खबर होने वाली है ये। समर इंटर्नशिप 2026 के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टार्टअप करना है क्या, पहला सवाल ये है। अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एक महीने की इंटर्नशिप है और 5 जून तक इसके फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट जो अभी यूजी कोर्स में हैं उनके लिए इन गर्मियों में कई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को किताबों से बाहर असल कामकाजी दुनिया को समझने का मौका मिलता है, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है। जो स्टूडेंट्स स्टार्टअप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर की फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, खासकर उनके लिए ये अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। आप मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MANIT के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम रोल्टा इनक्यूबेशन सेंटर के ज़रिए चलाया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो कि इस इंटर्न में शामिल होना चाहते हैं इंटर्नशिप में, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है पूरा करना होगा और अगले महीने से इंटर्नशिप की शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे में लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीट कर लें। जी हाँ, MANIT समर इंटर्नशिप 2026 क्या सीखने को मिलेगा? इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को फ्यूचर में काम आने वाली बातें समझने का प्रयास किया जाएगा, यानी उनको समझाने के प्रयास, जिसमें ज़िंदगी की जो असली प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानने और उनके सल्यूशन पर काम करना, इंजीनियरिंग और बिजनेस से जुड़ी हुई व्यावहारिक चुनौतियों को समझना और उसका सल्यूशन निकालना, अपने रिसर्च वर्क को अच्छे जर्नल में छपवाना, अपने नए काम को पेटेंट करवाना, अपने आइडिया को प्रोटोटाइप और मॉडल में कन्वर्ट करना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसकी बाजार तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस समझना, फंडिंग के ऑप्शन, स्टार्टअप की इकोसिस्टम के बारे में जानना, बनाए गए प्रोटोटाइप को ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसे बाजार में बेचने के लिए उतारा जा सके। इंटर्नशिप के बारे में बताया तो मनित समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 नाम है इसका। कौन अप्लाई कर सकता है? बीटेक, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीफार्मा के लोग कर सकते हैं। कब से शुरू हो गया है? 25 मई से एप्लीकेशन शुरू हो गई है और इंटर्नशिप की लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 5 जून 2026। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जानकारी कब मिलेगी? 10 जून 2026 को मिलेगी। रिपोर्टिंग डेट और टाइम 10 बजे से 15 जून 2026। इंटर्नशिप की जो अवधि है वो एक महीने की है। कब से शुरू हो रही है? 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलेगी। एक महीने की इंटर्नशिप काम करने की फ़ीस जो है वो 5000 होगी। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आओ पहले पाओ सीट पर के बेस्ड पर सिलेक्शन निर्धारित होगा। इसके लिए आप मैनिट समर इंटर्नशिप 2026 पर जा सकते हैं। इंटर्नशिप में अप्लाई क्या करना है, कैसे अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन से आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना है। अब इसमें अपना नाम, कोर्स, पढ़ने का साल, ईमेल, फ़ोन, इंस्टीट्यूट डिटेल्स, परसेंटेज, मार्क्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बाकी डिटेल्स भर करके HOD, डीन या इंस्टीट्यूट के हेड का हस्ताक्षर और मुहर लगवाना है, बगल में अपना साइन करना। इसके बाद नोटिफिकेशन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करके इसमें फॉर्म अपलोड करना है और बाकी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। इस इंटर्नशिप से जुड़ी किसी भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मनित की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोग्राम है जब बिजनेस से जुड़े हुए आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि आप भाई एक अच्छे बिजनेसमैन
एक बिजनेस टाइकून के तरह से खुद को एस्टैब्लिश देखना चाहते हैं, सो आपके लिए मैनेट की ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हो सकता है, ख़ास हो सकता है। स्पेशली जैसा बताया कि कोई अगर नए बिजनेस स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो आप अगर ख़ुद भी अंडर ग्रेजुएट हों या फिर आपका कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स में, तो उनको भी आप गाइड कर सकते हैं और एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब कर सकते हैं। सिर्फ एक महीने की बात है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को प्रैक्टिकल लाइफ का मिलने वाला है, यानी एक अच्छी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा चांसेस है चीज़ों को सीखने को लेकर के। सो आई होप कि भाई आप जो हैं इसकी तरफ ज़रूर रुख करने वाले हैं, और न सिर्फ रुख करेंगे बल्कि आप इसका फ़ायदा भी उठाने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट ट्रैक। सो चलिए, बहुत बढ़िया गाना है, सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाने वाला है, और साथ ही साथ हम आपको अब ले चलने वाले हैं इसके भी आगे, यानी सितारों के जहां में। स्टे ट्यून्ड।

आपको नहीं लगता है कि भाई मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज हो रहा है तो फिर रोमांटिक तो बन ही रहा है मौसम। और हमारे पास सॉन्ग्स जैसे कम थोड़ी ना है जो रोमांटिक सॉन्ग्स हो। सो चलिए, ये सुबह खुद ब खुद रोमांटिक बनती जा रही है, अपना रुख चेंज कर रही है। सो क्यों ना हम भी करें अपना रुख चेंज। और वैसे भी कुछ चेंजेस बड़े खूबसूरत होते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: सिर्फ 3 घंटे में 40 पुरुषों ने किया पीछा। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसको सुनकर आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं और आप सोचने वाले हैं कि ये ऑपरेशन आखिर किस लिए चलाया गया। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी और आप जान पाएंगे कि अच्छा इसके पीछे वजह ये थी, तो आप भी हैरान सच में हो जाएंगे और थोड़ी सी खुशी भी होगी कि इस तरह के भी ऑपरेशंस चलाने वालों की नीयत आखिर कितनी अच्छी है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो सिर्फ 3 घंटे में 40 पुरुषों ने महिला आईपीएस ऑफिसर का पीछा किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की आईपीएस बी सुमथी की। जी हाँ, रात के 12:30 बजे बिना वर्दी सादे कपड़ों में सुनसान बस स्टॉप पर अकेले खड़ी रहीं ताकि वो ये जान सकें कि आज भी अंधेरी सड़कें महिलाओं के लिए आखिर कितनी असुरक्षित हैं। इस दौरान हुआ यूं कि 40 पुरुषों ने उनका पीछा किया। कुछ ने बात करने की कोशिश की तो कुछ गलत नज़र से उनको घूरते रहे, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने जो किया वो आप भी सुनकर हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने दिखाया कि असली लीडरशिप आखिर होती क्या है। सो छेड़खानी करने वाले लोगों को अरेस्ट करने की बजाय उन्होंने उनका काउंसलिंग सेशन किया। जी हाँ, काउंसलिंग मतलब उनसे बातचीत की, उनको समझाया गया ताकि महिलाओं को लेकर के जो उनका बिहेवियर है वो बदला जा सके, उसमें बदलाव लाया जा सके। सो इस जाबाज अधिकारी की जो कहानी है सिर्फ इस ऑपरेशन तक मौजूद नहीं है, बल्कि तेलंगाना कैडर्स की इस आईपीएस ऑफिसर ने स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हुए कई सेंसिटिव असाइनमेंट्स संभाले हैं। सो माओवादी नेता के सरेंडर में भी इन्होंने उनकी अहम भूमिका रही है। इनकी पुलिसिंग हमेशा ग्राउंड बेस्ड रही है और शायद इसी वजह से इनकी पहचान जो है एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर के रूप में है जो सिस्टम को ज़मीन पर उतर करके समझती हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वर्दी नहीं पहनते बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। और अगर आपकी निगाह में भी ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा हो, कुछ भी ऐसा याद आ रहा हो, तो आप भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं। फिलहाल इनके बारे में जान करके आपको कैसा लगा ये हमको आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बी सुमथी ने जो इस तरह के ऑपरेशन को चलाया रात में निकल करके, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि आज भी ये सड़कें महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है, और 40 से ज़्यादा पुरुषों ने जिस तरह उनका पीछा किया और जिस तरह की हरकतें उनके साथ हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग करना शुरू किया, ये पहल सच में ग्राउंड पर उतर कर काम करने की एक अलग होती है। ऑफिस में बैठे बैठे किसी चीज़ को बता देना, उसका रूल निकाल देना एक अलग बात है। खुद उतर करके उस चीज़ का अनुभव करते हुए खुद सिस्टम का हिस्सा बन करके उसमें सुधार करने की कोशिश करना, तो ऐसे ऑफिसर्स ऐसे लोग जो है वो सच में समाज के हमारे रियल हीरो हैं। सो बी सुमथी भी जो हैं वो हमारे लिए एक रियल हीरो से कम नहीं है। सो बी सुमथी जो कि हैदराबाद की आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम सलाम करता है। उनके जज्बे को, उनके इस एक्टिविटी को, उनके इस ऑपरेशन को और उस पर की गए जो काम है, नेक काम यानी काउंसलिंग करना, ये सबसे अलग रहा जिसने इस पूरे ऑपरेशन की कहीं ना कहीं विचारधारा को ही बदल दिया पूरी तरह से। सो आप क्या सोचते हैं बी सुमथी के बारे में? ऐसे ऑपरेशन जिसमें आईपीएस ऑफिसर खुद उतर करके और गलियों में जा करके सच में खुद जाने कि कैसा है माहौल, कैसा सब कुछ चल रहा है, उसके बाद कोई ऐसी सख्त कार्रवाई करने के बजाय एक ऐसी इंसानियत की बात करें जिससे कि लोगों का हमेशा हमेशा के लिए नज़रिया ही बदल जाए एक ख़ास जेंडर को लेकर के, क्या मानते हैं आप? कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल काफ़ी लोग आ गए हैं नए जो कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आ करके हम उनसे भी होने वाले हैं मुखातिब।

0: ओ भाई बंटी सुन जरा।
1: हाँ मोंटू बोल।
0: अरे रुक तो जरा।
1: क्या?
0: जरा मुझे 15 फलों के नाम तो बता दे जा।
1: आम, इमली, अमरूद और बाकी एक दर्जन केले।
2: हैं?
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सो आइए बताते हैं भाई कौन कौन आ गया है। लास्ट मैसेज के बाद जो मैसेज आया है वो आशु जी ने कहा है, सर जी सही बताया, थॉट सुन नहीं पाए, लेकिन आपका थॉट हमेशा सुपर से भी ऊपर होता है, थैंक यू सो मच। पूर्णिमा लिखती हैं, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू। और साथ ही साथ पूर्णिमा लिखती हैं, सर आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट आपको कैसे पता, ये एक सवाल हो सकता है। फिलहाल मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। प्रीति जी ने लिखा है, लेडी आईपीएस जाबां जफसर को सल्यूट है उनके बुलंद हौसले के लिए, थैंक यू सो मच। एंड पूर्णिमा लिखती हैं, थैंक यू सर इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। हाँ बेशक, किन्ना चिर करके ये बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। इवन पहले मैं सोचता था इसको पढ़ूं क्या, लेकिन बाद में आया किन्ना चिर ही पढ़ना है। फिलहाल आपको ले चलते हैं एक पंजाबी सॉन्ग जी की तरफ जी, और जिसमें गिटार है जी। चलिए भाई गिटार सीखते हैं इस सॉन्ग के जरिए मिल करके। सुनते रहिए अपना मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग उंडा विद योर मॉर्निंग जोकर जयदान।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बैकबोन जट दी जी, बहुत दिन बाद मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना है, और ये गाना सुनते ही आपके मन में जो है, यार क्या यार दौर गुजरा है। अब तो ऐसे गाने होते हैं कि कब निकल जाते हैं कब आते पता ही नहीं चलता है, और कई तो ऐसे गाने होते हैं जिसमें न जाने हिंदी ही लैंग्वेज को या फिर किसी आसपास की रीजनल लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अलग कर देते हैं कि वो समझ से भी परे हो जाती है। बहरहाल कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जो बिल्कुल जैम की तरह होती है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

एक और ज़रूरी नोटिफिकेशन है जो कि आपको जाननी होगी, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर से या जिनके पहचान में किसी ना किसी ने इस बार नीट का पेपर दिया हो। सो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी नोटिफिकेशन है जो कि हम आप तक पहुँचाए देते हैं। दरअसल ये नीट के बारे में है। जी हाँ, जिस नीट के अभी फिर से लीक हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है, उसी नीट से जुड़ी हुई बात है कि नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन अभी साफ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एनटीए के हलफनामे से समझना होगा कि आखिर क्या होने वाला है। सो नीट पेपर लीक मामले में दोबारा एग्ज़ाम आयोजन के बीच में स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है। नीट का जो एग्ज़ाम है उसके आयोजन को लेकर अभी भी सिचुएशन साफ नहीं है। ये भविष्य में एग्ज़ाम ऑनलाइन यानी सीबीटी में होगा या ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में होगा। एनटीए ने नीट पेपर लीक मामले से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके अपनी जो सिचुएशन है वो स्पष्ट किया है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद में एग्ज़ाम सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े सुधार किए गए हैं। एजेंसी ने परीक्षा प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के अलावा एग्ज़ाम के आयोजन के बारे में बताया। सो एनटीए ने हलफनामे में बताया कि पेपर लीक विवाद के बाद कई सुधार हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर में बड़े लेवल पर सुधार किए गए हैं। अब आगे नीट यूजी री एग्ज़ाम का आयोजन पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सो हलफनामे में एनटीए ने भविष्य में नीट परीक्षा के आयोजन पर भी स्थिति स्पष्ट की है। एजेंसी ने बताया कि हाई ई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी यानी HPSE अब नीट यूजी 2026 की परीक्षा होने के बाद दोबारा बैठक करेगी। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर ये तय किया जाएगा कि आने वाली नीट की जो एग्ज़ाम्स हैं CBT मोड में हों या पहले की तरह पेन एंड पेपर मोड में ही जारी रखें। सो एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी HPSE ने 17 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में नीट यूजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कई अहम सुरक्षा के उपाय भी जो हैं वो सुझाए गए हैं। सो फिलहाल क्या क्या है, परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य CCTV की निगरानी, दूसरा है कम से कम 90 दिनों तक CCTV फुटेज सुरक्षित रखना, इसके बाद परीक्षा से पहले मॉक ड्रिल कराना, इसके बाद मौसम के हिसाब से आपातकालीन योजना तैयार करना, इसके अलावा बिजली बैकअप और मेडिकल की सुविधाओं की जाँच, फिर परीक्षा से पहले केंद्रों का विस्तृत निरीक्षण, इसके अलावा परीक्षा के बाद CCTV फुटेज का फॉरेंसिक एनालिसिस। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। NTA ने जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उससे ये बातें निकल के आ रही है। सो NTA परीक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक बदलाव की भी बात सामने आ रही है। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी इस तरह से कि 16 नए वरिष्ठ पद बनाए गए हैं, तकनीकी और सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, IIT, UGC, CBSE, KVS और IGNOU के एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी, परीक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, राज्य और ज़िला स्तर पर नई निगरानी व्यवस्था होगी, इसके अलावा परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में नई समितियाँ बनाई गई हैं, इसमें 18 राज्य स्तरीय समन्वय समिति यानी LCC और 621 जिला स्तरीय समन्वय समिति DLCC शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसी और NTA के अधिकारी शामिल हैं ताकि परीक्षा के दौरान सख्त निगरानी और बेहतर समन्वय हो सके। सो नीट UG री एग्ज़ाम 2026 21 जून को आयोजित किया जाएगा और नीट पेपर लीक मामले में जब दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित की गई थी तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगले साल से नीट UG परीक्षा को ऑनलाइन यानी CBT मोड में कराने की योजना पर काम किया जाएगा ताकि परीक्षा को ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। सो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है जो कि नीट के बारे में है।
हमने बताया था कि भाई नीट का एग्ज़ाम कई सारे स्टूडेंट्स ने दिया था, हो सकता है कई लोग जुड़े भी हों। सो आई होप कि आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंच गई होगी। और अब चलिए चलते हैं एक बेहतरीन से सॉन्ग को सुनने की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।

हाय बट ए सॉन्ग भाई बहुत प्यारा, बहुत रोमांटिक है और शायद इसीलिए हम और आप खुद को रोक नहीं पाते हैं जब ऐसे सॉन्ग्स प्ले हो रहे होते हैं सामने। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अब चलने का भी वक्त हो गया है और चैट बॉक्स पे बताया तो प्रमुख कुमार फ्रॉम श्रावस्ती से मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ में आप फ्रिक्वेंसी से जो लोग सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज का शो कैसा रहा, कैसा लगा, ये हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल इजाज़त लेने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते एक बात जो हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, दरअसल बात यह है कि कुछ गाने ना छुपे हुए ख़जाने जैसे होते हैं, ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शायद ऊपर ना मिले पर जब दिल के रेडियो पर बजते हैं तो समा बंध जाता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कैसा ही खूबसूरत सा सॉन्ग जाते जाते, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो 89.6 FM के स्टूडियो में, आपके मॉर्निंग शो का आरजे अदनान। सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। वापस से मुलाकात होगी संडे स्पेशल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, जिंदगी अहम है, जिएगा जरूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गांव की गूंज। आज हमारे गांव की गूंज पहुंची है उत्तर प्रदेश के एक सुंदर से गांव रामपुरवा में, जो कि अपने गोंडा जिले में स्थित है। अप्रैल का महीना है, चारों तरफ गेहूं की लहलाती बालियां, हरे भरे चने के पौधे इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।
9: और इसी प्यारी माहौल में आज आपके बीच में आई है हमारी गांव की गूंज की सुरीली टीम, जो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे लोकगीत सुनाएंगी।
10: और हम हैं आपकी प्यारी गीता, जया और समता, किरण। आइए हम आपको सुनाते हैं एक बेहद सुंदर सा लोकप्रिय लोकगीत।

0: अरे समता दी, जरा इधर तो देखो, यह सरसों का खेत कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी धरती पर पीले रंग की चादर बिछा दी है, और ये हल्की हल्की हवाएं फूलों को हिला रही हैं। सच में मन तो करता है कि यहीं बैठकर बस इसको देखते ही रहें।
1: सच कह रही हो जया, ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने खुद अपने लिए कोई त्योहार मनाने के लिए पीली चुनरी ओढ़ ली हो। हर एक फूल जैसे मुस्कुरा रहा हो और खुशबू इतनी मीठी कि मैं बता नहीं सकती।
0: सच, ऐसी खुशबू का एहसास हमें शहर में कहाँ होता है। मेरा मन तो करता है कि मैं हर हफ्ते गांव जरूर आऊं, और आती भी हूं।
2: और देखो ना, जब हवा थोड़ी तेज चलती है तो पूरा खेत ऐसे लहलहा रहा है जैसे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। और मुझे तो ये पूरा का पूरा पीले रंग का समुद्र ही लग रहा है। और उसके ऊपर, अरे वाह क्या बात है, ये गुनगुनाती हुई चिड़िया इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही है।
3: सच में ऐसे मौसम में दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। न कोई भाग दौड़, न कोई स्ट्रेस, बस ये खुला आसमान और ये खेत, ये शांति। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे खुद ही कुछ कह रही है। रुको रुको, यहाँ तो मन कर रहा है कि थोड़ी देर और बैठ लें और थोड़ा इस पल को जी लें। अब मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ थोड़ी देर तक, कहीं नहीं जाऊंगी। गीता मैम, आप लोग भी यहीं रुकिए ना प्लीज।
2: अरे हाँ हाँ, हम सब यहीं रुक रहे हैं। किरण जी, हमें तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, क्यों जया?
0: बिल्कुल,
2: क्यों समता?
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: ऐसे ही पलों में गीत जन्म लेते हैं जो सीधे दिल से निकलकर दिलों तक जाते हैं।
0: सच कहा गीता दी आपने, मन तो कर रहा है अगला गीत भी इसी खेत में खड़े होकर के गालें।
1: यहाँ तो हर मौसम हर फसल एक नई कहानी लेकर आता है, और मार्च का महीना तो फसलों की खुशियों का ही महीना होता है।
3: तो क्यों ना हम इस खुशी के मौसम में सरसों के खेतों पर समर्पित एक प्यारा सा गीत गाएं।

0: अरे जया इधर देखो, वो जो सामने बच्चा है उसे देखो कैसे खेत में घुसकर फसल तोड़ रहा है और कितनी मस्ती में है, जैसे ये पूरा खेत उसी का हो, और अपनी छोटी छोटी जेब में चने तोड़ तोड़ कर कैसे भर रहा है।
1: यही तो असली बचपन है, ना कोई टेंशन ना कोई जल्दी, बस ये खुला आसमान, मिट्टी में खेलना, खेतों से ताजे चने तोड़कर खाना और दोस्तों के साथ हंसते भागते रहना। ऐसे ही पल तो जिंदगी की सबसे सच्ची खुशी देते हैं।
2: सच कहूँ, इन्हें देखकर मन करता है कि हम भी फिर से बच्चे बन जाएं। काश ऐसा होता कि फिर से समय लौट आता तो कितना मजा आता।
0: चलिए अगला गाना हम इन शरारती पर बेहद मासूम बच्चों के साथ चलकर गाते हैं और इन नन्हे श्रोताओं के साथ सभी को ये गीत सुनाते हैं।

0: अब हम आ गए हैं खेतों के बीच, जहां हवा के साथ झूमती हुई गेहूं की सुनहरी बालियां और नीचे जमीन पर झांकते हुए हरे हरे चने के पौधे, ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी कहानी खुद ही सुना रहे हों।
1: और ये देखो, इस खेत के मालिक राम भुवन काका खेत में ही खड़े हैं। राम राम काका, कैसे हैं आप? और बताइए, आपके खेतों का क्या हाल है?
2: राम राम बिटिया, इस बार भगवान की बहुत दुआ रही। देख रही हो ये जौ गेहूं कैसे खड़ा है? ऐसे लगता है जैसे हर बाली सोने की बनी हो। और चना, उसका तो क्या ही कहना, उसमें खूब फूल आया है। हरी हरी बालियां देखो जरा, हाथ लगाओ, ऐसे लगेगा जैसे ताजगी बोल रही है।
0: सच में काका, ये गेहूं की बालियां कितनी भरी भरी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर बाली में मेहनत की कहानी भरी है।
3: ये जो हवा चल रही है ना, और साथ में ये जो बालियां हिल रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा खेत कोई धीमा सा संगीत गा रहा हो और धरती खुद अपनी खुशी व्यक्त कर रही हो। काका, आपको रोज खेतों में आकर कैसा लगता है?
2: अरे बिटिया, ये खेत खेत नहीं बल्कि हमारा परिवार है। जब बीज डालते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारा अपना बच्चा पाल रहे हैं, और जब ये लहलहाते हैं तो सारी थकान हमारी अपने आप ही मिट जाती है और दिल खुशी से भर जाता है।
1: सच में काका, आप लोगों की मेहनत इस देश की असली ताकत है। अच्छा काका, ये बताइए कि जब फसल अच्छी होती है तो घर का माहौल कैसा होता है?
2: बिटिया, अगर फसल अच्छी हो जाए ना, तो घर में त्योहार आ जाता है और रोटी बहुत स्वादिष्ट लगने लगती है।
3: यही तो असली जीवन है, मेहनत, प्रकृति और खुशी का अनूठा संगम।
4: और संगीत इन सबको जोड़ देता है। तो साथियों, इस मेहनती किसान और लहलहाती फसल के सम्मान में हम पेश करते हैं अगला गीत।

0: अरे देखो देखो, उधर से कौन आ रहा है? जया, लगता है वो दादी जी हैं। सफेद साड़ी में लाठी लेकर धीरे धीरे आ रही हैं।
1: इतनी दूर से इस उम्र में पैदल चलकर वो खेत में आई है। लगता है उन्हें संगीत से बेहद लगाव है। चलो हम लोग उनके पास चलते हैं।
2: नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है आप हम लोग का गाना सुनकर आई हैं।
3: नमस्ते बिटिया, खूब खुश रहो। बहुत अच्छा लगा तुम लोगन का शहर से हमारे गांव आए और सबको इतने सुंदर सुंदर गीत सुना रही हो। बस ऐसे ही गाते रहो, गांव की खुशबू इन गीतों में जिंदा रहनी चाहिए।
1: चलो तो दादी जी के आशीर्वाद के साथ एक और मधुर गीत हो जाए।

0: तो हमारे प्यारे गांव की गूंज के श्रोतागण, धीरे धीरे ये सुहानी शाम अब रात की गोद में समा रही है। आज का दिन बहुत ही प्यारा था। हमने गीत गाने के साथ साथ मिट्टी की खुशबू और मेहनत की ताकत को भी महसूस किया।
1: ये गांव, ये खेत और ये लोग ही तो हमारी असली पहचान हैं।
2: चलिए अब वापस चलते हैं, हम फिर आएंगे किसी नए गांव में नई कहानियों और नए गीतों के साथ।
3: तब तक इन यादों को संभाल कर रखिएगा और याद रखिए, जहां मिट्टी की खुशबू है वहां दिलों में सच्चाई है और वहीं बसती है गांव की गूंज।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और लेकर आई हूँ आज के आपके स्पेशल शो सैटरडे स्पेशल स्वास्थ्य संगिनी को। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी की। आज दिन शनिवार और शनिवार के दिन हम आते हैं और बात करते हैं आपके हेल्थ की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि भाई हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन अब हम जिस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज की बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसको बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है। आप बस इसे नॉर्मल ही खांसी समझ लेते हैं, नॉर्मल जुखाम समझ लेते हैं, या फिर हम कहें कि बस खराश समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज TB की। तो भाई, ये TB आखिर होता क्या है? भारत में ये कितना आम है? क्या इसके लक्षण हैं? क्या इसके कॉज हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट है? डाइट कौन सी लेनी चाहिए? और भी कई सारी बातें जो टीबी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, टीबी जिसके बारे में हमने बहुत सारे ऐड सुने, हम वो बात नहीं कर रहे, हम उस टीवी की बात नहीं कर रहे जिसमें आपने ऐड देखे होंगे, जिसके बारे में आपने ऐड देखा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि TB, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये आखिर में होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का नाम तो सुना ही होगा, कभी किसी पड़ोसी को हुआ होगा, कभी किसी रिश्तेदार को, या शायद आपने टीवी पर इसका विज्ञापन भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीबी असल में क्या होता है और ये हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है? आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये करते हैं कि आखिर ये टीबी होता क्या है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैल सकती है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी होगी और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होगी। ये बीमारी जो होती है ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, इसीलिए टीबी को आम भाषा में फेफड़ों की बीमारी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में ही हो, ये बैक्टीरिया शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी जा सकता है, जैसे कि हड्डी में, गुर्दे में, दिमाग में और लिम्फ नोड में भी ये जा सकता है। फेफड़ों की टीबी जो होती है वो पल्मोनरी टीबी कहते हैं हम उसको। ये बाकी अंगों की टीबी से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है, हमने तो नहीं बुलाया इसे, लेकिन ये आता कहाँ है? देखिए, ये एक ऐसे मेहमान है जो बिन बुलाए आ जाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि आखिर ये आता कहाँ से है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया हवा में फैलता है। जब कोई टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है, थूकता है या ज़ोर से बात करता है तो उसके मुंह से छोटी छोटी बूंदें हवा में जाती हैं और वहाँ पे घुल जाती हैं, जिसमें ये बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। और जब कोई स्वस्थ इंसान उस हवा से सांस लेता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में भी पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, सिर्फ बैक्टीरिया से शरीर में जाने वाला नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया के शरीर में जाने से नहीं होता टीबी। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वो मजबूत है तो आपका शरीर इस बैक्टीरिया को दबाए रख सकता है। इस अवस्था को हम लेटेंट टीबी भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया शरीर में है लेकिन बीमारी कोई लक्षण नहीं दिखाती और दूसरों में फैलती नहीं है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी जैसे कमज़ोर पड़ती है, ये बैक्टीरिया वापस से एक्टिव
5: हो जाता है।
4: अब आते हैं हम एक बहुत ही चौंकाने वाले सच की तरफ, यानी कि भारत में टीवी की स्थिति क्या है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कि कम क्षेत्रफल में बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और यहाँ पे लोग एक दूसरे के करीब ही रहते हैं। करीब का मतलब ये नहीं कि चिपके रहते हैं, करीब का मतलब ये है कि आपस में जो है हमारा जो घर है वो आपस में जुड़े रहते हैं, और एक ही छोटे क्षेत्रफल में बहुत लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो बीमारी है ये फैलती भी बड़ी आसानी से होगी। दोस्तों, भारत को दुनिया में टीवी का सबसे बड़ा बोझ उठाने वाला देश भी कहा गया है, और ये सुनकर दिल थोड़ा सा भारी जरूर हो जाता है कि हमारा भारत जहाँ विकास कर रहा है वहाँ पे इतनी बड़ी बीमारी से भी जूझ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया में हर साल जितने टीबी के मामले आते हैं उनमें से लगभग 26-28% अकेला भारत में होता है, यानी दुनिया के हर 4 टीबी मरीज एक भारतीय होता है। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 28 लाख नए टीबी के मामले सामने आते हैं, और हर साल लगभग 3-4 लाख लोग टीबी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़े बहुत ही बड़े हैं दोस्तों, और ये हमें सोचने पर ये भी मजबूर करते हैं कि क्या ये हमारा वही विकसित भारत है जहाँ पर हम एक टीबी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी टीवी देखते होंगे तो आपने एक इंसान को ज़रूर देखा होगा, जी हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन जी आते हैं और खास के टीवी का प्रचार करते हैं कि भाई टीवी से सतर्क रहिए, इसका इलाज कराइए। क्या इलाज है वो भी बताते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं, जस्ट जैसे ऐड आता है हमारी टीवी में हम उसे म्यूट कर देते हैं। बस इसी तरीके से आप जैसे उस ऐड को इग्नोर कर देते हैं, इसी तरीके से ये बीमारी और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। जब आप किसी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं होंगे, इग्नोर कर देंगे, तब ये बीमारी आपको जब होगी तब आप इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते होंगे, और यही होती है सबसे बड़ी गलती। देखिए, कोई भी बीमारी बड़ी छोटी होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके बारे में अवेयर कितने हैं। तो आज का शो आप बहुत ही ध्यान से सुने, अपने करीबियों को बिठा के सुनाएं, क्योंकि ये बीमारी कितनी बड़ी है ये तो आपको पता ही लग गया है। टीबी सबसे ज़्यादा दोस्तों उन लोग को होती है जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, जिनके घरों में कम रोशनी और हवा होती है, जिनका खान पान कमज़ोर होता है, और जिनकी इम्यूनिटी पहले से किसी कारण से या किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर है, जैसे कि HIV, डायबिटीज़ या फिर कुपोषण। भारत सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए निश्चय पोर्टल और टीवी मुक्त भारत 2025-2026 जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में और आने वाले कुछ सालों में भारत टीवी से मुक्त हो जाए। जी हाँ, टीवी मुक्त भारत, ये भारत सरकार और साथ ही साथ हमारे कई सारे देशवासी ऐसे हैं जो टीवी से जूझ रहे हैं या कभी उन्होंने टीवी को फेस किया होगा, आज वो स्वस्थ हैं। उनका भी यही सपना है कि टीवी से इंसान मुक्त हो जाए। देखिए, जब हम किसी बीमारी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब हम उससे जूझते हैं और जूझ के जब बाहर निकलते हैं, उस परेशानी को फेस करते, तब हमें पता चलता है कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है। इसे हल्के में लेना, भाई भंडारे वाला हलवा चलना समझना ना, इसकी आप बंद करें, क्योंकि ये टीवी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी है। इसे सीरियस लेने का वक्त अब आ चुका है। देखिए दोस्तों, जो ये टीवी है ये लाइलाज नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। बस ज़रूरत है जागरूकता की, सही जानकारी की। तो बने रहिए आज हमारे साथ, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य संगिनी में। आज शनिवार है और आज हम बात कर रहे हैं टीबी पे, और टीबी कैसी बीमारी है, कितनी ज़्यादा ये सक्रिय है और ये क्या होती है, ये चीज़ें अभी तक तो हम समझ चुके, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल से। क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, आप सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, क्योंकि आज बात हो रही है आपकी और आपके अपनों के स्वास्थ्य की।
6: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं। हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
6: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
5: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
6: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
5: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
6: अच्छा।
5: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
6: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
5: बहुत सारी,
6: जैसे?
5: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
6: जी।
5: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
6: और बाकी?
5: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
6: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
5: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
6: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
5: देखिए आकांक्षा जी,
6: जी
5: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
6: जी
5: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
6: जी।
5: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
6: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
5: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, कैम्सी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
6: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
5: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें, साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
6: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्यों?
5: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
6: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
5: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है, संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
6: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है, हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
9: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
10: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
11: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
12: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
13: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
14: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
15: गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर, वापस से स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और आज हम बात कर रहे हैं टीबी पे, यानी कि टीबी स्पेशल आज का शो चल रहा है। आपने ट्यून किया हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और आप आज के इस बहुत ही गंभीर विषय को समझ रहे हैं। देखिए, पिछले लिंक में हमने जाना कि टीबी क्या होता है और भारत में ये कितना आम है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की, जिन्हें जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, टीबी को कभी कभी साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे आते हैं और शुरुआत में इतने साधारण लगते हैं कि लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलिए एक एक करके इन लक्षणों को ध्यान से समझते हैं। पहला और सबसे अहम लक्षण है लगातार खांसी। दोस्तों, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये सामान्य में मत लीजिए, ये कोई जनरल बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव होने की एक संकेत आपकी बॉडी आपको दे रही है। ये टीबी का सबसे बड़ा और सबसे पहला संकेत होता है। शुरुआत में ये सूखी खांसी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ साथ बलगम भी आने लगता है, और अगर बलगम में खून के धब्बे दिखें तो बिना एक पल गवाए डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। दूसरा लक्षण दोस्तों इसका है बुखार। जी हाँ, वही बुखार जिसे हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं कि अरे बुखार ही तो है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। देखिए, ये कोई आम बुखार नहीं है, ये टीबी का बुखार है। टीबी का बुखार बहुत ही अलग किस्म का होता है। ये बहुत तेज नहीं होता, बल्कि हल्का हल्का लगातार बना रहने वाला बुखार होता है। अक्सर ये बुखार शाम को या रात को बढ़ जाता है। लोग इसे थकान या मौसम का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहीं देर हो जाती है और आपको टीबी अटैक कर चुका होता है। तीसरा लक्षण है इसका कि रात में आपको पसीना बहुत आएगा। टीबी के मरीज को रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इतना कि कपड़े और बिस्तर भीग जाएं। ये गर्मी की वजह से नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये शरीर में चल रहे संक्रमण की वजह से होता है। अगर ये लक्षण बार बार हो रहे हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। उसके बाद दोस्तों अगला लक्षण है वजन का तेजी से घटना। बिना किसी डाइटिंग, कसरत और अगर इन सब के बगैर आपका वजन तेजी से घट रहा है तो ये चिंता की बात है। टीबी में शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और शरीर की ऊर्जा बैक्टीरिया से लड़ने में खर्च होती रहती है, जिससे वजन आपका तेजी से गिरने लगता है। पांचवा लक्षण है भूख ना लगना। मरीज को खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती इसमें, और खाना देखकर वो मुंह फेर लेता है। इसी वजह से कमजोरी और वजन घटना और तेज हो जाता है। यानी कि अगर आप ऐसे देखें भाई, हमारे भारत में ना एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग स्वस्थ रहने की जो है निशानी, हम मोटापे को समझते हैं कि अगर इंसान मोटा है इसका मतलब वो स्वस्थ है, वो खुशहाल है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत में अधिकतर बीमारी जो है वो मोटापे से ही शुरू होती है और मोटापा एक उसका ही जो है सिम्टम होता है। लेकिन टीबी में दोस्तों उल्टा होता है। टीबी में आपका वज़न ज़ोर से घटता है, यानी बहुत स्पीड से घटता है। इसमें क्या होगा कि आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपको बिल्कुल भी खाना देख के आपका मन अजीब सा होने लग जाएगा, आप बिल्कुल भी खाने की तरह मतलब खाना आपको खाने का मन ही नहीं करेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप पतले भी होते जाते हैं। अब भाई अगर किसी मोटे इंसान को टीबी हुआ हो तो वो तो खुश हो जाएगा कि अच्छा हुआ हमारा वज़न घट रहा है। लेकिन अगर आपका वज़न घट रहा है और बहुत तेज़ से घट रहा है तो अगर आप चाहे मोटे हों चाहे पतले हों आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए क्योंकि इतनी तेज़ी से वज़न घटना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा लक्षण है थकान और कमज़ोरी। टीबी के मरीज को बिना कोई काम किए भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। सुबह उठने के बाद भी ताजगी नहीं लगती है, शरीर में जैसे ऊर्जा अब बची ही नहीं है, आपकी एनर्जी बिल्कुल गायब लगती है। तो अगर ऐसी सारे लक्षण आपको आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जैसे कि फेफड़ों में जब जब संक्रमण होता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन समझ के मत जाने दीजिए। अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर टीबी फेफड़ों के अलावा किसी और अंग में भी हो तो लक्षण अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर टीबी हड्डियों में हो तो आपकी पीठ और जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर टीबी आपके दिमाग में हो तो आपको सर दर्द, उल्टी और कभी कभी दौरे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीबी लिम्फ नोड में हो, गले और बगल में गांठ भी महसूस हो सकती है। और अगर ये टीबी पेट का है तो पेट में दर्द, दस्त और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों एक बात तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टीबी के लक्षण अकेले अकेले और साथ साथ दोनों ही तरह आ सकते हैं। अगर इनमें से दो या तीन लक्षण भी एक साथ आ रहे हैं या दो हफ्तों से ज़्यादा आपको खांसी बनी हो रखी है तो आप तुरंत किसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं या फिर किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ पे टीबी का मुफ्त जांच करवाएं। अब देखिए हम इंडियंस फ्री की चीज़ों के पीछे तो कुछ ज़्यादा ही भागते हैं और फ्री की चीज़ें सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होती है और हमें यूज़ करने का मन भी करता है। तो भाई ये सरकारी सुविधाएँ क्यों नहीं, स्पेशली जब वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हों। अगर आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या सरकारी अस्पताल जाएं और वहां पे मुफ्त टीबी का चेकअप कराएं। तो दोस्तों ये थी बात लक्षण की, लेकिन अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी इसके कारण क्या हैं ये भी हमें जानना होगा कि भाई देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी है और इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे इसके कारण क्या होता है, ये इसे ठीक कैसे करेंगे तो हम ठीक कैसे होंगे, उसको हम जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको बने रहना है हमारे साथ अपने रेडियो FM, अपने फेवरेट वाले रेडियो FM, रेडियो ज्ञाना 89.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।
16: अरे सुना
17: क्या,
16: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
17: वाओ,
16: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
18: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में

0: दी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
1: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
0: जी,
1: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
0: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
1: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
0: जी,
1: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
0: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
1: जी आज दीदी,
0: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
1: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
0: जी।
1: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
0: जी,
1: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
0: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
1: जी दीदी
0: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीवी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
1: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि दिन है आज शनिवार और आज हम बात कर रहे हैं टीबी की। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि टीबी क्या होता है।

है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी यानी कि टीबी के कारण, यानी आखिर ये बीमारी होती क्या है, क्यों है और किन लोगों को ज़्यादा इससे खतरा होता है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया हवा के जरिए फैलता है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया संपर्क में आना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए कुछ और कारण भी जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि लो इम्यूनिटी। दोस्तों, हमारा शरीर एक बेहतरीन मशीन है। जब भी कभी बैक्टीरिया अंदर जाता है तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन जब इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो तो क्या होगा, तो भाई ये बैक्टीरिया जीत जाएगा और आपकी बॉडी को बहुत बड़े संक्रमण में छोड़ देगा। HIV एड्स के मरीज को टीबी का खतरा खासकर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV सीधे इम्यूनिटी को नष्ट करता है और इससे हमारी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये जीत जाता है। दुनिया भर में टीबी से होने वाली मौतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा HIV पॉजिटिव मरीजों का भी होता है, तो अगर आपको HIV है तो ज़रूर से लगातार कुछ, मतलब आप महीने में एक बार या दो महीने में अगर आपको लक्षण थोड़े से भी दिख रहे हैं तो ज़रूर जाके इसकी जांच करवाएं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके दूसरे कारण यानी कि कुपोषण की। देखिए, भारत में टीबी के इतने मामले होने की भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो है कुपोषण। जब शरीर में ज़रूरी पोषण नहीं मिलता है या वो कुपोषित होता है, सही प्रोटीन नहीं होता है, विटामिन नहीं होते, मिनरल नहीं मिलते बॉडी को, तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और कमज़ोर इम्यूनिटी वाला शरीर टीबी के बैक्टीरिया को रोक नहीं पाता है। उसके बाद तीसरा कारण अगर हम उसकी बात करें तो वो है डायबिटीज़। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर घर में आपको 2 से 3 लोग जो हैं ये डायबिटीज़ के मिल ही जाएंगे और ये डायबिटीज़ डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में डायबिटीज़ एक बहुत आम बीमारी हो गई है और डायबिटीज़ के मरीज को टीबी होने का खतरा सामान्य लोगों से 2-3 गुना ज़्यादा ही होता है। शुगर की वजह से इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है और इसकी वजह से हमें टीबी हो सकती है अगर हमें डायबिटीज़ है। चौथा कारण है भीड़ भाड़ और ख़राब रहने की। दोस्तों, टीबी का बैक्टीरिया हवा में फैलता है और जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, कमरे छोटे हों, खिड़कियाँ बंद हों, हवा आती नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पे ये बैक्टीरिया घंटों तक जीवित रहता है और इसीलिए देखिए भाई, जो झुग्गी झोपड़ी होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, यहाँ पे टीबी को ज़्यादा ही फैलता है। पांचवा कारण है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ों को कि ये चीज़ ख़तरनाक है, लेकिन इसको हम हमेशा गले से लगा के रखते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है धूम्रपान और शराब। हर दीवार, हर इवन हम बात करें शराब की या फिर सिगरेट की, तो उसके पैकेट के पीछे खुद लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये जानलेवा है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये धूम्रपान और शराब का सेवन होता है। इवन जब कोविड टाइम पे जब लोग लड़ाई कर रहे थे अपनी ज़रूरतों की चीज़ की, खाने पीने की, वहाँ ही सरकार ने एक बहुत बड़ी लाइन शराब के ठेकों के सामने भी देखी, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे भारत के लिए। देखिए, ये जो शराब होता है ये आपको सिर्फ आपके ऑर्गन से फेल नहीं करता बल्कि आपको बहुत बड़ी बीमारियों की चपेट में भी लाता है और टीबी उनमें से एक है। देखिए, ये जो सिगरेट होती है, सिगरेट पीने से आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और बैक्टीरिया के लिए आसान रास्ता बना देते हैं कि वो आपकी बॉडी में एंटर हो और अपना जो काम है वो करें। शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर आपको हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि जो धूम्रपान होता है और शराब होता है, ये अगर आप करते हैं तो आपको कैंसर ही नहीं, आपका ऑर्गन फेल ही नहीं, बल्कि आपको टीबी जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। उसके बाद छठा कारण की अगर हम बात करें तो अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते हैं या फिर कोई हैवी दवाई लेते हैं तो इससे भी आपको टीबी हो सकता है, या फिर हो सकता है, इट मीन्स कि यही दवाई ही उसका कारण नहीं होती है। देखिए, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये आपकी इम्यूनिटी पर काम करती हैं। कुछ बीमारियों में डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देते हैं, जैसे अर्थराइटिस है आपको, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर उसके बाद जो दवाई चलती है उसमें स्टेरॉइड भी होती है। ये दवाएं जो होती हैं ये इम्यूनिटी को कम करती हैं जिससे टीबी का खतरा बढ़ जाता है।
तो भाई

0: ये थी कुछ ज़रूरी कारण जो हमें जानना चाहिए कि क्या होता है। हमें अपने दुश्मन की सारी इस जो खबर होती है वो हमारे पास होनी चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना ज़्यादा सक्रिय है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द शो, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तो कराना है ना। अगर हमें टीवी हो गया या फिर हम इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या डाइट ले सकते हैं आप, उन सभी पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। और आज हम बात कर रहे हैं टीबी पे। टीबी एक बहुत गंभीर बीमारी है, ये हमने जाना, इसके लक्षण जाने और इसके कारण भी जाने। लेकिन अब बात करते हैं ज़रूरी, यानी कि क्या इसका ट्रीटमेंट है और कैसे ये ठीक होगा। और हम सबसे बड़ी बात, हमारे जो पूर्वज कहते आते थे, दादी दादा नानी नाना सब, कि बेटा सबसे ज़्यादा दम है खान पान में। तो क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, कैसे आप इसका इससे बचाव कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन भाई, इस पे बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो आपको पता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ, पानी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इस गर्मी में लग चुका है नौतपा। नौतपा यानी नौ दिन जो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। किसकी? पानी की। भाई गर्मी की, ऊपर से भगवान ऐसा लगता है कि आग के गोले बरसा रहे हैं। लेकिन इस आग के गोलों में बिल्कुल अपना ध्यान रखना ना भूलें। ध्यान रखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो कि आपको मिलेगा पानी से। देखिए, इस नौतपे के दौरान सभी आपको, जो पंडित हैं वो भी कहेंगे, डॉक्टर्स भी आपको यही कहेंगे कि कोशिश करें कि आप 11 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे के बीच में अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको जाना ज़रूरी है तो इससे पहले या इसके बाद जो है अपना काम निपटा लें। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज़ से ड्रेन हो जाती है और आप जो है बेहोश हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की, यानी कि टीबी की ट्रीटमेंट की। तो ये जो आज का आखिरी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अब हम बात करने जा रहे हैं टीबी के इलाज और सही खान पान की। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बहुत साफ कर देती हूँ आपको कि टीबी को पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बस ज़रूरत है सही इलाज की, सही समय पर एक सही अनुशासन के साथ जीने वाली ज़िंदगी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलाज की। इलाज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी जो कि आपको डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं और आप इसके थ्रू अपना ये है प्रोसेस स्टार्ट भी करते हैं। भारत में टीबी का इलाज डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के ज़रिए होता है। इसमें मरीज़ को हर दिन एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की निगरानी में दवाएं दी जाती हैं और ये दवाएं पूरी तरीके से मुफ्त होती हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल और प्राथमिक सेवा केंद्र में आप जाएंगे, आपको ये दवाई और ये थेरेपी आपको मिल जाएगी। इलाज कितने समय तक होता है, ये आपके मन में बहुत ही बड़ा सवाल ज़रूर आता होगा। देखिए, ये साधारण टीबी का इलाज 6 महीने का होता है। पहले 2 महीने में 4 दवाएँ एक साथ दी जाती हैं और बाकी के 4 महीने में 2 दवाएं चलती हैं। एमडीआर टीबी यानी कि दवा प्रतिरोधक टीबी का इलाज 18 से 24 महीने तक का हो सकता है। दोस्तों, एक बात आप बिल्कुल से गांठ बांध लें, वो ये है कि दवाएं कभी बीच में ना छोड़ें। 2 महीने में ही ठीक लगने लगता है अगर आप रेगुलर दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी गई। बैक्टीरिया अभी भी शरीर में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़िद्दी होता है, हाँ ज़िद्दी कह सकते हैं इसको, और ये जाने में थोड़ा सा वक्त लेता है। दवाई छोड़ने से वो दवा प्रतिरोधक बन जाते हैं और फिर इलाज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निश्चय पोषण योजना की। देखिए, सरकार टीबी के मरीज को हर महीने 500 रुपये आर्थिक मदद के रूप में देती है, जिससे कि वो एक अच्छा खान पान अपना सके और इलाज भी इसका जारी रख सके। इसके लिए निश्चय पोर्टल पर रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं खान पान की, जो कि इस इलाज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। दोस्तों, टीबी में शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए खाना ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ताकत दे, इम्यूनिटी बढ़ाए और दवाओं को काम करने में मदद करे। अब बात आती है आप सभी के जहन में कि आखिर क्या खाएं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रोटीन युक्त भोजन खाना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, अंडे, मछली, चिकन, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं और आप इनका सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन से टूटे हुए टिश्यू जुड़ते हैं और शरीर ठीक भी होता है। दूध और दूध से बने उत्पाद भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपको रिकवर होने में, जिसमें आप दही, पनीर, छाछ,
ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इनसे कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही मिलते हैं। ताज़े फल और सब्जियां खूब सारा खाएं। देखिए संतरा, आंवला, नींबू, अमरूद, इसमें क्या होता है, विटामिन सी। और ये बिल्कुल विटामिन सी से बिल्कुल कह सकते हैं विटामिन सी के लड्डू होते हैं ये, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और इस समय आपको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद गाजर, पालक और हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है, जो कि फेफड़ों को ठीक करने में मदद करता है। अनाज और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी, दलिया, ये शरीर को ऊर्जा देती है। खूब पानी पिए, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे आपको और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना है और इसे अपनाना भी है, मतलब इस पर अमल भी करना है, वो है कि क्या नहीं खाना है। हम इंडियंस की ज़ुबान बड़ी चटोरी होती है दोस्तों, चाहे मैं हूँ आप हो बिल्कुल भाई, हम जैसे देखते हैं कि गर्मा गर्म आलू टिक्की महक रही है, हमें चाहिए, हमें समोसे चाहिए, हमें शाम के स्नैक में कुछ चटपटा चाहिए, मसालेदार, और अगर बाहर का मिल जाए तो हो भाई बात ही बन जाए। लेकिन अगर आप टीवी के मरीज हैं तो इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने जो क्रेविंग्स है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तला भुना और जंक फूड आपको कम खाना है, इसको आप कम करें। शराब और धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें। बहुत मीठी चीज़ों का भी कम सेवन करें और बाहर का खाना अवॉइड करें। दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो ये हैं कि टीबी के मरीज को घर में अलग कमरे में रहना चाहिए, खासकर शुरुआती 2 हफ्तों में, जब तक दवाएं असर ना करें तब तक। खांसते या छींकते समय मुँह को ढक के रखना है, इधर उधर आपको थूकना नहीं है, टिशू का इस्तेमाल करना है। मरीज के परिवार को BCG वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। ये BCG जो वैक्सीन होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आपके घर में किसी को TB हो रखा हो, खासकर अगर आपके घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और अगर आपके आसपास कोई है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांस रहा है तो उसे प्यार से समझाएं, डराइए बिल्कुल भी नहीं, और उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। याद रखिए TB का इलाज मुफ्त है और TB ठीक हो सकती है। दोस्तों ये था आज का स्पेशल शो स्वास्थ्य संगनी, जी हाँ स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हमने बात की TB की। आशा करती हूँ कि आपने सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए सरकार और हम सभी का यही एक प्रण होना चाहिए कि इस भारत को, हमारे उभरते चमकते भारत को TB मुक्त बनाना है, क्योंकि अभी हमने जाना कि TB कितना ज़्यादा अपना प्रकोप दिखा रहा है भारत में। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारा आपसे विदा लेने का, मिलेंगे आपसे फिर अगले बुधवार और अगले शनिवार, जिसमें आता है आपका सेहत वाला कार्यक्रम यानी कि स्वास्थ्य संगनी, जिसमें बात होती है आपकी हेल्थ की, आपके अपनों के हेल्थ की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में पानी पीजिए और अपना और अपनों का खास कर ख्याल रखें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम,

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार, स्वागत है साथियों और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आज की बात थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शोर नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की। और खास बात यह कि हर साल 17 मई को पूरे विश्व में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है ताकि हम सब इस खामोश खतरे को पहचान सके।
1: धन्यवाद आरजी साहब और हमारे सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर यूं ही नहीं कहा जाता है। दरअसल ये बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर के अंदर अपना असर दिखाती रहती है। व्यक्ति को ना दर्द होता है ना कोई खास तकलीफ महसूस होता है, लेकिन अंदर ही अंदर रक्तचाप बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुँचाने में लगता है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक कई बार स्थिति गंभीर हो चुकी होती है।
0: मतलब आदमी बिल्कुल ठीक महसूस करता रहता है, रोजमर्रा का काम करता रहता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके शरीर के अंदर कोई समस्या पल रही है। ये तो सच में बहुत डराने वाली बात है सियातिया जी।
1: बिल्कुल, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है कि आज दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें ये भी पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जो लोग जानते भी हैं उनमें से भी बहुत कम लोग इसे सही तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। इसका कारण है कि नियमित जांच का अभाव, दवाइयों को बीच में छोड़ देना और जीवन शैली में जरूरी बदलाव न करना।
0: सेहतिया जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत की स्थिति कैसी है? क्या यहाँ भी हालत इतनी ही गंभीर है या उससे भी ज्यादा चिंताजनक है?
1: भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है आरजे भाई। यहाँ हर तीसरा आदमी किसी न किसी रूप में हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। पहले ये माना जाता था कि ये बीमारी केवल शहरों या अमीर लोगों तक सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाँव में भी ये तेजी से फैल रही है। आज किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण है कि बदलती जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधि की कमी और बढ़ता तनाव।
0: तो मतलब अब ये सिर्फ उम्र या पैसे से जुड़ी बीमारी नहीं है बल्कि ये हमारे रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा बनती जा रही है।
1: बिल्कुल सही समझा आपने। अब ये बीमारी सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ चुकी है। जैसे ज्यादा नमक का सेवन, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने की आदत, दिन भर बैठकर काम करना, शारीरिक मेहनत का कम होना, तनाव लेना और पर्याप्त नींद न लेना, ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है।
0: आपने इसे साइलेंट किलर कहा, जरा हमारे श्रोताओं को और अच्छे से समझाइए कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होते तो लोग इसे गंभीरता से क्यों ले?
1: देखिए आरजे अदनान, जब ब्लड प्रेशर लगातार ज़्यादा बना रहता है तो ये धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर असर पड़ता है जिससे स्ट्रोक हो सकता है। किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आँखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के होता रहता है, इसलिए लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक गंभीर लक्षण सामने आते हैं तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है।
0: मतलब खतरा चुपचाप बढ़ता रहता है और इंसान अपनी

0: रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी रहता है कि उसे अंदाजा ही नहीं होता। ये सोच कर ही डर लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, वही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है। शायद इसीलिए आज इस बात पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जागरूक होना होगा और वक्त रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है सेहतिया भैया? अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो साइलेंट किलर से खुद को कैसे बचा सकता है, तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए?
1: देखिए आरजी साहब, सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम है कि नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराना। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति को, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ क्यों ना हो, महसूस करता है, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा, ये बीमारी बिना लक्षण के भी हो सकती है। इसलिए केवल मैं ठीक हूँ महसूस करना काफ़ी नहीं है, जानकारी ही बचाव का पहला कदम है।
0: और ये जांच कहाँ करवाई जा सकती है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा या ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत आसानी से और कई बार तो मुफ्त में भी उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, एनएम और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी भी गांव जा जाकर ये जांच करते हैं। कई जगहों पर तो छोटे क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर भी मशीन उपलब्ध होती है। मतलब अब जांच करवाना मुश्किल नहीं है, बस हमें खुद पहल करनी होगी।
0: तो सेहतिया जी, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता है, तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए?
1: बहुत कठिन नहीं है भाई, लेकिन जरूरी है कि हमें इसे नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहले नमक का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक सीधे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना कम से कम करना चाहिए। हमें अपने भोजन में ताज़े फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। रोज थोड़ा बहुत चलना फिरना, जैसे सुबह या शाम की सैर, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तनाव को कम करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो ध्यान हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या कोई पसंदीदा काम करना हो। और सबसे ज़रूरी बात है कि तंबाकू और शराब से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ब्लड प्रेशर को बिगाड़ते हैं।
0: मतलब छोटी छोटी आदतें जो हम रोज़ करते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा असर डालती है।
1: बिल्कुल, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर दवा देते हैं, तो उसे नियमित रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता है, वो दवा लेना बंद कर देते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, इसे लगातार नियंत्रण में रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ देने से स्थिति और ख़राब हो सकती है।
0: अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रहे, तो क्या शरीर कुछ संकेत देता है? क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हम तुरंत सावधान हो जाना चाहिए?
1: हाँ, जब स्थिति गंभीर हो जाती है, तब कुछ संकेत सामने आ सकते हैं। जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना, बहुत तेज सिर दर्द होना, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, सांस फूलना या आँखों के सामने धुंधला दिखना, ये सभी संकेत खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समय पर इलाज ही जीवन बचा सकता है।
0: सेहतिया जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक कि वो किसी असली घटना से ना जुड़े। क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये एहसास करा सके कि समस्या कितनी गंभीर है और समय पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है?
1: हाँ जी भैया, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे ही एक गांव में राम प्रसाद जी रहते थे। उम्र करीब 45 साल, मेहनती किसान, दिन भर खेत में काम करते थे। देखने में बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत शरीर और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, इसलिए वो खुद को पूरी तरह ठीक मानते थे। गाँव में जब भी स्वास्थ्य कैंप लगता था, तो लोग उन्हें कहते, राम प्रसाद तुम भी चले जाओ, जांच करा लो। लेकिन वो हंसकर टाल देते थे, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो रोज़ मेहनत कर

0: बता हूँ मुझे बीमारी कैसे होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते करते अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़े। परिवार वाले घबरा गए, तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और जो बात सामने आई उसने सबको हिला दिया। रामप्रसाद जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि उनके दिमाग की नसों पर असर पड़ चुका। डॉक्टर ने बताया कि ये समस्या अचानक नहीं हुई है, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन कभी जांच न कराने की वजह से पता ही नहीं था। परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी कि अगर हम पहले जांच करवा लेते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगा। उस घटना के बाद रामप्रसाद जी की ज़िंदगी बदल गई। आज वही रामप्रसाद जी गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई गलती मत करना जो मैंने की, बीमारी आने का इंतजार मत करो, समय पर जांच कराओ। वो अब हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, दवा लेते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ अपनी नहीं पूरे गाँव की चिंता करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं उतना होते नहीं हैं, और एक छोटी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है।
1: साथियों, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी या साधारण समस्या नहीं है। ये चुपचाप शरीर के अंदर अपना असर दिखाती है और जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक कई बार नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं तो शरीर के संकेतों को समझें, छोटी छोटी सावधानियों को अपनाएं तो इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। क्यों सेहतिया भैया?
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे अदनान। मैं भी हमारे सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांचते रहिए, क्योंकि यही सबसे पहला और जरूरी कदम है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, ज़्यादा तला भुना और पैकेट वाला खाना कम कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल कीजिए, चाहे वो रोज़ थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। और अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे बीच में कभी ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसे लगातार नियंत्रण में रखना पड़ता है।
1: और साथियों, आज का हमारा संदेश बहुत ही सीधा बट बहुत ही ज़रूरी है। खामोश है ये बीमारी पर इसका असर भारी, अगर समय पर ध्यान न दिया तो पड़ सकती है जिंदगी पर ये भारी। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे।
0: याद रखिए, स्वस्थ रहना है सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज की भी सुरक्षा है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपने अपनों को भी सुरक्षित रखते हैं।
1: इसी के साथ आज हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, पर तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
2: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे
2: ताकि शरीर शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे
2: जब पूरा

0: समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा,
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
0: तभी भारत समृद्ध बनेगा,
1: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई,
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं आपका दोस्त आरजे अदनान आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नियमित जांच कराते रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभकई में एक नए विषय और नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।

आए। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर

0: तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: स्वागतम सुस्वागतम। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है लिसनर्स आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में। और हाजिर है आपकी सहेलियां, बिल्कुल सहेलियां, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं तीन की तिगड़ी। तीन की तिगड़ी का मतलब है कि भाई किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी सहेलियों को डेली लाया करिए, तो आज भी मैं उन्हीं सहेलियों के साथ आई हूँ आपसे बात करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये आज अंशिका जी पहले और भाई आर्य समता हमारी जो है प्यारी सी क्यूट सी वो कहाँ गायब है। तो आर्य समता जी गई हैं भाई हॉलीडेज पे, यानी कि थोड़ी सी छुट्टियां जो है, वैसे तो मैम छुट्टी बिल्कुल नहीं लेती है, वो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है और उनका बिल्कुल मन नहीं होता है कि वो अपने लिसनर्स को छोड़ करके कहीं भी जाएं। लेकिन आज जो है उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं, थोड़ी हॉलीडेज है। देखिए मई जून का ये जो मंथ होता है ना, ये हर किसी के लिए थोड़ा मस्ती करने का, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने का मंथ होता है। सभी सोचते हैं कि हम छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाएँ, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो वो भी गई हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और साथ ही साथ में मुझे जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके गई हैं कि आप हमारे लिसनर्स को जो है अच्छे से शो करें और हमारे लिसनर्स का ख्याल रखें। तो आज मैम तो हमारे साथ फिलहाल अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो जहाँ भी होंगी सुन रही होंगी अपने लिसनर्स को और हमें भी सुन रही होंगी और साथ में बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी बातें भी उनके मन में इस समय चल रही होंगी। तो आई होप कि वो सुन रही हों। और चलिए लिसनर्स, तो बढ़ते हैं शो में आगे और हमारे साथ हैं हमारी जो दो सहेलियाँ, उन्हें हम फटाफट से वेलकम कर लेते हैं और आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारी सहेलियों का। तो पहले हमारे साथ जो बैठी हुई हैं हमारी सखी हैं वो हैं संध्या जी। तो सबसे पहले संध्या जी स्वागत है, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? हेलो एवरीवन,
0: हम तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं, क्योंकि आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे। तो चलिए लिसनर्स, अब संध्या जी का तो वेलकम हो गया, अब चलते हैं उनकी प्यारी सी छोटी सी बहन की तरफ जो कि है हमारी सुहानी जी। और सुहानी जी यही सोच रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, तो बारी आ गई है। तो कैसी है सुहानी जी?
2: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: जी हम तो बहुत अच्छे हैं। ओके बिल्कुल, हम तो बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ भाई हमारा सुपर से भी ऊपर वाले जो सैटरडे है उसका आगाज हो गया है लिसनर्स। और आज आप सोच रहे होंगे कि सुपर से ऊपर वाले सैटरडे में हमारे लिए क्या है, तो आज है आपके लिए बहुत कुछ धमाल। लेकिन धमाल से पहले आते हैं कि बहुत ही प्यारी सी जो है दोपहरिया है और हमारी सुन सहेली की जैसे कि औपचारिकता है कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली। और दोपहरिया बहुत ही प्यारी सी है, मतलब आज तो प्यारी सी कहेंगे क्योंकि सूर्य भगवान ने अपनी जो कृपा है वो हमारे ऊपर थोड़ी सी कम कर दी है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्यों संध्या जी?
1: यस मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है।
0: हाँ, तो इस प्यारे से मौसम के साथ और हमारी प्यारी प्यारी सखियों के साथ आप सभी को शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और फटाफट से आ जाइए और चलिए शुरू करते हैं शो को। तो आज हमारा पहला सेगमेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि होता है पोइट्री का, और आज सैटरडे यानी कि हमारा दिन है प्यार को लेकर, कुछ लव शव को लेकर बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पोइट्री सुनाऊं और शुरू करूं, तो भाई हमारी दो दो सखियां बैठी हैं, तो चलिए कुछ इनसे जानते हैं कि प्यार जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि प्यार होता क्या है। भाई देखिए प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो पहले हम संध्या जी से जानेंगे और फिर सुहानी से भी जानेंगे और फिर मैं आपको पोइट्री सुनाऊंगी। तो रिक्वेस्ट करते हैं संध्या जी से कि संध्या जी आप बताएं आपके शब्दों में प्यार क्या है।
1: प्यार वो मेरे लिए तो वो चीज़ें हैं शायद जो मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ,
0: okay.
1: क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर हाँ अगर सही इंसान से हो तो।
0: तो इसे कहते हैं गागर में सागर, यानी कि कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी संध्या जी ने कि अगर सही इंसान से हो तो प्यार ऐसा एहसास होता है जिसे बयां भी नहीं किया जाता। तो चलिए अब चलते हैं सुहानी जी की तरफ और उनसे जानते हैं कि प्यार क्या होता है। सुहानी आप बताएं।
2: प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, जैसा कि आपने बताया कि प्यार एक ऐसा एहसास है जिसको हम बयां नहीं कर सकते। तो बात तो सही है, किसको हम बयां नहीं कर पाएंगे ना, तो कैसे बता दें क्या चीज़ है।
0: ओके भाई, बयां नहीं कर सकते हैं तो कैसे बता दें, लेकिन लिसनर्स हम बयां कर सकते हैं आपको, मतलब हम से मेरा मतलब था कि मैं और मेरी दोनों सहेलियां आपको बयां कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक प्यारी सी ऐसी पोइट्री है जो आपको बयां करके बताएगी कि प्यार क्या होता है। तो सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि प्यार है क्या। तो आज हमारी पोइट्री का जो शीर्षक है वो है प्यार का एहसास। तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं कि प्यार होता क्या है। नजरें मिली तो धड़कन मचल उठी, बिना कहे ही ये बातें बदल उठी, तुम्हारी सादगी का ये कैसा असर है, तुम्हारी सादगी का ये कैसा असर है कि अब हर खुशी का रास्ता तुम पर है। लबों पर मुस्कान और आंखों में तेरा सुरूर है। मोहब्बत का ये एहसास ही कुछ इस तरह भरपूर है। न कोई शिकायत है न कोई आरज़ू, न कोई शिकायत है न कोई आरज़ू, मेरी रूह में समाई है बस तेरी ही जुस्तजू, मेरी रूह में समाई है बस तेरी ही जुस्तजू। कुछ इस तरह उतरे हो तुम मेरी जिंदगी में, कुछ इस तरह उतरे हो तुम मेरी जिंदगी में कि अब कोई फर्क नहीं लगता हकीकत और ख्वाब में, कि अब कोई फर्क नहीं लगता हकीकत और ख्वाब में। हर धड़कन में तेरा नाम, हर धड़कन में तेरा नाम, हर सांस में तेरा जिक्र है। हर धड़कन में तेरा नाम और हर सांस में तेरा जिक्र है। यही तो मेरे प्यार का सबसे खूबसूरत, यही तो मेरे प्यार का सबसे खूबसूरत फित्र है, यही तो मेरे प्यार का सबसे खूबसूरत फित्र है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी सी ये कुछ लाइनें थीं और बस इन्हीं के साथ अपनी पोइट्री को एंड करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी संध्या जी से और सुमानी जी से कि कैसी लगी आप दोनों को।
1: सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
0: उधर से जवाब नहीं आया, लगता है सुहानी को पसंद नहीं आई।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छी थी, मतलब बात तो आपने सारी सही कही ना।
0: थैंक यू सो मच। तो लिस्टर्स भाई, आपने अभी देखा कि हमारी जो प्यारी प्यारी सखियां हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छी लगी। और चलिए चलते हैं अब चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे किन किन लिस्टर्स ने अपनी हाजिरी लगा दी है। ओके, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले प्रबल मिश्रा जी को, जो कि लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून प्रबल जी, कैसे हैं? और बहुत सारे गिटार उन्होंने भेजे हैं और साथ ही में लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और पिंटू जी हैं, जो कि पिंटू जी हैं बालपुर से और लिख रहे हैं हेलो मैम, हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं पिंटू जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लिसनर्स और आगे आप सभी को बताएं कि प्यारी सी पोइट्री के बाद अब बारी आती है कुछ मोटिवेशन की और मोटिवेशन के लिए हम चलेंगे हमारे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरह। तो आज जैसा कि आपको पता है कि दिन है प्यार का, बातें भी होंगी प्यार की, तो प्यार की ये प्यारी सी बातें हैं और इनके साथ एक रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी आपको बताते हैं, जो कि है कि सच्चा प्यार इंसान को खुद का सबसे बेहतरीन यानी कि बेस्ट वर्जन दिखाने में मदद करता है। आपका पार्टनर आपके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये कहता है कि आपका प्यार आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपकी जितनी भी खामियां होती हैं ना उन्हें दूर करता है। कहने का मतलब ये लिसनर्स कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं या हम किसी को दिल से बहुत मानते हैं तो धीरे धीरे उस प्यार में हम बेहतर बनते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी खामियां होती हैं ना वो सामने वाला जब हमें बताता है कि आपने ये खामियां है तो हम धीरे धीरे अपनी खामियों को दूर करते जाते हैं और हमारा प्यार हमें एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना देता है। क्योंकि प्यार में होना बहुत ही प्यारी फीलिंग है, प्यार में होना इन द सेंस कि हर रिश्ते में प्यार होता है। आप अपने मम्मी पापा के साथ जुड़ते हैं उनसे भी प्यार होता है, हमारे दोस्त फ्रेंड फैमिली एक हस्बैंड वाइफ में सभी में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आपका प्यार आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही बनाता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना समझना चाहते हैं। कई बार इस प्यारे से एहसास को हम समझ ही नहीं पाते हैं, गुस्से में, गलतफहमियों में या कई बार ईगो में आकर हम इसे छोड़ देते हैं या फिर हमें लगता है कि नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं इस बात को कम मानती हूँ बट सुना है मैंने कि लव इज़ वेरी पेनफुल, प्यार में दर्द बहुत होता है, बहुत पेनफुल होता है। बट ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, मतलब अगर इतना खूबसूरत एहसास है और उसके साथ थोड़ा सा पेन आपको मिलता है तो वो चल जाता है। क्यों संध्या जी, आप क्या कहते हैं?
1: मेरा मानना सही है जो आप कही, एक एक बात सही है।
0: अच्छा, ओके, तो भाई यहाँ तो उन्हें मेरी एक एक बात सही लग रही है लिसनर्स, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको मेरी बातें कितनी सही लगती हैं। आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए और ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारी बातें कैसी लग रही हैं। कैसी लगने का मतलब है कि क्या आप भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको अपने पॉइंट से जो भी आपका पॉइंट है वो आप बताइए। और तब तक के लिए थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं और चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। और बस यूं गए यूं आए, आप भी हमारा इंतज़ार करिए, क्योंकि इंतज़ार इसलिए कह रही हूँ भाई क्योंकि ब्रेक के उस पार में लेकर आने वाली हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी सी OTT सीरीज़ के बारे में, कुछ TV शोज़ के बारे में। और TV शोज़ का शौक़ तो कहीं ना कहीं सभी को होता है, तो जानते हैं हमारी संध्या जी से कि आपको शौक़ है TV शोज़ वगैरह देखने का।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, और कौन सा फेवरेट शो है आपका?
1: खास नहीं पर
0: अच्छा मतलब कुछ भी देख लेते हैं।
1: हाँ
0: हाँ
1: देखने से मतलब है।
0: हाँ ओके देखने से
1: इंटरेस्टेड लग गई।
0: जी जी जी
1: फुली देख के ही जाना है।
0: हाँ बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ और बस इस सॉन्ग के उस पार आते हैं। लिसनर्स आप इंतज़ार करिए कि आज आपके लिए क्या है बहुत ही प्यारी सी एक OTT सीरीज़ में क्या बताने वाले हैं हम आपको। इंतज़ार करिए बस यू गए और यू स्टेडियो।
3: फूल जब मांगते हैं परसों दुआ तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे सच।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली, जो कि आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे। और सुपर से भी ऊपर वाले सैटरडे में मेरे साथ हैं आपकी एक नहीं बल्कि दो दो सहेलियां, जो कि संध्या और सुहानी जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, और आगे है हमारे पास शोज का खजाना आज, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे शोज के बारे में बताएंगे कि जिन्हें देखने से आपका वीकेंड होने वाला है बहुत ही मजेदार। तो एक्साइटेड हैं आप सभी लिसनर्स जानने के लिए? भाई हमारे लिसनर्स तो एक्साइटेड होंगे ही। और इसी के साथ गीता जी आ चुकी हैं, लिखती हैं शुभ दोपहरिया दोनों आरजे मैम को, शुभ दोपहरिया आपको भी गीता जी। और इसी के साथ में प्रीति जी आ रही हैं, लिखती हैं शुभ दोपहरिया आपको भी। और आशु जी लिख रही हैं, आशु मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून आपको भी आशु जी। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं शोज की, जो कि आगे है हमारा कुछ बहुत ही बेहतरीन शोज। तो संध्या और सुहानी जी एक्साइटेड जानने के लिए?
1: बिल्कुल मैम।
0: एक ही आवाज की वहीं पर
1: आप शुरू कब होंगे, हम वेट कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, हम शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू होते हैं तो पहला आज मैं जो बताने वाली हूँ आपको शो, वो है म्यूजिकल ड्रामा। म्यूजिकल ड्रामा यानी कि ये प्यारी सी एक रोमांटिक सी है सीरीज, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि किस तरीके से प्यार में जो एक एज गैप होता है वो मायने नहीं रखता है, और क्या इम्पोर्टेंस होती है म्यूजिक की, यानी कि संगीत से शुरू होता है ये प्यार का सफर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जिसका नाम है सैरब। सैरब ये स्टार प्लस पे न्यू शो लॉन्च होने वाला है, तो ज़रूर देखिए लिसनर्स, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा एक रोमांटिक ड्रामा है। और मैं आपको बता दूं कि आप इसे जियो हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, तो दूसरा जो है हमारा वो एक नया ड्रामा है, जिसमें कि अबरार काजी और प्रियांशी यादव लीड रोल में होने वाले हैं, और इस प्यारे से शो का नाम है तू ही रे दिल में, तू ही रे दिल में। तो दिल में कौन है भाई, ये तो बाद में पता चलेगा, यानी कि ये आपको इस शो में पता चलेगा। तो ज़रूर देखिए लिसनर्स, और अपने वीकेंड को बनाइए शानदार। मैं आपको बता दूं कि आप इसे जी टीवी के जी फाइव ऐप पे आप इसको देख सकते हैं, तो जी फाइव ऐप पे देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब बारी आती है उनके लिए जिन्हें डांस बहुत पसंद है, देखना भी हाँ आपके लिए, आई थिंक सभी फीमेल्स के लिए, क्योंकि भाई डांस तो हमारी सभी फीमेल्स को बहुत पसंद होता है। हाँ फर्क बस इतना है कि कुछ को देखना पसंद होता है, कुछ को करना पसंद होता है।
1: मैं दोनों से बिलोंग करती हूँ।
0: अच्छा, मतलब देखना भी पसंद है और करना भी पसंद है। ओके, और सुहानी आपको क्या पसंद है?
2: मुझे ज्यादातर करना पसंद है।
1: लेकिन मैम इसके डांस तो बात ही अलग है, देखने वाला बंदा हंसेगा बहुत।
0: जी जी, तो चलिए लिसनर्स अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमने बात कर ली है डांस की। तो डांस का ही एक बेहतरीन शो यानी कि इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो सीजन 5 लेकर आ रहा है, पिछले 4 सीजन होते वो बहुत ही मज़ेदार थे, अब सीजन 5 आएगा, तो सीजन 5 ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये डांस का जो रियलिटी शो है ना, इसका नया सीज़न बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि इस बार देखना मज़ेदार होगा कि जजेस कैसे होते हैं, कैसी मस्ती होती है, कहां कहां से, मतलब देश के किस किस कोने से इस बार कंटेस्टेंट्स आएंगे, और अपनी अपनी संस्कृति को लेकर के, क्योंकि हम हर सीज़न में देखते हैं कि अलग अलग प्रांत से, अलग अलग शहरों से अलग अलग लोग आते हैं, मतलब कंटेस्टेंट्स, और किस तरीके से वो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने टैलेंट को अपने डांस के माध्यम से रखते हैं दुनिया के सामने।
1: मैम
0: जी,
1: इसका विनर तो सिर्फ सुहानी को जाना चाहिए। नहीं, लेकिन डांस इसका उसी लेवल का है।
0: ओके, तो फिर तो आपको ज़रूर पार्ट करना चाहिए सुहानी, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी कला हो, मतलब डांस हो, सॉन्ग्स हो, ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, और वो किसी किसी को अपने, मतलब बहुत ही खास बच्चों को वो आशीर्वाद देती है। तो ज़रूर अगर किसी के अंदर भी टैलेंट है ऐसा, तो वो अपने टैलेंट को ज़रूर निखारें और एक बेहतर कल की तरफ जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी लाइन में, जो कि नेक्स्ट शो हमारा है, जो कि आप देख सकते हैं सोनी लिव ऐप पर, जो कि है गुम हुई यादें, एक डॉक्टर की दो जिंदगियां। भाई ये बहुत ही बढ़िया सा एक मेडिकल ड्रामा है, मतलब अगर ये आप देखेंगे ना तो आपको पूरी पूरी याद आ जाएगी संजीवनी की। बहुत टाइम पहले स्टार प्लस पे एक शो आता था संजीवनी, वो भी पूरा एक मेडिकल ड्रामा था, मतलब उसमें दिखाया गया था कि हमारी जो मेडिकल डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, और मतलब बहुत ही अच्छा था वो। तो अगर आप संजीवनी को याद करना चाहते हैं, अपने पुराने टाइम को थोड़ा सा फिर से याद करना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर देखिए और इन्जॉय करिए लिसनर्स। और अब आते हैं नेक्स्ट शो पे। नेक्स्ट शो जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम बड़ा यूनिक सा है, क्योंकि नाम है 30 के प्यार 30 के पार मिला प्यार। बहुत ही प्यारा सा नाम है, मतलब नाम सुनकर के ही लगता है कि क्या होने वाला है। 30 के पार प्यार मिला, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी होती है जिसकी उम्र अमूमन 30 साल होती है, और जिस लड़के से वो मिलती है और उनकी लव लाइफ शुरू होती है, वो लड़का एज में बहुत छोटा होता है उससे। तो कहीं ना कहीं बस यही दिखाता है कि प्यार उम्र नहीं देखता है, प्यार सिर्फ दिल देखता है, दिल मिलने चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी एक रोमांटिक सी है। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी और वीकेंड आपका शानदार होगा। तो चलिए लिसनर्स, अब हमारा जो है एक शोज का जो लिस्ट थी हमारे पास शोज की, वो हो चुकी है एंड, क्योंकि हमारे पास आज के लिए आपके लिए इतने ही शोज थे। तो आई होप कि आप सभी को ये पसंद आए हों और आप सभी इसे देखें और ट्राई करें। तो चलिए आप चलते हैं बहुत ही प्यारे से एक सॉन्ग की तरफ चलेंगे, और बस इस सॉन्ग के मिड में ही आएंगे हम, गेम को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हो गए हैं 2:15। तो गेम को स्टार्ट करेंगे लेकिन इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद में स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली। तो वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां, और इससे पहले कि हम बातों को आगे बढ़ाएं आपसे और बातें करें, उससे पहले भाई टाइम हो गया है, यानी कि 2:22 हो गया है, तो अब हमें गेम को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपका गेम आपके सुपर से भी ऊपर वाले सैटरडे में स्टार्ट हो गया है लिसनर्स, और आपका पहला वर्ड जो है आपके गेम का वो भी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो वर्ड दे देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं हमारी लव राशिफल की तरफ। लेकिन आज हमारी अंताक्षरी को हम कुछ पुराने अंदाज में शुरू करने वाले हैं। पुराना अंदाज यानी कि कहते हैं ना, क्या कहते हैं संध्या जी, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ
1: काम।
0: शुरू करो अंताक्षरी
1: लेकर हरि का नाम।
0: बिल्कुल, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और नाम लेकर शुरू करते हैं। और लिसनर्स आप सभी हो जाइए अलर्ट मोड पर, क्योंकि आपको आपका पहला वर्ड दिया जाने वाला है, जो कि आपका पहला वर्ड है र। तो गेम स्टार्ट हो गया है और हमारा पहला वर्ड है रा। तो फटाफट से आप सभी रॉ वर्ड से सॉन्ग लिख कर भेजें, तब तक हम बढ़ते हैं हमारे लव राशिफल की तरफ। और आज आपको आपका लव राशिफल बताएंगी हमारी सखी यानी कि संध्या जी। तो चलिए लव राशिफल जानने के लिए कि क्या होने वाला है लव लाइफ में आज आपके, वो जानते हैं संध्या जी से।
1: हाँ, जिनका मेष राशिफल है वो थोड़ा ध्यान से सुने।
0: क्यों भाई, ऐसा क्या है कि ध्यान से सुने?
1: क्योंकि सब तो सुनेंगे ही, लेकिन जिनका होगा वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आज आखिर ऐसा क्या है। और जिनका मेष राशि फल है वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे जरूर।
0: जी जी जी, तो फटाफट से बताइए संध्या जी कि मेष राशि वालों के लिए आज क्या है राशिफल।
1: मेष राशि वालों के लिए आज के दिन अपनी तेज भावनाओं और मूड स्विंग को धैर्य से संभालने की जरूरत है।
0: ओके।
1: चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से रिश्तों में थोड़ा मानसिक तनाव या असुरक्षा की भावना आ सकती है। आज आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय गलती से भी पुरानी मुद्दों को बीच में न लाएं।
0: ओके।
1: लाएं और लाने से भी बचें।
0: जी।
1: अपने गुस्से पर काबू रखें। सिंगल लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस करेंगे जो काफी गंभीर और रहस्यमयी स्वभाव का हो। तो सिंगल लोग जो जिनका मेष राशि का है, जो मतलब मेष राशि का
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: वो अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसको हो सकता है आज एक खूबसूरत इंसान और एक गंभीर और जो उसको समझने वाला इंसान से
0: मुलाकात
1: होने की 100% चांसेस है।
0: ओके, तो यानी कि 100% चांसेस।
1: जिनका मेन राशि है तो एकदम से केयरफुल रहें अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि आज थोड़ा उनका थोड़ा उनसे कहने का मतलब है कि आज अपनी पर्सनल लाइफ या जो भी लाइफ है उसको थोड़ा अच्छे से रहें, उनसे कोई पुरानी बातों को लाके बीच में उनका मूड अपसेट ना करें।
0: जी जी
1: हाँ, तो इसलिए आप सब अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए आज के।
0: तो हो गई मेष राशि और मीन राशि वालों के लिए। जी,
1: अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के।
0: जी,
1: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में पूरी तरह से धैर्य यानी पेशेंस और मैच्योरिटी दिखाने का है। चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पार्टनरशिप में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बातचीत में अहंकार या हावी होने से प्रवृत्ति से बचें।
0: जी जी,
1: पार्टनर के साथ शांति से बैठकर बातें करना आपके अपने ट्रस्ट को बढ़ाएगा।
0: जी,
1: जो सिंगल है वो आज किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो स्वभाव से बहुत चार्मिंग और बातचीत में कुशल हो।
0: ओके।
1: इसका मतलब ये है जो कम बोलते हैं उसे कुछ चार्मिंग वाला बंदा मिलेगा।
0: हाँ, यानी कि कम बोलना है फायदेमंद।
1: हाँ।
0: चलिए देखते हैं कि कौन मिलता है, और अब बढ़ते हैं आगे की राशि की तरफ।
1: मिथुन राशि।
0: जी,
1: मिथुन राशि वालों को आज रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव पाने और समझदारी बरतने का है। लग्न में बुध, शुक्र और गुरु की मौजूदगी आपके चार्म और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होगा। हालांकि काम के तनाव या बाहरी चिंताओं को अपने रिश्ते पर हावी ना होने दें। सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो काफी बुद्धिमान हो, जिनके साथ विचारों का तालमेल बहुत अच्छा बैठे।
0: जी,
1: क्लेवर है, क्लेवर।
0: बिल्कुल, और भाई ये तो बहुत ही अच्छा। आज हमारी
1: अब हम बात करते हैं कर्क राशि।
0: जी,
1: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम जीवन में बेहद संवेदनशील और गहरा रहेगा।
0: ओके।
1: चंद्रमा आपकी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रोमांस और पार्टनर के प्रति आपकी भावनाएं काफी तीव्र रहेंगी।
0: जी,
1: पार्टनर से बहुत अधिक उम्मीद रखने या उनकी किसी बात को दिल से लगाने से बचें। अपनी फीलिंग्स को खुलकर और बिना किसी डर के बयां करें। सिंगल लोग जो किसी ऐसे इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो बहुत ही केयरिंग और कलात्मक सोच रखता हो। आजकल तो लोग हर इंसान चाहते हैं कि केयरिंग करने वाला इंसान मिल जाए।
0: बिल्कुल, केयर करने वाला मिलना भी चाहिए। जी, तो लिसनर्स, आई थिंक कि संध्या जी के पास जो भी राशियां थी आपको जानकारी देने के लिए वो कंप्लीट हो गई हैं।
1: जी
0: जी, तो अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो गया है। और
1: बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी राशिफल कौन सी है, फिर हम लोग बताएंगे कि क्या हो सकता है।
0: जी बिल्कुल। तो लिसनर्स, टाइम हो गया है यानी कि गेम हमारा स्टार्ट हो गया है और पहला सॉन्ग भी हमें मिल गया है जो कि हमने रॉ वर्ड दिया था। तो रॉ वर्ड से पहला सॉन्ग आया अनुष्का जी का, रातों में जगाया। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे बची हुई राशियों के राशि।
1: ये सॉन्ग तो मुझे भी बहुत पसंद है।
0: ओके, तो चलिए सुनते हैं और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे बची हुई राशियों के राशिफल को बताने के लिए। तो सुनिए और इन्जॉय करिए। स्टे ट्यून्ड।

क्या बात है भाई, सॉन्ग्स नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल भी आप लोग सॉन्ग लिखकर नहीं भेज रहे हैं। लगता है आज किसी को सॉन्ग सुनने का बिल्कुल भी जो है वो मूड नहीं है। तो अपने मूड को बनाइए, थोड़ा सा चेयर अप हो जाइए कि ये आपका सुपर से ऊपर वाला सर। तो फटाफट से सॉन्ग लिखकर भेजे लेते हैं हम आपके सॉन्ग्स का बनी बेसम। और इस सॉन्ग के उस पार आते हैं आपको फिर से नवरात्र बताने।

वेलकम बैक लिसनर्स। तो चलिए चलते हैं आगे और फटाफट से बढ़ते हैं और बताते हैं अब हम रव राशिफल को फिर से ये कि अब आगे की राशियों में क्या होने वाला है। तो आगे की राशियों के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारी सखी जी से कि आगे क्या होने वाला है, मतलब आगे की राशियों में क्या होने वाला है।

0: एडवांटेज हो तो एक मना लेंगे।
1: बिल्कुल सही सुहानी जी।
0: तो इसके वजह से सिंह राशि वाले आपको जरा सा ध्यान देना है
1: जी।
0: कन्या राशि वाले, लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव हो सकती है, किसी बात को लेके अनबन हो सकती है, तो ऐसे में आपको भी सूझबूझ से ही काम लेना है। तुला राशि वाले, संवेदनशीलता बढ़ेगी, पार्टनर से बातचीत होगी आपकी, इसमें आप गुस्सा से बचें
1: जी,
0: क्योंकि गुस्सा करने से तो बातें और बिगड़ ही जाती हैं ना।
1: बिल्कुल
0: और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले, अपनी भरोसा, आपकी भरोसे में बढ़ोतरी होगी, पार्टनर के साथ शाम को कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। और जो सिंगल है वो खास करके ध्यान दे कि जल्दबाजी में किसी नए इंसान से नहीं मिलना है।
1: ओके।
0: क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम
1: होता है। जी बिल्कुल।
0: तो बस मेरे पास इतना ही है।
1: तो ये थी कुछ राशियों को लेकर के जो कि अभी सुहानी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कुछ प्रिकॉशंस भी करने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, जो कि नेक्स्ट सॉन्ग है आशु जी का। तो हमने आपको वर्ड दिया था आशु जी का नहीं, अनुष्का जी का। हमने आपको माँ वर्ड दिया था और माँ वर्ड से सॉन्ग अनुष्का जी का आया है। तो आइए चलिए सुनते हैं अनुष्का जी के सॉन्ग को और इन्जॉय करते हैं और आते हैं सॉन्ग के उस पार आपको बची हुई राशियों को बताने के लिए।

0: अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, जिसमें कि टाइम हो गया है फिर से लव राशिफल को बताने का। तो चलिए अब लव राशिफल बताते हैं। कुछ जो कि बची हुई राशियां हमारे पास थी उनका हम आपको लव राशिफल बताएंगे। तो अब बारी आती है जिस राशि की, वो है धनु। तो अब बताते हैं कि धन राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल क्या कहता है, यानी कि क्या होने वाला है धन राशि वालों की लव लाइफ। तो अगर बात करें धन राशि वालों की, तो धन राशि वालों के लिए है कि भाई आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही प्यारा सा एक समय बिताने वाले हैं। कुछ यादगार पल आपके रिश्ते में होने वाले हैं और साथ ही साथ में जो भी पहले आपके रिश्तों में गलतफहमियां हो चुकी हैं वो दूर होंगी और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाएं एक नई शुरुआत के लिए। तो धनु राशि वालों के बाद अब बारी आती है जो कि धनु राशि वालों के लिए था हमारा ये राशिफल। अब बारी आती है धनु राशि वालों के बाद में, आई थिंक धनु राशि के बाद अब बारी आती है कहाँ गया भाई। राशियां जो है ना वो भी कई बार अपनी जगहें जो है वो बदलती रहती है। तो धनु राशि वालों के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए है कि पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय मिलेगा आपको और आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल हैं वो दूर हो जाएंगे, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो थोड़े से स्ट्रगल्स चल रहे हैं वो दूर होंगे और आपके ये मन में जो भावात्मक उलझनें चल रही हैं वो भी दूर होंगी। अब बारी आती है मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कहता है कि दिन जो है वो ही बड़ा भावपूर्ण रहने वाला है, यानी कि आप बहुत ये अच्छा सा एक समय अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हैं। तो यानी कि ये समय बहुत ही अच्छा सा होगा, आप अपने पार्टनर के साथ उसे बिताएंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो चलिए ये था हमारा आज का लव राशिफल, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा लिसनर्स। और अब चलते हैं हमारे सॉन्ग की तरफ, यानी कि आपके लास्ट वर्ड की तरफ। तो लास्ट वर्ड मैं आपको अब देने जा रही हूँ जो कि आप सभी का लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे आज के गेम का जो वर्ड है वो क्या है, ये आपको हमारी संध्या जी बताएंगी।
1: रा।
0: ओके, तो बहुत ही प्यारा सा वर्ड इन्होंने जाते जाते दिया है जो कि है र। तो आपका लास्ट वर्ड लिसनर्स है र। तो फटाफट से र वर्ड से सॉन्ग लिख करके भेजे, तब तक हम हमारी सखियों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और पहले बात करते हैं संध्या जी से।
1: जी
0: संध्या जी, बताएं कि आपको आज का ये जो सैटरडे था हमारा वो कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा मैम,
0: बहुत अच्छा लगा। ओके, तो रासे
1: ज्यादा खुशी हुई यहाँ पे।
0: ओके, थैंक यू सो मच सुहानी जी। और रासेस हमारे पास सॉन्ग भी आ गया है जो कि है हम जिज्ञासा जी ने भेजा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, आइए लिस्टनर्स हम इस सॉन्ग को सुनते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा सा ये एक सॉन्ग जो कि अभी हमारे पास।
1: एक बात तो है, हमारे लिस्टनर सॉन्ग बहुत अच्छा चूज करते हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्या है ना कि
1: क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनकी सोच से ना रिलेट करते हैं बहुत हद तक।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो भागा जा रहा है। तो लिसनर्स सॉन्ग के साथ ही आएंगे आपको बाय करने के लिए। सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, आइए एंजॉय करते हैं।

बिल्कुल दिल में आना उस सनम, दिल में आना इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ आज हम एंड करेंगे हमारे सुपर से भी ऊपर वाले सैटरडे की। तो जाते जाते बस यही कहूँगी लिसनर्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पानी पीते रहिए और अपनी केयर करिए। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको मंडे को बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज, सॉरी प्यारी प्यारी नहीं, टेस्टी टेस्टी रेसिपीज के साथ। बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: दोस्तों, वक्त हो चला है आपके फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा का। और आज दिन है शनिवार, शनिवार को होता है वीकेंड का वार और आती है आपकी फोन कॉल्स। देखते हैं, वैसे आज लगातार शो के टाइम से पहले से ही किसी की लगातार कॉल आ रही है, तो मेरा मन कह रहा है चलिए इन्हीं के गाने से शुरुआत कर देते हैं आज के शो की और देखते हैं कौन हमारे साथ में बना हुआ। हेलो
3: जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
3: मिश्रा
2: जी, अजय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सुनना चाहेंगे सर?
3: ऑन ईयर है क्या मैम?
2: हाँ जी, ऑन ईयर है। आज शनिवार, आप भूल कैसे सकते हैं?
3: अच्छा, ऑन ईयर है।
2: हाँ जी, ऑन ईयर। क्या सुनेंगे?
3: बन जाइए दिल के मेहमान।
2: ओके, बन जाइए दिल के मेहमान। वैसे एक बात आपसे जानना चाहूंगी।
3: जी जी।
2: चलिए, कह रहे हैं आज मन कर रहा है छोड़ देते हैं।
3: नहीं, नहीं, पूछ लीजिए।
2: पूछ ले, मेहमा बनना है या फिर महिमा बनना है?
3: दोनों बनना है।
2: चलिए बढ़िया, आपने सही जवाब दे दिया है, मैं खुश हुई। थैंक यू सो मच जी। इंस्टीट्यूट तो भाई, ये थे हमारे बीच में हमारे अजय मिश्रा जी, और इनको सुनना है बन जाइए इस दिल के मेहमा, मेहमा बन जाइए। आइए सॉन्ग से शुरुआत करते हैं, मूवी है सिलसिले, और फिर आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के साथ।

0: बताऊं, ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया हमारे अजय मिश्रा जी के डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं एलवीएस चौराहे से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलर की ओर। लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है, बट जिन्होंने चैट बॉक्स में हमने सॉन्ग्स भेज दिए हैं, आपको भी आज कॉल करना पड़ेगा। मतलब लगातार कॉल करते रहना होगा, मैं बिना ऑन एयर की कॉल ने मतलब गाना नहीं प्ले करूंगी। तो फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में कौन बना हुआ है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते अनुष्का जी, आपका आवाज एकदम से अलग अलग सा लगता है और अलग अलग सा पहचान में आ गया है, तो कहिए क्या सुनना चाहेंगी श्रावस्ती से।
1: अकेला है मिस्टर खिलाड़ी चाहिए।
0: अच्छा, मतलब मिस्टर खिलाड़ी को अगर खिलाड़ी चाहिए तो आप क्यों बता रही हैं? खिलाड़ी साहब को बताने देती
1: मैम। खिलाड़ी
0: मैं इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन तो हमने सोचा भी नहीं था, आपने सुझवा दिया। थैंक यू, एंजॉय करिए इस ट्रैक को। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, चलते हैं गाड़ी की ओर और सवारी के साथ में मिस्टर खिलाड़ी की ओर।

0: अरिजीत हुई, ये गाना आप एंजॉय करें। हमारे अनुष्का जी की डिमांड पर भाई लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही, तो मैं मन कर रहा है कि एक कॉल ले ही लेते हैं, देखते कौन है। हेलो
1: हेलो, शुभ दोपहरिया मैम।
0: जी बहुत बहुत शुभ दोपहरिया, और आपकी प्यारी सी आवाज हमें बता रही है, आप कमल नयन जी बोल रहे हैं। क्यों जी?
1: जी मैम।
0: हाँ जी, क्या सुनना चाहेंगे भाई साहब?
1: मैं हूँ प्रेम में रोगी, मेरी दवा तो कराओ।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। इंतजार करिए, अभी प्ले करते हैं। थैंक यू।

क्या श्रोताओं, और हमारे कुमार साहब का कहना जो हमें सुनते हैं एमपी रीवा से, भैया ये है अकेला मिस्टर कुमार और मिस कुमारी जी, आपको बिल्कुल मिस कुमारी ही मिलेंगी। और इस गाने में भी कहीं ना कहीं सिंगर की आवाज में लिरिसिस्ट ने बता दिया अकेला मैं हूँ, एक कुंवारा एक कुंवारी चाहिए, तो जितने भी कुंवारे हैं उनको एक कुंवारी कन्या ही प्राप्त होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। फिलहाल बढ़ेंगे हम अपने प्रेम रोगी भैया जी के डिमांड की ओर। अरे गाना बड़ा ही खूबसूरत है, उससे खूबसूरत मूवी है। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट कॉलर की डिमांड के साथ।

0: और ये ऐसा रोग है जनाब कि वैद हो या कोई भी हो, इसकी दवा वही होता है जिसने ये रोग दिया होता है, यानी जो दर्द देता है वही अगर मरहम ना बने तब तक इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी। इसलिए कहते हैं सब करना बत इश्क मुश्क से बच के रहना। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून।
0: अरे बहुत बहुत शुभ दोपहरिया आपको, कैसे हैं आप हमारे रॉबिन जी? की हाल चाल है आपका?
1: आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। आप कैसे?
0: बस आपकी दुआ जैसे हैं। कहिए क्या सुनना चाहेंगे?
1: मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
0: ओहो, मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, वैसे किसी को सुनाना चाहेंगे या खुद ही?
1: खुद ही को क्या गर्लफ्रेंड वाला जमाना है, मोहब्बत कहाँ होती है।
0: बिल्कुल, और वो भी परमानेंट जैसा नहीं रहता है, बस एक जैसा हमें ऐसा हमें लगता है, जो हमारा पर्सनल व्यू है, पॉपकॉर्न की तरह आजकल का प्रेम है, फूट गया बात खत्म।
1: जी।
0: चलिए एंजॉय करिए इस सॉन्ग को। थैंक यू जी। अब मोहब्बत मोहब्बत नहीं रही, चलिए एंजॉय करते इस ट्रैक को। थैंक यू।

0: थी तो हमारे रॉबिन हुड जी का कहना, भैया इनके बाद अगर कोई भी मोहब्बत करता है तो मोहब्बत को तरस जाएगा। आपने मोहब्बत हमें लग रहा है जम के की है, और बाकी का पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ में, ये हमें डेफिनेटली पता है, और देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, जय माता दी।
0: जय माता दी, लेट्स रॉक करते हैं भाई। अगर हम गलत नहीं है तो हमारे कुमार टेलर साहब है गौरा चौकी से।
1: राइट
0: जी, क्या सुनना चाहेंगे? पहले अपना अपना हाल चाल बता दे, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना गाना बता दें।
1: हाँ मैडम, मेरा तबीयत खराब था कुछ दिन, अभी भी फिलहाल।
0: क्या हुआ आप इतने, मतलब आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है? आए दिन आपकी तबीयत खराब रहती है, आखिर क्यों?

0: कहाँ मालूम क्या हो गया था अभी, मतलब एक महीने का दवा दिया डॉक्टर ने, 32 चला रहे दवा।
1: ओके
0: तो दवा चल रहा है
1: जी जी। क्या सुनना चाहेंगे सर आप? क्या सुनना चाहेंगे सॉन्ग?
0: ये सुनना जिगर फिल्म का सॉन्ग से आए हम बाराती बारात लेके।
1: कितनी दफा बारात लेके जाएंगे?
0: इसके जो म्यूजिक है मुझे बहुत अच्छा लगता है, डांस करने का मन करता है इसलिए बार बार सुनता हूँ। टाउन पे भी ये सॉन्ग चलते रहता है कभी कभी।
1: नहीं नहीं बढ़िया, ऐसे होते हैं कुछ नगमे जो हमें बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा और तबीयत जल्दी से सही करिए भाई। कितनी बीमार रहते हैं आप? बीमार कितना रहते हैं? जल्दी तबीयत सही करिए। टेक केयर, बाय बाय। ओके चलिए भाई, सुन लेते हैं इनके फरमाइश का ये सॉन्ग। आप सभी सुनिए, हम भी सुनते हैं बारात लेके जो चल रहा है।

0: में लगातार कॉल्स भी आ रही है, तो एक कॉल मैं उठा लेती हूँ। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें।
1: नमस्कार, मनीष शर्मा बोल रहे हैं
0: जी। आपका लिंक हमें प्राप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी वेट करिए, गाना हो जाए उस पार आपका गाना। थैंक यू।

0: हम बाराती।
1: भाई हमारे कुमार टेलर साहब का कहना है ये बारात लेके आए हैं और ये बाराती हैं और हमारे प्यारे भाई साहब हैं जिनका नाम है कुमार साहब फ्रॉम एमपी रीवा और इनका कहना आए हम घराती नाश्ता लेके आकांक्षा भाई नितनी है ने झाको मतलब चैट बॉक्स की ओर नजर करो। थैंक यू सो मच फॉर मेरा इतना हाल चाल और ख्याल रखने के लिए। अभी बढ़ेंगे मनीष शर्मा जी की डिमांड की ओर, लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है, फटाफट से मैं जस्ट 3:30 से सभी की कॉल लेने की कोशिश करूंगी।

0: हाँ जी श्रोताओं, तो बादशाह जी ने हील तुड़वा दिया है और अभी देखेंगे हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़े हुए हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
1: हाँ, मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी मुमताज अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सुनना चाहेंगे सर आप?
1: गाना सुना दीजिए, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है।
0: ओहो, क्या बात है भाई, कितने दिल तोड़ू हैं इस दुनिया में। मैं ये सोच रही हूँ अगर मोहब्बत वाकई में तिजारत बन जाए तो करना क्या चाहिए। हम बस आपसे इतना ओपिनियन चाहेंगे, आप कुछ तजुर्बेकार हैं इसलिए।
1: अब कहना है तो एक बात और सुना दें, कहिए तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद हम सुनना चाहेंगे क्योंकि हमारे शायर महान हैं और इसीलिए इनकी जेब से हमने थोड़ा सा निकलवाने का कुछ कोशिश किया। प्लीज फरमाएं।
1: मोहब्बत यही है, अकीदत यही है, उन्हें देख लेना इबादत यही है, तेरी जुस्तजु में जो गुम मेरी हसरत, खुदा की कसम मेरी हसरत वही है।
0: ओहो, क्या बात क्या बात क्या बात भाई, इसी को शायद मोहब्बत कहते हैं। क्यों सर?
1: जी सर
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एंजॉय करते हैं हम अपने मुमताज अंसारी साहब की डिमांड को। थैंक यू सो मच।

0: यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी लिरिसिस्ट साहब के लिरिक्स में कि खाली हसीनों की आदत नहीं, आज कल के गबरू जवानों की भी आदत बन गई है किसी से खेलना फिर छोड़ देना। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज सर।
1: अमित कुमार
0: जी। अमित जी क्या सुनना चाहेंगे? क्या बात है, कोई इश्क को कह रहा है मोहब्बत तिजारत है, कोई इश्क को कह रहा है दर्द देने वाला, कोई कह रहा है जन्नत दिखा है, क्या बात है। वैसे आप मानते किस इश्क को हैं?
1: क्या मैम?
0: किस इश्क को आप मानते हैं?
1: मैम जो हो जाए उसी को मानते हैं।
0: जो हो जाए। वैसे आपके गाने से लगता है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए वाला, क्यों? जी जी, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, हमारे थोड़ा सा अमित कुमार जी गए हैं शर्मा, जब तक वो शर्मा के बाहर आते हैं तब तक हम उनको सुना देते हैं ये प्यारा सा गाना जब वी मेट से।

0: हमें लगा था जन्नत देखने के लिए इंसान को मतलब इस दुनिया के उस पार जाना पड़ता है, बैठे बिठाए ठड़ियाए ठड़ियाए हर तरह से इश्क आपको जन्नत दिखा सकता है, इस गाने ने प्रूव किया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। हेलो, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: शिवाकांत शुक्ला
0: जी। शिवाकांत शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद है, क्या सुनना चाहेंगे सर, प्लीज अपना सॉन्ग बताएं।
1: तू ही हकीकत है, तू ही मोहब्बत है, ऐसा ही कोई गाना है।
0: तू ही हकीकत ख्वाब तू, ऐसा तो नहीं है?
1: यस नहीं,
0: ओके चलिए, अगर हमको मालूम ना होता तो फिर क्या होता फिर आपका गाना ना होता चलिए एंजॉय करिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर।
1: थैंक यू।

0: हाँ जी, आप ये सॉन्ग एंजॉय कर रहे हो और लगातार कॉल आ रही है, तो देखते हैं कौन है नेक्स्ट कॉलर। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं फटाफट से।
1: फटाफट से प्रबल
0: जी। नमस्कार प्रबल जी, क्या सुनना चाहेंगे?
1: कोई गाना सुनाइए अपनी तरफ से, या मनी जी का हमारे कोई सॉन्ग हो जो अच्छा लगे।
0: तो हम अपनी तरफ से प्ले करेंगे। मनी जी आप आज के लिए सॉरी है, हम अपनी तरफ से प्ले करते हैं जी। टेक केयर।

0: क्या बात है भाई, दोस्तों आपके साथ रह के मेरा मूड सही हो जाता है, मूड के साथ में गला भी सही हो जाता है। ये आज मैंने फील किया। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट लिसनर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार रीतलाल जी, आपके गाने कई दफा से रह जाते हैं इसलिए हमने आज आपका कॉल उठा लिया है। कहिए क्या सुनना चाहेंगे?
1: साथ सजन का छूटे ना
0: आगे,
1: इतने आगे आगे आप जानिए ना।
0: बिंदिया बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले, थैंक यू, बड़ा प्यारा सा गाना है, एंजॉय करिए। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए फिलहाल चलते हैं हम पंडित जी की डिमांड की ओर, और इन्होंने कहा है अपनी पसंद का कोई गाना, तो चलिए हमारी पसंद का सुन लीजिए, स्पेशली फॉर हमारे पंडित जी।

कमल जी का कहना है भाई कि प्रेम हो या दोस्ती मन से होनी चाहिए, मतलब से नहीं। मतलब से तो रोग बस खाली और खाली ख्यालात मिलाने की कोशिश करते हैं, हालात नहीं। हालात तभी मिलते हैं जब आपका दिल से किसी से संबंध हो। फिलहाल ये गाना हमारी पसंद का हमारी प्लेलिस्ट से हमारे प्यारे पंडित जी के लिए। एंजॉय करते रहिए इस ट्रैक को, फिर आएंगे नेक्स्ट ट्रैक लेके हम अपने रीत लाल जी का, जो हमें सुनते हैं अलाहाबाद से। लगातार 5-6 दिनों से इनका गाना रह जाता था, इसलिए आज मैंने इनका कहा कि चलिए बजा देते हैं गाना।

और शो चल रहा है आपका फोन ही फरमाइशी कार्यक्रम कॉल ट्यून गुंडा। और आज है दिन शनिवार, बड़ा ही रश होता है, बड़ा ही क्राउड होता है और लगातार आपकी कॉल आती रहती है, लेकिन ऑन एयर शो में एक अपना ही मजा है। नेक्स्ट सॉन्ग जिसका है वो हम जरूर प्ले करेंगे, उससे पहले हम खैर मकदम करना चाहेंगे हमारे चैट बॉक्स वासियों का, जिसमें है इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, नव्या जी हैं गोंडा से, नीना जी हैं हमारी चंगू जी यानी के गोंडा से, मनी शर्मा जी हैं खुरासा गोंडा से, और इसके अलावा जो नेक्स्ट लिसनर है उनका नाम है कमल नयन जी, सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और इसके अलावा मुस्तफा जी भी हैं सऊदी अरेबिया से, और अगर हम नेक्स्ट लिसनर की बात करें तो रामकृष्ण नंदन जी हैं हमारे साथ में अलाहाबाद से बने हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है रामकृष्ण नंदन जी। शैलेंद्र जी हैं जी हाँ खजुराहो एमपी से, और आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। और नेक्स्ट अगर हम मैसेज की बात करें तो आप सभी की काफी सारी चिट चैट है, और इसी बीच में है कैफ मोबाइल जी गोंडा से गुड मॉर्निंग का मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। और नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे दिख रही है हमारी प्यारी अनुष्का जी, और बेबी जॉन जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, और हमारे के गुप्ता जी भी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, जिज्ञासा जी भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए और एंजॉय करिए फिलहाल रीत लाल जी की डिमांड को, और अभी आपने एंजॉय किया प्रबल जी की रिक्वेस्ट पे हमारी प्लेलिस्ट का प्यारा सा नगमा, और अब चलते हैं इस प्यारी से एक और नगमे की ओर।

बेहद खूबसूरत नगमा है, दिल से एंजॉय करिएगा। अगर आपने किसी से मोहब्बत की है तो भाई इससे खूबसूरत नगमा कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी के लिए सजना सवरना एक अलग ही बात होती है, ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे ब्लश होता है फिर।

0: शो चल रहा है आपका फोन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा और आप भी लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। हेलो
1: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून देव प्रसाद जी, क्या सुनना चाहेंगे?
1: हम तो सुनना चाहेंगे बहुत खतरनाक गाना है।
0: अरे बाप रे, कौन सा खतरनाक है? चलो पहले रुक जाइए, दो चार तलवार वाला लेके खड़े हो जाए, फिर आप बताइए। हाँ अब बताइए,
1: आप बताए।
0: हाँ
1: अब सब व्यवस्थित होगा?
0: हाँ सब व्यवस्थित है, एकदम एकदम रेडी। जल्दी जल्दी जल्दी बताइए।
1: इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी।
0: हे भगवान, ये ऐसे गाने आप क्यों सुनते हैं? हम सदमे में चले जाएंगे, हम ये गाना नहीं प्ले कर पाएंगे।
1: सदमे नहीं, ये गाना प्ले कर देना, बहुत दिल टूटा हुआ है आज दो तीन दिनों से।
0: तो दिल टूटे आशिकों के लिए हमारे पास कोई, दुनिया में सबके लिए मैं प्ले कर सकती, आपके लिए इतना खराब गाना मैं कतई नहीं प्ले कर सकती। नहीं, कोई अच्छा सा सॉन्ग बताइए वरना हम अपनी प्ले लिस्ट से कुछ भी बजा रहे हैं फिर।
1: और कोई सॉन्ग तो याद नहीं करे थे, आज यही गाना हमारे दिमाग में चल रहा था।
0: इतना हम आप ये समझ लीजिए, आपके लिए हम सैड सॉन्ग कभी बजा ही नहीं सकते चाहे जो हो जाए।
1: तो यही सुना दीजिए, दिल ना तोड़ो कसम खा के कहो।
0: फिर दिल तोड़ने की बात कर दी आपने, चलिए हमारी तरफ से आप ये गाना सुनिए और आपके लिए स्पेशली है, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक
1: ओके, बाय
0: बाय बाय।

0: लगातार काफी देर से कॉल्स आ रही हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो।
1: हाँ हेलो, हम मोहम्मद अयूब पटेल नगर बोल रहे हैं।
0: जी मोहम्मद अयूब जी, क्या सुनना चाहेंगे?
1: अरे आज हमारा 3-4 दिन से पड़ा है आपके पास बैलेंस।
0: अच्छा बैलेंस, कहिए क्या सुनेंगे आज? जरूर प्ले करेंगे।
1: जहाँ मैं जाऊँ वहाँ
0: चल ले आते हो।
1: साथ रहेगा।
0: अच्छा मेरा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: हाँ मेरा साया साथ रहेगा।
0: ये भगवान साया से डर लगता है, आधी रात को अगर आप साया लेके निकल गए तो सब डर जाएंगे।
1: कुछ रह गया था।
0: ओके थैंक यू, एंजॉय करिए।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
0: शिवाकांत शुक्ला
1: जी। शिवाकांत शुक्ला जी, आपका एक सॉन्ग हो चुका है एक बार में, नहीं हुआ अभी?
0: हो गया।
1: एक दिन में एक ही कॉल लेते हैं हम, सॉरी सर। थैंक यू, टेक केयर। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे आयुब जी की। तू जहां जहां चलेगा मेरा डरावना वाला भूतिया वाला साया जरूर साथ होगा। वैसे साया साथ होना जरूरी है नहीं, आप बताइए, लेकिन उससे पहले गाने को कंप्लीट होने देते हो, हम गाना ढूंढ के लाते हैं।

0: लग जा।
1: हाँ जी, तो देव प्रसाद जी के लिए हमने अपनी प्लेलिस्ट से ये गाना बजाया था, और अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। हेलो
2: जी, सुरेंद्र यादव गोरखपुर
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत ही डिसेंट से और बहुत ही शरीफ लिसनर्स में से एक हैं, आपका लिंक हम तक पहुंच गया है, अपनी बारी का इंतजार करें, गाना जरूर प्ले होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलते हैं फिलहाल के लिए हम अपने मोहम्मद अयूब जी के गाने की ओर। भैया इन्होंने हमें बता दिया है साया साथ होगा, देखते हैं कितना बड़ा वाला साया, छुटकू साया, बड़कू साया, मझिलकू साया, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: भाई मजाक की बात अलग है, लेकिन गाना इतना खूबसूरत है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही नहीं कहते कि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड कोई भी सॉन्ग आप प्ले कर दें, आप अगर उससे जुड़ाव नहीं रखते फिर उसका ओल्ड होना ही बेकार है। फिलहाल बढ़ेंगे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड की ओर और देखते हैं ये क्या सुनना चाहते हैं फ्रॉम 90s हिट्स। तक देखते हैं कौन है हमारे साथ में और क्या सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी अपना नाम बताएं।
1: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
0: जी सुनील जी क्या सुनना चाहेंगे
1: जी? आज हमको सुना दीजिएगा तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त।
0: ओके थैंक यू सर, टेक केयर।

0: देखते हमारे साथ में कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: गुड आफ्टरनून, हम कैसी हैं?
0: ओह गुड आफ्टरनून, मैं बहुत अच्छी हूँ, कैसी हैं आप? मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, आपको सुन के और अच्छी हो गई हूँ अभी। अच्छा अच्छी, आप जो भी अच्छी जी हैं प्लीज अपना अच्छा अच्छा नाम बता दीजिए।
1: नव्या
0: जी, नव्या जी क्या सुनना चाहेंगी, या फिर हम अपनी ओर से आपको ये गाना डेडिकेट मार दें?
1: मार दीजिए
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। हेलो
2: राधे राधे मैम।
0: राधे राधे भाई, राधे राधे कह के तो आपने हमारे मन को एकदम से प्रसन्न कर दिया। कहिए आप अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
2: राम कृष्ण नंदन मिश्रा।
0: ओह माय गॉड, राम जी क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: कुछ भी बजा दीजिए अपने मन का।
0: ओके थैंक यू, थैंक यू मींस अ लॉट, टेक केयर। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी अपना नमस्कार, अपना नाम बताएं प्लीज।
3: संजय तिवारी, दुखरनान मंदिर
0: जी। संजय जी क्या सुनना चाहेंगे?
3: पोलर पार्टी का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा?
3: फूल और कांटे का, हाँ जी, जो मन का,
0: जो भी मेरा मन हो फूल और कांटे से। ओके चलिए फिलहाल दोस्तों चलते हैं, लगातार काफी कॉल्स आ रही थी और अब लास्ट का मोमेंट है, तो मैंने कहा सभी के सॉन्ग से इकट्ठा नोट कर लेते हैं। और ये गाना है हमारे सुनील कुशवाहा जी की डिमांड पे और ये हमारी नव्या जी को स्पेशली डेडिकेट है हमारी ओर से। नीना जी आपका कॉल नहीं लग रहा है, आई एम सो सॉरी, माफी चाहूंगी, आज ऐसा ही रश होता है आपको अच्छे से पता है। और ये गाना आपके लिए भी है हमारी ओर से, कहे कि आपका वाइट रसगुल्ला में आज भी याद है। थैंक यू फॉर टेस्टी वाला रसगुल्ला।

के मैसेजेस देखे तो मेरी हंसी नहीं रुकती है। और इस गाने के बाद होगी हमारे रामकृष्ण नंदन जी जो हमें सुनते हैं इलाहाबाद से, उनका सॉन्ग हम उन सभी लिसनर्स को डेडिकेट करेंगे जिन जिनके कॉल्स आज नहीं लग पाई है या फिर उनका सॉन्ग किसी वजह से प्ले नहीं हो पाया है, और या फिर कुछ हमारे प्यारे लिसनर जो डिमांड नहीं करते खाली एंजॉय करते उनके लिए भी होगा। जैसे नागेश्वर जी हैं, एड्स कुमार साहब हैं और मुस्तफा जी तो कॉल कर लेते हैं, फिलहाल रवि जी भी हैं उसमें आप सभी के लिए, और जिन जिन के लिए नहीं हुआ गाना उन सभी के लिए होगा। एंजॉय करिए।

बली है मस्त। याद आया मुझे कि 3 बज के हो गए हैं पूरे के पूरे 54 मिनट, मतलब कि 6 मिनट और है मेरे पास में, और उन 6 मिनट में मुझे 2 मेरे मोस्ट फेवरेट सॉन्ग अभी प्ले करने हैं। एक है हमारे रामकृष्ण नंदन जी के लिए स्पेशली, और आप सभी के लिए, हमारे सभी चैटबॉक्स वासी के लिए जो जहाँ से सुनना है खाली सुनते हैं, लुका छुपी भी और कॉल नहीं करते। और रीना शर्मा जी का भी मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए फ्रॉम रोड की उत्तराखंड। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, आपको पसंद आया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। आप सभी गबरू जवानों के लिए गाना।

0: जी, और आज का शो कैसा रहा फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज हमारी तबीयत थोड़ी सी नाजाज थी, तो आवाज हमारा गला अभी भी साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और जिन जिनकी कॉल्स लगी और उठी नहीं, उसके लिए भी माफी। और बस माफीनामा तो लास्ट जाते हुए मेरी आदत हो गई, इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज की लास्ट डिमांड हम लेते हैं अपने प्यारे संजय तिवारी जी की डिमांड पर, जो हमें सुनते हैं जस्ट हमारे बगल से, पड़ोस से, और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जाते जाते कम से कम जान लेते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं प्लीज।
1: अरमान
0: जी।
1: अरमान।
0: अरमान जी, तो अरमान जी आपके क्या अरमान है, कहिए।
1: बेशक तुम मेरी मोहब्बत है।
0: ओके, अगर टाइम रहा तो जरूर प्ले करूंगी, वैसे मुझे लगता नहीं क्योंकि मेरे पास 3 मिनट है, तो आज के लिए मैं माफी चाहूंगी। आप मंडे जरूर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत लेट से आपने कॉल किया। ओके, टेक केयर जी। जी शुक्रिया। चलिए चलते हैं फिलहाल आज की लास्ट डिमांड की ओर, और अपना अपना ख्याल रखिएगा। हंसते मुस्कुराते खाते खेलते और सुनते रहिएगा रेडियो गाना 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। ये गाना स्पेशली हमारी नीना जी के राइटर्स गुल्लो के लिए।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो क्या स्थली बेस।

0: एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, ये लाइन भी नहीं है और बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई
1: बस वीरूपा जी बस, वरना आप तेरे प्यार में पग पड़ जाऊंगा।
2: तुम क्या कह रही थी?
0: गर्मी गर्मी कितनी हो रही है यार, पसीने निकल रहे हैं।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से प्रोग्राम में, जहां हम आपको किसी खास सेलिब्रिटी से, खास मेहमान से मिलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे खास मेहमान कौन हैं। वेल, दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका इन योर प्रोग्राम जिसका नाम है गोधुली। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं मिस्टर विनय पाठक, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं जूनियर हाई स्कूल में और इंचार्ज हेडमास्टर भी हैं। तो आइए उनसे खूब सारी बातें करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। A very wonderful welcome, sir. Thank you so much कि आप यहाँ आए हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ बेसिकली आपसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका जो बैकग्राउंड था वो किस तरह का था।
1: जी मैडम, जो है मेरी पैदाइश जनपद गोंडा की है, खैरा कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी गांधी विद्यालय रेलवे इंटर कॉलेज में टीचर थे, तो जो है मेरा बचपन खैरा कॉलोनी में ही बीता। उसके बाद फिर नया घर हम लोगों का मारवा इंटर कॉलेज के पास में यहाँ साहबगंज में बन गया, फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो एजुकेशन भी शुरू में मेरी एलकेजी यूकेजी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोंडा से मैंने किया, उसके बाद फर्स्ट टू फिफ्थ विकास नीलियम नया स्कूल मोहल्ले में ही खुला था, तो उसमें पापा ने एडमिशन करा दिया। तो समझ लीजिए बेसिक एजुकेशन मेरी वहीं से हुई। उसके बाद 6 to 8 सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय नगर गोंडा में मेरा एडमिशन हुआ, और उसके बाद फिर 9 to 12 GIC गोंडा फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने LBS से किया, और ग्रेजुएशन में मैंने अपने BSc में मैंने टॉप भी किया था। इसके बाद फिर MSc मैंने किया MLKPG कॉलेज बलरामपुर से, वहाँ भी मैंने अपने फिजिक्स में टॉप किया था। उसके बाद BEd मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, और फिर ब्राइटवे इंटर कॉलेज लखनऊ में मैंने टीचिंग भी किया, और उसके बाद NSSO में मैंने काम किया। फिर उसके बाद बेसिक में VSSBTC के थ्रू मैं आ गया इसमें, तब से जो है इसी में सेवा में दे रहा हूँ। करीब 12 साल हो गए, 12 साल से मैं बेसिक में ही अपनी सेवा दे रहा हूँ।
0: काफ़ी डाइवर्स आपका स्कूलिंग सिस्टम रहा था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे आपने इतने सारे स्कूल बदले, तो कहाँ आपने देखा कि ये जो डाइवर्सिटी आपके स्कूलिंग सिस्टम में थी, जितना आपके एजुकेशन सिस्टम में जो डाइवर्सिटी मिली आपको, तो ये कितना आपके पर्सनैलिटी को चेंज करने में कारगर हुई।
1: हाँ, ये जो है डाइवर्सिटी काफ़ी थी, अलग अलग स्कूलों का अनुभव भी अलग अलग रहा। जैसे जो है विकास नीलियम प्लस हाई स्कूल था, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के टीचर्स से भी काफ़ी मोटिवेशनल मुझे मिला। जैसे फर्स्ट में ही मुझे याद आता है कि सबसे पहले जो एक मैडम थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने सब सारे बच्चों का नाम लिखने के लिए बोर्ड पर कहा था, तो मैं जो है बोर्ड पर मैंने पहली बार विनय कुमार पाठक हिंदी में पूरा लिखा था, और साफ साफ लिखा था। वो अभी भी मुझे दिखाई भी दे रहा कि कैसा मैंने लिखा था। तो बाकी बच्चे नहीं लिख पा रहे थे, कोई टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा था, कुछ से इरर भी हो जा रहे थे, तो मैडम बहुत खुश हो गई और उन्होंने पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ़ की। तो उससे भी काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली कि हाँ, मैं अच्छा लिख भी सकता हूँ। फिर मैंने अपने राइटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद जो है विद्या मंदिर में जो है, उस समय थोड़ा बड़ा स्कूल था, उस समय गोंडा में देखा जाए, और अच्छा स्कूल माना जाता था, तो 6 to 8 वहाँ पर पर्सनालिटी मेरी काफ़ी डेवलप हुई। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, स्पोर्ट्स में भी वहाँ मैं रहता था। इसके अलावा जो बाल सभा उनकी रहती थी उसमें जज भी बना था, मैं बनाया गया था, तो वो सब एक अलग एक्सपीरियंस वहाँ का था। उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटर में जब GIC में मैं गया तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री मुझे काफ़ी, जो ट्रिग्नोमेट्री मैथ में थी वो मेरी काफ़ी वीक थी, समझ मुझे नहीं आती थी कि क्या था साइन कॉस टैन ये सब क्या होता है फार्मूला। वहाँ पर SB सिंह सर थे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया मोटिवेट मुझे किया, तो उनके मोटिवेशनल से जो है मैंने इतना अच्छा जो है अभ्यास घर पे करना शुरू किया कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल जो है मुझसे छूटता नहीं था। मैं दूसरों को बताने लगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगते हैं। तो गुरु का मतलब यही रहता है जो गुरु अंदर से जगा दे, पढ़ाने का मतलब नहीं रहता है, एनर्जी तो हमारे अंदर है ही है, अच्छा गुरु वही जो जगा दे किसी को कि हम अपने अंदर से ज्ञान को खोज ले जाएं। तो ये सब एक्सपीरियंस रहा है। और हाई स्कूल इंटर में जो मेरी फ्रेंड सर्किल थी वो भी बड़ी अच्छी थी, तो काफ़ी जो है उसी इम्प्रूवमेंट का मौका मिला और आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित लोगों ने किया, मेरे मित्रों ने भी किया, तो उसकी वजह से ही समझ लीजिए एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा ठीक ठाक रहा।
0: सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके वालिद साहब भी जो है गांधी विद्यालय में टीचर थे, तो क्या आपको वहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको भी टीचर बनना है, या बचपन में आपने कुछ और सोचा था बनने के लिए?
1: जी, पिताजी भी टीचर में थे और हमारे मामा लोग भी जो है टीचर ही थे, तो टीचर जॉब मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जो टीचर मुझे पढ़ाते थे उनको भी रोल मॉडल के रूप में मैं देखता रहता था, तो मुझे लगता था कि अच्छी जॉब है, तो शुरू से ही हम जो है इसमें दिलचस्पी रही है मेरी।
0: ये तो काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि शुरू से आपकी दिलचस्पी रही है और आपने आगे उसी पर काम किया, एंड नाउ यू आर अ टीचर। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये टीचिंग बैकग्राउंड था आपकी फैमिली का, सिंस आपके मामा भी टीचर थे, आपके पापा भी टीचर थे, सो आपको कितना लगता था कि आपका घर का माहौल वो पढ़ाई वाला रहता था या बिल्कुल फ्री रहता था?
1: नहीं, पढ़ाई वाला तो रहता था शुरू से ही, घर में मेरे डिसिप्लिन बहुत तगड़ी रहती थी। पापा से हम लोग जो है आँख उठा के बात भी नहीं कर पाते थे, जब जैसे पापा घर में आते थे वैसे हम लोग जो है उसके पहले भले जो है फ्री रहते हों खेलने कूदने में, लेकिन पापा के जैसे आने का टाइम होता था वैसे सब हम लोग बैठ जाते थे किताब उताब लेकर, मैच जैसे हम देख रहे हैं तो पापा जैसे आ गया तो पिक्चर देखना या तुरंत टीवी बंद हो जाती थी हम लोगों की। तो ये था कि जो है डिसिप्लिन काफ़ी था हमारे घर में।
0: तो आपको क्या लगता है ये जो डिसिप्लिन है ये फाउंडेशन बनाती है हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कि नहीं?
1: नहीं, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि पढ़ाई के प्रति अवेयर रहे, एक खिलाड़ी के लिए डिसिप्लिन का मतलब है कि वो उसके रूल्स को फॉलो करे, ठीक, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए जीवन में।
0: अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके फादर टीचर थे, तो आपकी मदर क्या करती थी?
1: मदर हाउसवाइफ ही थी।
0: आपने कितना सीखा अपने पेरेंट्स से जो आज तक अभी काम आ रहा है?
1: बहुत बहुत कुछ सीखा। मम्मी तो मेरी बहुत सीधी सादी थी, वो कभी डांटती वाड़ती नहीं थी, तो जो फ्रीडम जो लाइफ में और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट में करता रहा, समझ लीजिए माँ की ही देन है वो।
0: बिल्कुल,
1: और जो
0: बिल्कुल।
1: एजुकेशन लाइफ में जो है वो समझ लीजिए फादर की देन है।
0: ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस चेंज किए, लाइक BEd आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और फिर MLK PG कॉलेज और अपसली जगह पर टॉप भी किया है, तो ये टॉप करने का क्या है, मतलब आप कैसे जाने कि आप टॉप करने वाले हैं या फिर आपने कितनी मेहनत की? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉलेज लेवल पर टॉप करना इतना आसान होता है।
1: जी जी, ये तो जो है विद्या मंदिर में मैं जब 8th में था तो मेरे जो क्लास टीचर थे वो पता नहीं मुझ में क्या देखते थे, वो कि मुझे हमेशा कंपेयर करते थे, जो बच्चा फर्स्ट आता था उससे कंपेयर करते थे कि तुम भी वो कर सकते हो, तुम्हारी भी राइटिंग अच्छी है, बट तुम ध्यान नहीं देते हो, थोड़ा और पढ़ाई करो तो तुम भी उसके लेवल में आ सकते हो। तो 8th से मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हुआ, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा था उससे मैंने कंपेयर करना शुरू किया, तो टेस्ट में एकदम फर्स्ट तो नहीं आया लेकिन 2nd तक मैं पहुँचना शुरू हो गया था, और 8th में पूरे कॉलेज में मेरा पूरे स्कूल में 2nd पोजीशन मेरी थी। फर्स्ट तो संदीप श्रीवास्तव की ही थी, 2nd पे मैं पहुंच गया, 7th से जो है 2nd में पहुंच गया मैं, तो उसी के बाद से धीरे धीरे लगन आ गई कि हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं। BSC में भी जो है संजय पांडे सर मैथ पढ़ाते थे हम लोगों को, तो वो भी काफ़ी मोटिवेट करते थे हम लोगों को, तो उनकी प्रेरणा से समझ लीजिए आगे बढ़े। और उसके बाद फिर MSc में तो खैर सेल्फ मोटिवेशन रहता है, उतने बच्चे बड़े हो ही जाते हैं, तो कोर्स कवर करना, ऊपर से फ्रेंड सर्किल का भी सपोर्ट मिलना, जो सीनियर हमारे थे उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया हमको, उनके नोट्स मुझे मिल जाते थे, उनका गाइडेंस मिल जाता था, उसकी वजह से मेरे लिए आसान रहता था।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो सक्सेस होता है या हमारा जो ग्रोथ होता है वो हमारी सोबत में कौन कौन है उस पर ज़्यादा जो है डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा भैया, आपने बताया कि आपकी जो पैदाई खैरा कॉलोनी की है, खैर अब तो ये खैरा कॉलोनी हो गया है, पहले वो एक काफी पिछड़ा हुआ एरिया था,
1: रेलवे कॉलोनी थी।
0: हाँ, रेलवे कॉलोनी से जुड़ा हुआ था, हालांकि वो रेलवे कॉलोनी नहीं थी पूरी की पूरी। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा था, मतलब वहाँ पर जो है बच्चे खेल कूद में ज्यादा पार्ट लेते थे या फिर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे, या रिसोर्सेस कम थे उस वक्त, तो कैसे मैनेज करते थे चीजों को, लाइक एजुकेशन भी साथ साथ में, को करिकुलर भी और लाइफ स्टाइल भी।
1: तो जो खैरा कॉलोनी थी वो रेलवे कॉलोनी थी, मेन जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कॉलोनी बनाई गई थी, गवर्नमेंट कॉलोनी थी, तो वो बेल प्लांट कॉलोनी थी, उसमें पार्क भी थे और सैनिटाइजेशन जो है, सड़क भी बढ़िया थी, घर में ही पार्क भी था, मतलब खेत टाइप का था, गार्डन वगैरह कर सकते थे उसमें, तो एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था वहाँ का। और जैसा कि समय आवास विकास में उस टाइप में मिल रहा है ना, उसी टाइप की कॉलोनी वो भी थी, तो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ खेल कूद में भी हम लोग काफ़ी आगे रहे, पार्क में खेलते थे शाम के समय टाइम, लगभग सभी अड़ोसी पड़ोसी जितने भी थे सबके बच्चे आ जाते थे, तो सब वो जमाना ही अलग था ना, तो बच्चे सब सेंटर हो जाते हैं, ऐसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, उनके सामने सिक्योरिटी इशू हो जाते हैं, लेकिन अब हम लोग के टाइम में इतना सिक्योरिटी इशू नहीं था, तो पूरी फ्रीडम हम लोग को रहती थी, स्कूल के बाद जो है खूब मन लगा के खेलते भी थे हम लोग, आम भी तोड़ते थे, जैसे आंधी आ गई तो पेड़ से आम गिरते थे उसको भी बीनते थे हम लोग।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, बचपन में ये आम तोड़ने का, इस तरह चढ़ के जामुन तोड़ने का अलग ही मजा होता है। बिल्कुल
1: नए नए खेल है, या जो है जानवरों के साथ भी खेलना हो गया, उनके लिए घर बनाना हुआ, छोटे से ये सब भी हम लोगों ने सीखा कि जानवरों की भी हेल्प करनी चाहिए, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनके लिए भी हम लोग उसी में जो
0: छोटे छोटे घर बनाते थे,
1: घर बना देते थे, दूसरे के यहाँ पकड़ लाते थे उसके अंदर रख देते थे, उनके लिए रोटी वोटी रखते थे, तो ये सब भी जो है जुड़ाव रहता था नेचर से, ये सब जो है सीखा हम लोगों ने वहीं से।
0: जी जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और जैसे रेलवे कॉलोनी का जो माहौल है वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हालांकि वो जो खेल वाला चीज़ है वो थोड़ी सी कहीं कमी आ गई है, बट जितना भी आपने बताया कि गार्डनिंग करने के लिए स्पेस होता था, पूरे पूरे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, वो सब बिल्कुल वैसा ही है। सो आपको क्या लगता है, आपका जो बेसिक चाइल्डहुड था, जो चाइल्डहुड आपका था, वो कितना ज़्यादा आपको प्रोग्रेस में आपको हेल्प किया, जैसे ये खेल कूद है, या अभी आप टीचिंग में अपने हेल्प लेते होंगे उसकी, बच्चों को सिखाते होंगे उस तरह से, तो कितना हेल्प मिलता है आपको अपनी चाइल्डहुड की चीज़ों से?
1: अब ये किसी बच्चे का जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है वो चाइल्डहुड पे ही डिपेंड करती है। बचपन में बच्चा जो सीख जाता है वो समझ लीजिए एक न्यू का काम करता है, तो उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो जो चाइल्डहुड में जो मेरी पर्सनालिटी में जो चीज़ें इंसेक्ट हो गई वो अभी तक काम आ रही हैं। अब जैसे मुझे कोई भी चीज़ जो मैं लर्न कर लेता हूँ दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता था, पुरानी चीज़ें अभी तक भी मुझे याद है। अभी भी जो स्कूल में पढ़ाने अगर मैं जाता हूँ मैथ वगैरह में, बच्चा अगर कोई नया टॉपिक पूछ लेता तो हमें बुक देखना नहीं पड़ता है, पुराने फार्मूले से मुझे याद आ जाता है। 6 to 8 में पढ़ाता हूँ, इसमें साइंस टीचर ही हूँ मैं हूँ, तो लेकिन अगर कोई गांव का बच्चा है 10th का 12th का क्वेश्चन लेकर भी आ जाता है तो उसकी भी मैं हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये नहीं है कि पुराना फार्मूला देखना पड़े या उसको कह दूँ कि कल आइएगा तब मैं बताऊँगा, जो पुरानी मेमोरी है मेरी वो उसी के आधार पर मैं अभी रिकॉल करके मैं बता देता हूँ। तो ये सब चाइल्डहुड से ही है डेवलपमेंट रहता है, जो खान पान है, खेल कूद है, जो भी चीज़ें आपने बचपन में सीखी है उसी से ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है, हमारा ब्रेन जो है वो अर्ली स्टेजेस में ही बहुत ज़्यादा सीख लेता है, फिर वो ताउम्र काम आता रहता है। अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि आपने बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखी जो अभी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या सीखा अपने पेरेंट्स से जो आप अभी तक बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई ऐसी सीख अपने पेरेंट्स की जो आपको अभी तक याद है और आप बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं?
1: हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा जो है वो एक थीम है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सी,
0: बिल्कुल,
1: वो मैम ने अपने फादर से सीखी है कि अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने हमेशा ईमानदारी का ही गुण रखा है, तो उसी को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को ही डालने की कोशिश करते हैं कि अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है हर फील्ड में।
0: सर, कोई ऐसा बचपन का किस्सा जो आपको अभी याद आ रहा हो और आप हमसे शेयर करना चाहें, हमारे लिसनर से शेयर करना चाहें?
1: चाइल्डहुड का?
0: हाँ बिल्कुल,
1: बचपन में जो है मुझे मूवी देखने का बहुत शौक रहता था, उस समय वीडियो चलता था ना, तो वीडियो पे भी अमिताभ बच्चन उस समय काफी सुपरस्टार रहते थे।
0: बायोस्कोप वाला?
1: नहीं, बायोस्कोप नहीं, जो ये टेलीविजन कलर टेलीविजन होता है।
0: अच्छा अच्छा, टेलीविजन
1: ये बुक होता था 25-30 रुपए में, मूवी दिखाते थे, कैसेट आता था, VCR पे जो है मूवी दिखाई जाती थी ना।
0: अच्छा,
1: तो वो प्रचलन था, तो छोटा ही में था, लेकिन हमारे मामा के लड़के जो रहते थे वो भी आते रहते थे, तो वो लोग जो है मूवी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते थे, तो मेरा भी चाव जाता था कि हाँ अमिताभ की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं देखने के लिए। तो अमिताभ की फिल्में जब वीडियो में आती थी किसी के यहाँ, तो मैं दौड़ के जाता था देखने के लिए उसको। तो एक बार ऐसे हुआ कि लाइट चली गई, जैसे 3-4 बजे के आसपास वीडियो चलना था, सामने ही घर के सामने रहते थे असलम ठेकेदार हैं, वो भी हम लोग के पड़ोसी ही थे, तो उन्हीं के यहाँ वीडियो आया था। तो लाइट जब चली गई तो उसके बाद फिर जो है मैंने सोचा कि अब तो लगता है देख नहीं पाऊँगा, लाइट की कटौती भी बहुत होती थी, 8 बज गया रात में लेकिन लाइट नहीं आई, पब्लिक का भी इतना हो रहता था कि पूरी भीड़ लगी हुई थी, उनके बाउंड्री वॉल पे सब बैठे हुए थे, पार्क में बैठे इंतजार कर रहे थे कि लाइट आ जाए, पूरा सिनेमा हॉल हो जाता था ना वो।
0: जी जी, और हमारे दिमाग में चल रहा होता था कि आगे क्या होगा।
1: लेकिन अब डिसिप्लिन हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा रहता था कि नहीं देखने नहीं, रात में बाहर नहीं निकलना है। तो लेकिन उसके बाद जो है पापा रात में जब आए मार्केट से, तो पापा की आदत थी कि रात में जो है वो बाहर कुर्सी लगाकर बैठते थे, दरवाज़ा खोल के लोग अगल बगल वालों से बातचीत किया करते थे, फिर जैसे ही लाइट आई तो पापा ने अपना ही पूछा कि कोई फिल्म आई है क्या, सब भीड़ लगाए हुए। तो मैं दौड़ के गया, मैंने पापा को बताया कि हाँ एक बहुत अच्छी फिल्म आई है, वही सब देखने के लिए जा रहे थे, मैं भी जाऊँ क्या? तो उस दिन पापा का, मैंने कहा ठीक है जाओ, मैं भी बैठा हूँ। तो मुझे वो फिल्म देखने के लिए मिल गई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: वाओ, ये तो काफ़ी अच्छा किस्सा है वैसे।
1: जी, और लौट के जब एग्जाम फिल्म ख़त्म हुई तभी पापा मुझे बाहर बैठे मिले, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा बंद था फिर मुझे खटखटा ना पड़ता, तो वो जो है अच्छा लगा मुझे।
0: दैट्स वंडरफुल। तो लिसनर्स, हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर के धड़कन।

0: She had an access.
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टर स्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गौधुली, और मैं हूं आपकी फेवरेट आरजे मोनिका। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं मिस्टर विनय कुमार पाठक, असिस्टेंट टीचर जूनियर हाई स्कूल। तो आधी से ज्यादा बातें हमने कर ली थी उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, और वो कितने ज्यादा शरारती हैं ये भी हमने जान लिया था, मूवी देखने गए थे। सो आइए जानते हैं और भी सारी चीज़ें, और भी ढेर सारी बातें करते हैं, खूब सारी जानकारी लेते हैं। वेलकम बैक सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, किससे मुझे जानने में बड़ी उत्सुकता है इस बात की, कि आपने बताया आपके फादर टीचर थे, आपकी फैमिली में सब टीचर हैं, तो ये टीचर बनने की प्रेरणा आई कहाँ से?
1: टीचर बनने की प्रेरणा बेसिकली फादर से ही आई, क्योंकि पापा बहुत प्रभावी ढंग से टीचिंग करते थे और हम लोग को भी पढ़ाते थे। जब उनको मौका मिलता था तो घर पर हम लोग को भी टीचिंग करते थे। तो मेन जो है प्रेरणा पिताजी से ही मुझे मिली।
0: तो बचपन से आपने सोच रखा था कि आप टीचर ही बनेंगे?
1: जी।
0: अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते?
1: अब अगर टीचर नहीं होते तो फिर अगर वैसे हम तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, हमने भी आईएएस पीसीएस की तैयारी की थी, नहीं होता तो फिर कुछ और होते।
0: वही मैं जानना चाहती हूं,
1: लेकिन किस्मत में जो है टीचर ही है तो टीचर ही बने।
0: मतलब आप किस्मत से टीचर हैं?
1: किस्मत है और अपना प्रयास भी है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बेसिकली ये जानना चाहती थी कि जैसे आपने बताया कि टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, टीचर बनने की आपने प्रेरणा ली, आप टीचर हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ टीचर आपका? कितने सालों से आप जो है टीचिंग प्रोफेशन में हैं?
1: जी बेसिक में तो करीब 12 साल से मैं टीचर हूँ, लेकिन उसके पहले भी टीचर था समझ लीजिए। ड्यूरिंग माय पीजी कोर्स एमएससी के साथ में ही मैंने घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को। तो वो उसके अलावा जो है पापा के कॉलेज में भी मैंने एक साल पढ़ाया था पार्ट टाइम में। फिजिक्स के जे सिंह मार्ट साहब रिटायर हो गए थे तो पोस्ट वैकेंट थी, तो एक साल मैंने टेम्प्रेरी बेस पे वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाया था। और इसके अलावा जब बीएड मैंने किया तो बीएड के बाद फिर वहाँ लखनऊ में भी मैंने पढ़ाया था, ब्राइट विंटर कॉलेज लखनऊ में गुलाची मंदिर के पास में, तो वहाँ भी मैंने टीचिंग किया था। उसके बाद फिर यहाँ बीएसएसबीटीसी के बाद जो मेरी पोस्टिंग हुई तो इसमें फिर मैं पहली पोस्टिंग मेरी कर्नलगंज में हुई थी, जहलीपुरवा प्राथमिक विद्यालय जहलीपुरवा में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो उस समय जो है मुझे लगा कि बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है मेरी, ग्रामीण परिवेश के विद्यालय रहते हैं इसमें, और उस समय रोस्टर से पोस्टिंग हुई थी, हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया था, जेंट्स हो या लेडीज़ हो सबको जो है ऐसे ही हो गई थी, स्कूल जो है चूज़ करने का मौका नहीं दिया गया था। तो रैंडमली हम लोग की भी पोस्टिंग हो गई कर्नलगंज में, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। तो पहले मैंने सोचा कि कैसे जाएंगे, इतने दूर कभी मोटरसाइकिल चलाकर कभी डेली मैंने अप डाउन नहीं किया था, तो लेकिन तभी हिम्मत बांधा पहुँचे वहाँ पे। तो पहले बीआरसी पे के पास पहुँचे हम लोग, तो बीआरसी पे दो चार पुराने टीचर मिले, उन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया, फिर स्कूल पहुँचे तो स्कूल भी बिल्कुल नया नया बना हुआ था, उसमें कोई टीचर थे भी नहीं, दो शिक्षा मित्र थे नए नए, नई पोस्टिंग हुई थी। तो स्कूल का माहौल देख कर भी जो है और थोड़ा हिचके कि कैसे पढ़ाएंगे, यहाँ सब कुछ अपना ही करना था, पूरी व्यवस्था भी करनी है। तो लेकिन धीरे धीरे जब काम करना मैंने शुरू किया तो जो पुराने लोग थे वो जो है जैसे हर ऑक्यूपेशन में होता है, जो सीनियर और जूनियर वाला रहता है, जो पुराने लोग रहते हैं वो हावी होने की कोशिश करते हैं, बात बात पर टोकना, ऐसे किया करो वैसे किया करो। तो लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैंने काम करना शुरू किया तो वहाँ के जो एबीआरसी थे श्री डी के सिंह सर मुझे मानने लगे और फिर मुझे ट्रेनिंग वगैरह में भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे पब्लिसिटी मेरी बढ़ने लगी ब्लॉक में और लगभग स्टेट लेवल की ट्रेनिंग में भी मैं गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ट्रेनिंग में मैं गया, और लगभग जितनी भी ट्रेनिंग होती थी सब में मेरा नाम रहता था। तो ट्रेनिंग मैं डायट पे लेता था, फिर बीआरसी पे ट्रेनिंग देना भी लगा, और उसमें सैलरी हम लोग के करीब 9 महीने के बाद तब लगी थी। वेरिफिकेशन में बड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि ये पूरे स्टेट में नियुक्ति हुई थी, करीब 72,000 टीचरों की नियुक्ति हुई थी, तो इतने बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन करा पाना सरकार के लिए भी या बीएससी के लिए भी मुश्किल था, तो नया सिस्टम बनाना पड़ रहा था उन लोगों के लिए, टाइम लग रहा था। तो करीब 9 महीने के बाद वेतन मिला था। तो उस समय जो है जो इसमें स्टाइपेंड मिलता था जो ट्रेनिंग में, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मुझे मिलता था। तो जब भी 3,000 रुपये मिल जाता था मंथ के लास्ट में, तो बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम पेट्रोल का दाम निकल आएगा। तो जो है एक अच्छा अनुभव कर्नलगंज में भी मेरा रहा, और लगभग जो है ट्रेनिंग देने की वजह से सारे अधिकारियों से भी परिचय हो गया, अधिकारियों का भी सपोर्ट रहता था। मंत्री जी जो श्री योगेश प्रताप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री बने थे, तो उनके संपर्क में भी हम लोग रहते थे अच्छा काम जैसे, उनसे भी बातचीत होती रहती थी, इंटरेक्शन रहता था और सपोर्ट उनका भी रहता था। तो कर्नलगंज में करीब 4 साल मैंने बढ़िया काम किया, लेकिन बाद में जब प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन में फिर मैं रुपए डी में आ गया। तो रुपए डी में भी इंस्टॉल करने के बाद अब जो है अच्छा इस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी है मेरा, और बीच में जो है मैं ABRC भी उसी समय हो गया था झंझरी ब्लॉक में, मैं ABRC भी करीब था 2.5 साल करीब ABRC भी मैं था। ABRC के रूप में भी हम लोगों ने बढ़िया काम किया, और 5 लोगों की टीम थी उसमें। सब्जेक्ट वाइज ABRC गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि मोटिवेशन के लिए रखे जाते थे। मैं साइंस में था, मैथ में श्री कमलेश पांडे जी थे, इरफान मोइन जी थे, और अफसर हसन जी थे, ऋचा सिंह थी, 5 लोगों की टीम थी। तो 5 लोगों की टीम हम लोग की है बहुत अच्छी टीम थी, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया, और स्कूल में जाकर हम लोग जो है सपोर्टिव सुपरविजन करते थे। ऐसा नहीं था कि अचानक पहुंच जाइए और किसी को जो है गिल्टी फील कराइए, ये हम लोग का नहीं था। 5 लोगों की टीम जो है सपोर्टिव सुपरविजन रहता था कि हाँ पहले से बता देते थे कि आना है, आप लोग जो है कायदे से तैयारी किए रहिएगा। तो उस हिसाब से टीचर भी धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होना शुरू हो गया सब लोग, तो हम लोग का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था। झंझरी में एजुकेशन का लेवल जो है काफ़ी अच्छा हुआ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई प्रोग्राम होता था या कहीं भी, तो पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी अच्छा रहता था झंझरी का भी।
0: सर जैसे अभी आपने ABRC की बात की कि आप 2.5 साल वहाँ पर भी थे, और तो आप हमारे श्रोताओं के लिए बताएंगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में कि बेसिकली ABRC होता क्या है, इसका काम क्या होता है, और आपने जब आप ABRC थे तो क्या क्या किया कुछ प्लीज।
1: अब इस समय तो ABRC की जो योजना सरकार की वो ख़त्म हो गई है। उस समय जो थी ये ABRC का मतलब असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर होता था। तो एक BRC होता है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, वो तो इसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ही होते हैं
0: जी जी जी।
1: और जो असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर होते थे वो टीचर्स में ही बनाया जाता था, उसके लिए बाकायदा फॉर्म निकलता था और टीचर्स ही अप्लाई करते थे, फिर रिटन टेस्ट होता था, फिर इंटरव्यू होता था, उसके बाद जो है मेरिट के आधार पर ब्लॉक मिलता था। तो मेन काम ABRC का ये रहता था कि जो स्कूल है उसमें सपोर्टिव सुपरविज़न करना रहता था, इसके अलावा एजुकेशन के मामले में या टीचिंग इन्हेंस के बारे में अगर किसी टीचर को कोई दिक्कत है या कुछ है तो विद्यालयों में जाकर सपोर्ट करना रहता था, उसमें एजुकेशनल सपोर्ट का काम ABRC का रहता था। और साथ ही उसी के साथ साथ में जो ऑफिस में भी सहयोगात्मक भूमिका हम लोग निभाते थे, सूचनाओं के आदान प्रदान में भी हम लोग का रोल रहता था
0: जी जी। तो आपने कहा कि आप जो है ABRC थे 2.5 साल तक, और प्रेजेंटली आप रुपए डी में कार्यरत हैं
1: जी जी।
0: तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग ने जो देखा है, जो सुना है या जो अभी तक सुनते आ रहे हैं, हो सकता है गलत हो, मगर गवर्नमेंट स्कूल्स का जो है बहुत ज़्यादा हम लोग ने कहीं बखान नहीं सुना है, कमियां ज़्यादा सुनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि कमियों को हम किस तरह जो है उसे कर्ब आउट कर सकते हैं, उसे किस तरह से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, कितना आपको लगता है एज अ टीचर?
1: गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वो बहुत ही योग्य टीचर हैं, और इसमें तो और जो है सब वेल क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं, PhD तक के लोग हैं, नेट क्वालिफाइड लोग हैं, और मेहनत भी लोग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग ग्लैमर के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, वो ग्लैमर अभी नहीं क्रिएट हो पा रहा है। तो बाकी जो एक गार्जियन का विश्वास एक बार लाना पड़ेगा, जो खासकर जो गांव के रिच लोग हैं वो एक परंपरा ही बन गई है कि हे दृश्य देखने लगते हैं कि हाँ सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो रेपुटेशन उनके डाउन हो जाती है, तो यही कारण है। नहीं तो अगर जो सबल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, नॉर्मली रिच लोग हैं, उनके बच्चे भी आना शुरू हो जाएँ तो एक बार फिर से रौनक लौट सकती है विद्यालयों की। अब ये कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि प्राइवेट स्कूलों में के बच्चे हम लोगों के स्कूल में आ गए थे, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई थी हमारे यहाँ तो। लेकिन फिर जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ वैसे फिर वो सब भागना शुरू हो गए वहीं पे प्राइवेट स्कूलों की तरफ, क्योंकि वो ग्लैमर अपना ज़्यादा दिखा ले जाते हैं, हम लोग के यहाँ ग्लैमर उतना हो नहीं पाता है। अब धीरे धीरे जो है सरकार प्रयास कर रही है, कायाकल्प की योजनाएं चल रही हैं, बिल्डिंग भी अच्छी हो रही है, बेंच भी आ रहे हैं, कंप्यूटर भी धीरे धीरे आ जाएगा, तो टीचर भी नियुक्तियाँ होंगी तो टीचर्स भी हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आने वाले समय में जो है सरकारी स्कूलों की छवि बदलेगी, और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रयास करना चाहिए, अपने सहयोगियों से अध्यापकों से भी मेरा निवेदन है कि ताकि अभिभावकों के ऊपर जो इकोनॉमिकली बोझ पड़ रहा है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट गार्जियन का शिक्षा पे जा रहा है जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम लोग देखिए जो है GIC वगैरह में पढ़े, 2 रुपये महीने फीस में पढ़े थे, तभी पढ़ाई होती थी वहाँ पर, 9 बजे क्लास लगती थी और 4 बजे ही छुट्टी होती थी, गेट बंद हो जाता था, प्रेयर होती थी, सब कुछ जैसे प्राइवेट स्कूल में होता वैसे होता था। तो अब एक बार गार्जियन का विश्वास लाना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से भरोसा लोगों का आएगा फिर।
0: अच्छा, ये ग्लैमर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों चीज़ों को हटा के कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए? लेकिन मेरा जो मानना है, जैसे स्पेशली मेरा मानना है कि एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो है इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लैमर के साथ साथ। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल ये एजुकेशन क्वालिटी जो है, जो शिक्षण विधि है, वो कितना ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए?
1: अब जो है इसमें जो है गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, तमाम कई योजनाएं हैं, जैसे इसमें कई ऐप है, दीक्षा ऐप है, प्रेरणा ऐप है, इसके अलावा जो स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी होने लगे हैं, इसके अलावा टाइम टाइम पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए भी आदेश आया है, हमारे विद्यालयों में बच्चों को बुलाकर उनको योग भी सिखाया जाएगा, साथ में कुछ मिठाई भी बांटी जाएगी। तो इस तरह से जो है जुड़ाव समाज का करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में चेंज आए।
0: हाँ, ये बात तो है। अच्छा, हमने देखा है, जैसे हम लोग ने भी एक्चुअली ये चीज़ किया है, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी टीचर क्या करती थी, सरप्राइज टेस्ट के नाम पर वो किसी एक बच्चे को खड़ा कर देती थी और बोलती थी ये टॉपिक है, इसको आप बच्चों को पढ़ा के दिखाइए। तो ये जो तरीका है, ये क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में एप्लीकेबल है, या गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर नहीं आए हैं तो किसी एक बच्चे को दूसरा टीचर अलॉट कर देता है कि ये टॉपिक अगर तुम्हें आती है तो बच्चों को पढ़ाओ, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, ये पीयर लीडर्स उसको कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है हम लोग के यहाँ भी, और उसका जो पढ़ने में अच्छा बच्चा होता है उसको पीयर लीडर्स के रूप में हम लोग रखते हैं। मान लीजिए कि 3 क्लास है, एक ही टीचर है, तो बाकी 2 क्लास को एंगेज रखने के लिए जो अच्छे बच्चे हैं उनको कोई टॉपिक हम तैयार करा कर दे देंगे, तो वो बच्चे तब तक देखेंगे। तो ये होता है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है,
0: वो होता है, वो ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि टीचर्स एब्सेंट हैं, टीचर्स को क्लास नहीं लेने का मन है और उन्होंने बच्चों को खड़ा कर दिया कि आप पढ़ाइए, तो ये कहाँ तक सही है?
1: तो ये हालांकि
0: क्योंकि हमने ये चीज़ सुनी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, अक्सर हम लोग ने देखा है कि अधिकारी जो है चेक करने गए, इंस्पेक्शन पे गए और उन्होंने बच्चों को पाया कि बच्चे पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी और टीचर गायब है, तो मतलब इस चीज़ को कितना हम लोग देख सकते हैं, किस लेवल तक देख सकते हैं, या इसमें क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है?
1: अब जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे को खड़ा करने वाला, इसमें तो फर्स्ट टू फिफ्थ में ही चल सकता है कि गिनती गिना रहा है या पहाड़ा करा रहा है, ABCD करा रहा है, जूनियर हाई स्कूल में 6 to 8 में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब उसमें बस ये है कि पोएम वगैरह भले कराते रहें, वो कि हिंदी के पोएम याद करा दें बच्चों को, दोहराते रहें, या मैप अलग कुछ दे सकते हैं कि मैप टांग के उसमें देखते रहें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो ये हो सकता है। हम लोग इसको करते भी हैं, जब कभी ऐसा रहता है कि किसी सूचना को बनाने में जब लग जाते हैं तो हम लोग भी ये करते हैं कि जो अच्छे बच्चे रहते हैं मैप क्लास में टांग देते हैं और किसी अच्छे बच्चे को मॉनिटर की तरह खड़ा कर देते हैं, वो बच्चों को बुला कर उसमें से ढूंढने के लिए कहता है कि दिल्ली कहाँ पे है, UP कहाँ पे है, तो उससे बच्चों को जो है ज्योग्राफी का नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाता है, मैप के बारे में भी पता हो जाता है और इंटरेस्ट भी रहता है।
0: अच्छा, अभी बीच में आपने प्रेरणा ऐप और दीक्षा ऐप के बारे में बात की थी, तो हमारे लिसनर्स को आप बताएंगे ये एक्चुअली ये है क्या, इसको कब शुरू किया गया, या इसका क्या जो है फंक्शन या ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था?
1: अभी एक क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए ही ये सारे ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। विजय किरण आनंद जी जो महानिदेशक हैं, तो उन्होंने ही ये सब लॉन्च किया था। तो जो दीक्षा ऐप है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित ऐप है, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी दिया गया है। इसके अलावा बुक्स भी सारे अवेलेबल हैं उसमें, बार कोड, अब जो नई किताबें हमारे यहाँ स्कूल में आई हैं उसमें बार कोड भी रहते हैं, हर लेसन में बार कोड दिया रहता है। तो आप दीक्षा ऐप अपने मोबाइल

0: यूज करना चाहे तो जो है उनके लिए बहुत अच्छा ऐप है ये, ना सिर्फ सरकारी स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं।
1: जी, एक चीज मैं जानना चाहती थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने लगी कोविड के बाद से।
0: जी,
1: अटेंडेंस सिस्टम हो गया, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो गई, प्रोजेक्ट लर्निंग हो गई, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है गौधुली, और मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे मोनिका। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनका नाम है मिस्टर विनय कुमार पाठक जी, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं जूनियर हाई स्कूल में। इतनी सारी हमने बातें की और जाते जाते एक सवाल मैंने पूछा था, ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आपको क्या लगता है सर, कि हमें जो है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को टेक्नोलॉजी की और ट्रेनिंग देनी चाहिए, कि जितनी उनको आती है उतना जो है बहुत एफिशिएंट है, उतना जरूरी, उतना काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंट में जो है टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा लेवल पर, तो हमें लगता है कि हमें टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, दोनों को बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको यूज करने की, उसको अप्लाई करने की।
0: जी बिल्कुल, ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी जो है। अब जैसे अब ये DBT जो प्रेरणा ऐप है बच्चों के, गार्जियन के अकाउंट में पैसे, यूनिफॉर्म के, बैग के, जूता मोजा के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आने लगे हैं, तो उसके लिए है कि प्रेरणा पोर्टल पर ही इनरोलमेंट करना पड़ता है, उसमें पूरी फीडिंग करनी पड़ती है। तो जो टीचर हैं वो अपने मोबाइल से ही सब कुछ करते हैं, उनका डाटा ही रहता है, लिमिटेड डाटा भी मिलता है, 1.5 GB ज़्यादातर लोगों के उसमें रहता है, तो उसमें FM भी सुनना है, वो भी सुनना है, तो कभी कभी वो दिक्कत आ जाती है। ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और साथ में जो है मिलना भी चाहिए। जैसे टैबलेट की बात हो रही थी, तो अभी तक नहीं मिल पाया है, टैबलेट होना चाहिए और डाटा के लिए कुछ मिलना चाहिए, तो जिससे पूरे मनोयोग से लोग कर पाएँ। तो टेक्नोलॉजी के लिए फीडिंग में कई लोगों को दिक्कत भी आती थी। अब जैसे इसमें SMC अकाउंट चेंज हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है, तो उसमें भी जो है सिस्टम पूरा ऑनलाइन सिस्टम सब कर दिया गया है, पासबुक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, चेक की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र सब होता है फंड, तो उसमें भी फीडिंग वगैरह में कई जो टीचर हैं उनको दिक्कत आती थी। जो नई जनरेशन के टीचर हैं वो तो तुरंत सीख जाते हैं, जो लिंक्स वगैरह आती है पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, लेकिन पुराने जो टीचर्स हैं अभी भी हैं उनके सामने समस्या रहती है, तो उनको दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। तो इसके लिए जो है वृहद लेवल पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो भी ऑफलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
1: जी, जिससे उनको प्रैक्टिकली समझाया जा सके,
0: प्रैक्टिकली समझाया जा सके।
1: जैसे अभी आपने बताया था कि स्टूडेंट और टीचर में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ये डिसिप्लिन का जो लेवल है ये कितना देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्कूल्स में? क्योंकि हमने कई बार सुना है, देखा है कि जो जितनी लेवल की स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है, उतनी कहीं कहीं जो है चूक हो जाती है, बच्चे बंक करके

0: क्लासेस चले जाते हैं, कई बच्चे होते हैं क्लासेस नहीं लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ टीचर? जो है किस तरह की स्ट्रिक्टनेस को जो है यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है?
1: जी, अब ये जो स्कूलों में फिजिकल पनिशमेंट बैन है
0: जी,
1: तो
0: जी
1: बच्चों को जो है प्यार से ही समझा कर और स्कूल में लाना भी है, प्यार से पढ़ाना भी है, प्यार से ही रोकना भी है, तो थोड़ा बहुत जो है चैलेंज है टीचर्स के सामने, लेकिन तब भी विद्यालय में अच्छा काम हो रहा है। कई टीचर हैं जो अच्छा कर भी रहे हैं, अचीवमेंट उनको उनकी अच्छी है भी, कई लोग जो है अध्यापक पुरस्कार उनको मिला भी है अच्छे कामों के लिए, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है टीचर्स की वो काम अच्छा कर रही है। डिसिप्लिन मेंटेन करना एक चैलेंज है, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगी, वो भी सही हो जाएगी।
0: अच्छा, जैसे हमारा मतलब बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो क्लास हमें अच्छी लगती है वो हम नहीं मिस करना चाहते हैं। जिस क्लास में हमें लगता है कि हम या फिर हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, या फिर टीचर बेकार पढ़ा रहा है, या फिर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसी क्लास को हम बंक करना चाहते हैं, उसी क्लास से हम पीछे भागते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें मैथ्स नहीं समझ में आ रही है तो हम मैथ्स की क्लास को बंक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इनोवेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग जो है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए?
1: बढ़िया क्वेश्चन आपका है। ये हम लोग भी जब पढ़ते थे तब ये रहता था हम लोग के साथ में भी, कि कुछ टीचर जो है उनकी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी रहती थी तो उनका क्लास हम लोग नहीं मिस करते थे, भाग के जाते थे, क्लास अटेंड करते थे। कुछ टीचर्स जो है बोरिंग क्लास रहती थी उसमें भागते थे हम लोग। ठीक, ये अभी डिपार्टमेंट में हमारे जो क्रिश्चियन कॉलेज के मैनेजर साहब थे उन्होंने एक वाक्या सुनाया था कि एक बार एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ पर पूछा गया कि बताइए गुरु और माता में कौन श्रेष्ठ होता है। तो लोगों ने कहा कि दोनों श्रेष्ठ होते हैं, गुरु भी श्रेष्ठ होता है, माता भी श्रेष्ठ होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि दोनों में से एक अगर चूज़ करना हो तो बताइए दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है। तो मैंने वहाँ जवाब दिया कि मेरे हिसाब से जो गुरु है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो लोगों ने पूछा ये क्यों, उन्होंने बताया कि मजाक में ही कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि माँ जो है वो सिर्फ एक ही बच्चे को सुलाती है और गुरु के अंदर ये काबिलियत होती है कि पढ़ाते पढ़ाते पूरी क्लास को सुला देता है।
0: तो
1: ये नहीं होना चाहिए। हमारी टीचिंग जो है एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कि बच्चे जागते रहें क्लास में, सोए ना। तो उसके लिए जो है इनोवेटिव टीचिंग की ज़रूरत है, और जो हमारे टीचर्स हैं वो इनोवेशन को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। पढ़ाने की नई नई तकनीकी है, उसमें स्मार्ट क्लास का यूज भी हो रहा है। सारे विद्यालयों में नहीं है लेकिन कुछ विद्यालयों में हैं स्मार्ट क्लास भी चल रहे हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन वगैरह भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, मंथली टेस्ट भी हो, सरप्राइज टेस्ट भी हो रहे हैं, क्विज वगैरह भी हो रहे हैं, तो उससे जो है रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। अब इधर जो है रिपोर्टिंग जो आ रही है वो अच्छी ही आ रही है।
0: सर, इनोवेटिव अप्रोच से मुझे एक चीज़ याद आती है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उतनी जल्दी याद नहीं होगी, लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हम लोगों को कंपैरेटिवली जल्दी याद हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि जो कार्टून और कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू पढ़ाना है, एनिमेशन वाले वीडियोस के थ्रू पढ़ाने की बात हो रही है या किसी मॉडल के थ्रू पढ़ाने की बात हो रही है, ये कितना एप्लीकेबल होना चाहिए, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में कितना एप्लीकेबल होता है?
1: हाँ, अब ये दोनों का रोल अपना अपना रहता है। ऑडियो वीडियो का भी जो हम लोगों ने बीएड किया है उसमें टीचिंग मेथड्स में ये सब रहते हैं, ऑडियो वीडियो वाले भी रहते हैं। तो ये तो है, जैसे फिल्म है कोई आप जो देखते हैं तो बच्चे को देखिए हमेशा वो गाना याद रहता है, गली में घूमता है, छोटा बच्चा रहता है यूट्यूब पे देखे गाना सीख लेता है, हमेशा गाता रहता है, उसको दोबारा उसको लर्न नहीं करना पड़ता है।
0: शायद इसीलिए हम लोग को बचपन में कुछ चीज़ें गाने के थ्रू याद कराई गई थी।
1: जी जी जी, तो हाँ सही कह रही हैं। तो इसीलिए बेसिक में भी है कि नंबर सिस्टम 1 2 3 अगर याद कराना होता है तो कई पोएम्स के थ्रू भी याद कराया जाता है। ABCD है उसको भी पोएम के थ्रू, रेम्स एक दे दिया जाता है उसके थ्रू लोग याद करते हैं। तो ये है, ऑडियो वीडियो काफ़ी कारगर है, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों परसेंटेज ये नहीं कि 100% ऑडियो वीडियो भी थोप दिया जाए तो भी नहीं है,
0: फिर उससे उनकी लिखने की आदत चली जाएगी, लिखने और पढ़ने की आदत जो है।
1: जी जी, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को एजुकेशन को सौंपना भी सही नहीं है। जो क्लास टीचिंग का अपना अलग महत्व रहता है, उसमें प्रॉपर जो है गाइडेंस होता है। अब जैसे कोरोना पीरियड में ही देख लीजिए, बच्चों को जो है पूरा इक्विपमेंट दिया गया, मोबाइल पे सारे स्कूलों में टीचिंग हुई, गैप थोड़ा बहुत तो कम हुआ लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो क्लास टीचिंग का रहता है। बच्चों ने काफ़ी कुछ मिस किया ना, क्लास में है, हर बच्चे को इंडिविजुअली टीचर देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है। और टेक्नोलॉजी में जो है बच्चा पता नहीं जो छूट रहा है उसको कौन देखेगा वहाँ पर। जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो हर जगह सीख जाएगा, लेकिन जो छूटने वाला बच्चा है, थोड़ा स्लो है, लर्नर है, उसको देखने के लिए तो क्लास टीचिंग ही जरूरी है।
0: ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है वहाँ
1: जी
0: पर।
1: जी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है जी। तो अपना महत्व तो है पूरी तरह से, टेक्नोलॉजी को सौंपना भी ठीक नहीं है, दोनों होना चाहिए,
0: दोनों का एक सटीक बैलेंस जो है
1: बैलेंस होना चाहिए।
0: हाँ वो बिल्कुल एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए ठीक है।
1: जो प्राइवेट स्कूल में भी आप देख रही होंगी कि जो स्मार्ट्स का क्लास वगैरह है वो डेली नहीं कहाँ चलाते हैं, वो फीस तो लेते हैं मंथली वो, लेकिन चलता है कहीं साल में 2-3 बार ही चलाते हैं। तो उनके यहाँ भी जो है वो तो रटा सिस्टम चल रहा है, लेकिन मेन ग्लैमर ही है जो गार्जियंस को इसमें खींचता है उनकी तरफ।
0: अच्छा मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बेसिकली हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो तो साथ साथ में है ही, उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को रन करने के लिए, उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए जो है नॉर्मल पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
1: जी जी।
0: इस पर आपके क्या विचार हैं?
1: नहीं बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के जो है स्कूल चला पाना आसान नहीं है, खासकर गाँव में ही। इसे गवर्नमेंट में भी SMC का गठन उसने किया है, मैनेजमेंट कमेटी स्कूल की, जैसे आप लोगों के स्कूलों में मैनेजमेंट होता है वैसे ही अब सरकारी स्कूलों में भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है। 15 सदस्य उसमें होते हैं, जिसमें से 11 जो है गार्जियंस ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए ये सारी योजनाएं लाई गई हैं। इसके अलावा प्रधान का भी रोल है, MDM जो बन रहा है उसमें प्रधान को भी साझेदार किया गया है। तो बिना पब्लिक की सपोर्ट के स्कूल की सुरक्षा संरक्षा ये भी संभव नहीं है। और साथ में बच्चों को लाने के लिए भी जो है, जब पब्लिक को आप जोड़ेंगे तो पब्लिक जान पाएगी कि क्या क्वालिटी आपके स्कूलों में, तभी बच्चे आएंगे और रुकेंगे भी।
0: सर इससे अलग मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, अभी जहन में आया कि कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगी जो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में फेस की होगी, और आप देख रहे हैं कि आज भी कुछ हद तक वो चैलेंजेस हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए एज अ टीचर आप क्या रोल अदा करना चाहेंगे, उसमें क्या कितना आप जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहेंगे एज अ टीचर?
1: जी जी। अब जो मेन चैलेंज बच्चों का रहता है स्कूल में, पढ़ाई से रिलेटेड जो चैलेंज रहता है, उसमें मेन पाठ्यक्रम का पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना। कभी कभी ऐसा होता था कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, तो उसके लिए बच्चे को अलग से जो है कोचिंग लेनी पड़ती है। अगर क्लास में ही सिलेबस पूरा कर दिया जाए तो हो सकता है कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े बच्चे को। तो हमारे हिसाब से तो यही है कि एक टीचर को सिलेबस पूरा करना चाहिए, ताकि जो कमज़ोर बच्चा भी है, इकोनॉमिकली कमज़ोर है, वो ट्यूशन की ज़रूरत उसको ना पड़े।
0: ठीक है, तो ये तो था सिलेबस का। कुछ बेसिक चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जैसे उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में। हमारे साथ क्या होता था कि हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, तो बेसिकली हम ये नहीं जाहिर करते थे कि हमें ये समझ में नहीं आया है, और हम दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, आज भी बच्चों के साथ ये चीज़ है कि हम दूसरे को जाहिर नहीं करना चाहते कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। सो आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे फेस आउट किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए?
1: 90% बच्चे क्लास में ऐसे रहते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वो अंदर ही महसूस के रह जाते हैं। कोई नया चैप्टर जैसे आपने वर्गमूल जैसे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें भी अब 10% बच्चे ही तुरंत सी समझ में आता है कि हाँ क्या बड़ा क्या है, ये स्क्वायर रूट क्या है, कैसे निकाला गया। लेकिन 90% बच्चे ना तो बताएंगे, वो यस यस करते रहते हैं, नहीं बताते हैं। तो उसके लिए है कि जो टेस्ट वगैरह है, सरप्राइज टेस्ट है, या बीच बीच में ही बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहें, कुछ आसान लेवल के क्वेश्चन उनसे पूछते रहें, तो उससे जो है खुलेंगे धीरे धीरे। वो जब खड़ा करेंगे उनको तो नहीं बता पाएंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ अभी नहीं समझ गया, तो दोबारा फिर बताना पड़ेगा उनको ना।
0: लेकिन मेरा मानना है एक फ्रेंडली एटीट्यूड जो टीचर स्टूडेंट का होता है, या स्टूडेंट का को स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो होना जरूरी है।
1: टीचर का जो है स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडली होना चाहिए।
0: पता चले टीचर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट लग रहा हो, और स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि वो अभी पूछेंगे दोबारा तो शायद डांट दें। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडली एटीट्यूड होना जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ये रहता था कि जो टीचर प्यार से बोलते थे उनके पास हम लोग जाते थे, बात कहते थे, लेकिन जो टीचर मारने वाले रहते थे उनसे दूर ही रहते थे, क्लास में पीछे छुपे रहते थे कि कहीं खड़ा ना कर दो। तो ये है कि टीचर्स का रोल तो फ्रेंडली होना ही चाहिए।
0: अच्छा ये सब तो थी टीचिंग और उसकी बात है, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आपकी लाइफ को चेंज किया हो या ट्रांसफॉर्म किया हो, प्लीज़ हमारे लिसनर से शेयर करें।
1: जी जी, जो उसके लिए गुरु मंत्र तो ये है कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। इसके लिए एक सुकरात के बारे का मैं बताना चाहूँगा कि सुकरात के एक शिष्य थे, तो वो सुकरात के पास गए, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप बताइए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो सुकरात जो है बहुत महान आदमी थे, बोले नहीं, मौन ही रहे। फिर वो जो पीछे पड़ा था कि गुरुजी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो गुरुजी कुछ देर मौन रहे, उसके बाद उठकर चलने लगे धीरे धीरे, वो भी उसके उनके पीछे हो लिया। उसने फिर क्वेश्चन पूछा कि सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। तो सुकरात भी जो है कुछ बोले नहीं, चलते चले गए। समुद्र आ गया, समुद्र में भी चलते रहे वो पानी के अंदर, वो भी चलता चला गया पानी के अंदर। फिर पूछा कि गुरुजी बताइए जो है सफलता कैसे प्राप्त की जाए, मैं पूछ रहा हूँ, आप जो है कुछ सुन ही नहीं रहे, इतने बहरे हो गए हैं क्या। तो गुरुजी इतने इतने पानी में पहुँच गए, तो वो भी सीधे सीधे पहुँच गए वहाँ पानी में। उसके बाद फिर पूछा कि गुरुजी बताइए जो है सफलता कैसे प्राप्त की जाए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। बस गुरुजी ने ना आओ देखा ना ताओ उसका सिर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया, डुबो दिया पानी में। तो जब डुबो दिया, बस छटपटाना शुरू किया उसने, और छटपट कर किसी तरीके से भाग के उधर खड़ा हुआ तट पे। फिर कह रही गुरुजी मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए, आप तो मुझे मारने पे होता हो गए, नहीं बताना तो मत बताइए। तो सुकरात ने कहा कि बेटा ये बताओ कि जब मैंने तुम्हारा सिर पानी के अंदर डाल दिया तब तुम छटपटाने क्यों लगे। तो उसने कहा कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के लिए छटपटा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, जिस तरह से तुम्हें ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे, वैसे जब तुम कामयाबी के लिए छटपटाओगे तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी।
0: इंस्पिरेशनल है।
1: पैर पे गिर पड़ा के हाँ गुरुजी, गुरु मंत्र मिल गया मुझे। तो वही है कि हार्डवर्क का तो कोई तोड़ नहीं है ना, तो बच्चों को तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा सफलता पाने के लिए।
0: हार्डवर्क स्ट्रगल जो है वो हमें करनी ही है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो ये है कि ये रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम जो है वो हमारा देवी पाटन मंडल का पहला रेडियो स्टेशन है, पहला एफएम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ये तो बहुत खुशी हम लोगों को हुई जब इसका इनॉग्रेशन हुआ, बोर्ड हम लोगों ने देखा जिलास्थल के पास लगा हुआ।
0: जी जी जी।
1: तो दरअसल एफएम से जुड़े हम लोग शुरू से ही थे, जब लखनऊ में बीएड करने हम लोग गए थे तो हम लोग का सहारा एफएम ही रहता था, छोटा सा रेडियो 100 रुपये का खरीदा था अमीनाबाद से हमने, तो मनोरंजन के नाम पे वही लगाए रहते थे हम लोग। तो उसे सुबह भक्ति गाने भी आते थे, गाने आते थे, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती थी। तो एफएम से दिलचस्पी हम लोग की वहीं से लखनऊ से ही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि अपने गोंडा में भी ऐसा कुछ जो है हो। तो बड़ी खुशी हुई जब गोंडा में भी आप लोगों ने लॉन्च किया इसको, तो हम लोग बहुत खुश हुए। अभी भी कार में हम लोग बजाते हैं 89.6 एफएम आपका है, ड्राइवर से कह के हम लोग जो है वो मोबाइल से नहीं कनेक्ट करते हैं, हम लोग कहते हैं जहाँ तक रेंज पकड़ेगा वहाँ यही लगाए रहो।
0: जब
1: तक बिल्कुल जो है नेटवर्क चला नहीं जाता है तब तक चलता है हम लोग इसमें। जी
0: थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, दिस वॉज मिस्टर विनय कुमार पाठक, असिस्टेंट टीचर इन जूनियर हाई स्कूल। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए और इतनी सारी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा है कि दोबारा भी आप आएंगे।
1: थैंक यू
0: सो मच। तो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, विद योर फेवरेट आरजे मोनिका इन योर प्रोग्राम गौधुली।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं।
6: रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: गुड गुड गुड वाली इवनिंग। और भाई देखो, हम लोग कितने ज़्यादा लकी हो चुके हैं आजकल। मतलब नौ तपे में जहाँ शहर के शहर तपते हैं, हम लोग वहाँ पे अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा लकी क्या कौन ही होगा, मतलब क्या बताऊँ। सो मौसम की शुभकामनाएं सभी को कि भाई हम लोग फ़िलहाल एंजॉय करें बढ़िया वाला मौसम। और आप लोग के साथ आरजे बिना आज डॉक्टर लव को तो ले ही आई है, लेकिन हाँ, आज बहुत सारे खास सवालात के साथ भी आई है, क्योंकि सवाल जब कॉमन होते हैं ना, तो बातें थोड़ी ज़्यादा रिलेटेबल निकलती हैं। तो जब प्यार की कश्ती पे आप लोग बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग को ये बात सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि ये कश्ती पार लगाएगी कि नहीं लगाएगी, या फिर बीच में लुढ़का के चल देगी। तो फिलहाल आजकल प्यार की कश्ती में बैठने का मन तो सभी का है, लेकिन हवा जो है ना, वो बहुत ज़ोर से चल रही है और हर वक्त अलर्ट आते

रहते हैं हम लोग के फोन में कि आज 90 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तो कृपया सतर्क रहें। बताओ किसके किसके फोन पे ये अलर्ट अभी तक 4 बार आ चुका, मेरे फोन पे भी आ चुका है। तो चलिए प्यार की कश्ती में बैठ जाते हैं और जितने भी संशय हैं उनको पूछने के लिए डॉक्टर लव का नंबर घुमाते हैं, 6893 31 64 29। आप ही का नंबर है, डायल करते रहिए और चलिए प्यार की कश्ती में बैठ के देखते हैं कहाँ तक हम लोग आज जा पाते हैं। So enjoy this beautiful song from movie कहो ना प्यार है। और आप सभी को पता है ऋतिक और अमीषा की ये मूवी जब आई थी तभी इसने धूम धड़ाके मचाए थे। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि इस गाने के साथ हम लोग भी enjoy कर लें प्यार के थोड़े से रंग।

तो धुरंधर वाली शाम में आज धुरंधर वाले सवाल करके आप लोग बता दीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल मेरे मन में तो ये चल रहा है कि भाई अगर धुरंधर जैसी मूवीज़ आने के बाद भी कुछ एक्टर्स यानी कि रणबीर बैन हो सकते हैं एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, तब तो भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसी मूवी जिसने बैक टू बैक दोनों ही मूवीज़ को मतलब एकदम उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को सक्सेसफुली मतलब हमारे आँखों के सामने मतलब कहते हैं ना कि चढ़ते हुए देखा और फिर फाइनली उस एक्टर को बैन किया गया, क्यों वो तो आप सभी जानते ही हैं। फिलहाल कोई बात नहीं यार, ये सब होता रहता है और ये वही वाला हाल हो गया कि हमने तो सोचा चांद पे जाएंगे और वहाँ पे पूरी चमकीली दुनिया होगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या पता था कि हमारी हालत फिर ख़राब हो जाएगी। तो वैसे रणबीर तो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो ही जाया करती हैं और ये तो लाइफ है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कुछ भी मतलब अनप्रिडिक्टेड ही होता है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे साथ हमारे प्रिय डॉक्टर लव आने को हैं, तो उनके स्वागत में चलिए कुछ सुन लेते हैं और उनसे सवालात करने के लिए मैं कहूँगी पहला सवाल आएगा तभी मैं उनकी आवाज़ आप लोग को सुनाऊँगी, नहीं तो आपके इश्क का रंग कैसा है वो आप लोग खुद ही चढ़ा के देख लीजिएगा। तो चलिए हम सुनते हैं मलंग गाना फ्रॉम धूम 3 फॉर आपके डॉक्टर लव मलंग के लिए।

0: सब।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: डॉक्टर लव, आपके धुरंधर स्टाइल के लिए आपके लिसनर्स यानी कि आपके जो मरीज हैं वो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं।
1: जी
0: कि सर जी का इलाज करने का तरीका बिल्कुल धुरंधर स्टाइल है।
1: धुरंधर वाले स्टाइल में नहीं इलाज करते हैं, पहले धूम वाली स्टाइल में करते हैं।
0: फिर हमारे दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि आप भी बैन हो जाएं रणबीर की तरह।
1: नहीं, बैन नहीं होंगे।
0: रणबीर जी अभी बैन हो गए ना कुछ दिनों के लिए।
1: अच्छा, वो बैन हो गए होंगे। वो रणबीर जी हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए हैं। हमारे पास डिग्री है जो है, हम पूरे ऑल द वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो डिग्री को मान्यता प्राप्त है।
0: सो गुड इवनिंग अनिल जी, हमारे साथ कमल जी हैं, अनिल जी हैं, ममता जी हैं और साथ ही मनी जी हैं, मनी बरसाते हुए आ जाते हैं, नव्या जी हैं, तो सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर लव, जैसा कि नौतपा से तो सबको आराम मिल गया है
1: जी,
0: मतलब हमारे एक श्रोता हैं जो राजस्थान में रहते हैं, तो उनके यहाँ नौतपा ने बुरा हाल मचा के रखा है।
1: हाँ, तो बस बहुत जल्दी हम जो है वो बरसात कराने वाले हैं।
0: हाँ, उधर भी थोड़ा सा मतलब अपनी कृपा दृष्टि बनाइए।
1: आपने कह दिया है, जान लीजिए, खाली आप दिशा बताइए और दूरी बताइए कितनी है।
0: अब यहाँ से जो दूरी हो राजस्थान की
1: वो पता करके बता दें, क्योंकि वो जो समाज लगा कर बैठेंगे हम तपस्या में, तब जो है वो वहाँ के बादल को कुदे देंगे।
0: रेडियाई में काम करेंगे
1: है?
0: उतने रेडियाई में
1: काम, हाँ उतने रेडियाई में काम करना पड़ेगा हमको, तभी बरसा पाएंगे। नहीं तो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए और या उनसे कहिए व्हाट्सएप पर लोकेशन शेयर कर दें, तो उनके इलाके में नौतपा नहीं दस्तपा हो जाएगा।
0: अरे नौतपा नहीं, उसको नौ ठंडा बना दीजिए।
1: हाँ, नौ ठंडा कर देंगे, बिल्कुल इतना ठंडा कर देंगे कि वो रजाई जो है कम से कम दो रजाई ओढ़ेंगे तब ठंडक जाएगी।
0: हाँ ये बात तो सही।
1: अब राजस्थान में वैसे भी ठंडक बहुत पड़ती है।
0: हाँ भाई,
1: हाँ
0: जैसे कहते हैं ना, बालू ठंडी जल्दी होती है,
1: बहुत जल्दी ठंडी होती है।
0: तो मरुस्थल है
1: राजस्थान, तो है अपनी ठंडक के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी गर्मी के लिए मशहूर है। नैनीताल, शिमला, ये सब यहाँ ये गर्म जगह हैं, राजस्थान तो बहुत ठंडी जगह है।
0: हाँ ये बात सही है, लेकिन नौतपा के कारण परेशान।
1: नौतपा क्या जाओ, तो कितना देर तपेंगे भाई, एकदम यहाँ यूपी वाले परेशान थे। हमने कहा रुको, आंधी पानी कुल ले आए, हाँ दो चार पेड़ गिर गया, तो
0: ये बात तो सही।
1: हाँ हमने कहा कि जरूरी है भाई, अब कहाँ तक इंसान इसी चलाएगा। बिल भी 10% महंगा होने वाला है, बिजली 10% महंगी हो रही है जून से। अब आप अपने यहाँ का जो एसी निकाल दीजिए। अब आप
0: क्यों महंगी हो रही है?
1: अब महंगी हो रही है, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया 102 रुपए में, ऐसे बिजली महंगी हो रही है। सस्ता क्या हो रहा है, सस्ता खाली हमारी फीस हो रही है 550 से आपने 400 कर दिया।
0: क्या कारण है, मतलब हम नहीं समझ पा रहे बिजली क्यों महंगी हो रही
1: है। बिजली महंगी होगी भाई, क्यों महंगी होगी,
0: क्या रीजन है?
1: रीजन क्या होगा, जितना लोग इस्तेमाल करेंगे डिमांड बढ़ेगी, वो चीज़ उतनी महंगी हो चली जाएगी।
0: अरे तो क्या बिजली तो भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ पानी अच्छे मात्रा में है।
1: हाँ?
0: नदियाँ हैं, तो बिजली का तो उत्पादन होना चाहिए ना।
1: हाँ तो उत्पादन होना चाहिए, लेकिन उत्पादन से ज्यादा खपत भी तो है।
0: वो हम बताएं,
1: हाँ?
0: हमारी जो मतलब कहते हैं ना कि सरकार चाहती है कि हम सब सौर ऊर्जा लगा लें।
1: हाँ, सोलर पैनल
0: इधर कम बिक रहा था,
1: हाँ
0: तो वो ज्यादा बिकना शुरू हो जाए इसीलिए।
1: अच्छा, ये इसीलिए इंडक्शन बहुत बिका, इस बीच कुछ चीजें बहुत बिकी हैं, साइकिल बहुत बिकी।
0: इधर देखिएगा सोलर पैनल बहुत बिकेगा।
1: हाँ नहीं, इधर साइकिल बहुत बिकी पिछले 7 दिन में, छावड़ा वाले ने 500 साइकिल बेची है। हाँ, पेट्रोल जैसे 102 रुपए हुआ,
0: तो क्या बुरा है, अच्छा है।
1: अच्छा, हाँ तो बहुत अच्छा है,
0: अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे।
1: अच्छे दिन एकदम आ गए हैं कि आ रहे हैं,
0: मतलब अब इंसान वापस बैक टू, मतलब हम पुराने उस दौर में पहुंच जाएंगे।
1: हाँ, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति साइकिल चलेगा, आराम से चलेगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, बिजली की जगह लोग जो है वो बेना चलाएंगे। हाँ मतलब हम तो कहते हैं एकदम हाथ वाला
0: बढ़िया है, मतलब सही है, ये
1: बहुत सही है कि बहुत सही है।
0: और क्या,
1: सोना चांदी खरीदना ही नहीं है आपको।
0: हाँ, सोना चांदी आप नहीं खरीद सकते। सोलर पैनल वाला अब शुरू हो जाएगा।
1: हाँ, सोलर पैनल हम लोग सोच रहे हैं एडवांस में लगवा लें। बुद्धि हम लोग के पास ज्यादा है, हम ये आप मिलकर लगवा लेते हैं।
0: हर चीज का वैसे सब्स्टिट्यूट दिख रहा है एकदम।
1: हाँ एकदम दिख रहा है,
0: जैसे अभी इधर सोलर पैनल वाला हो जाएगा, अभी इसके पहले वो था आपका क्या कहते हैं, अरे ये पाइप वाला गैस लाइन TGL वाला हो गया,
1: TGPL हो गया,
0: ये बट रहा था, गैस सिलेंडर नहीं लेना है आपको, मतलब क्या है, दुनिया एकदम बदल ही जाएगी लग रहा है।
1: जी बदल जाएगी।
0: तो चलिए देखते हैं, हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए उनसे हम लोग बात मुकम्मल कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। अरे आपकी तबीयत तो वाकई में बड़ी ख़राब सी लग रही है। आपका शुभ नाम? सृष्टि। क्या हुआ आपको, किसी ने मतलब परेशान किया?
2: नहीं मैम, खांसी जुखाम।
0: खांसी जुखाम से परेशान है? तो आप पहली बात तो कम से कम बोलिए, क्योंकि जुखाम में जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा हमारे गले पे प्रेशर पड़ेगा और वो खराश बढ़ती है। क्यों डॉक्टर लव?
1: हाँ नहीं, चिल्ला कर बोलिए जो है वो गला एकदम फट जाए।
0: हाँ बिल्कुल, तो हाँ। उसके बाद फिर नया सिला दिया जाएगा।
1: हाँ फिर सिला दिया जाएगा। हमको गला सिलना आता है तुरंत, आप बुलाइएगा। अगर तो आपका गला बैठा है तो हम खराब कर सकते हैं।
0: समाधान हमारे डॉक्टर लव देंगे।
1: हाँ यही चीज है, सस्ती चीज मत पिया कीजिए, कैंपा सस्ता होता है। आप 2 लीटर वाली स्प्राइट उठाइए और एक सांस पी जाइए, एक मतलब बिना सांस लिए एक बार मुंह में लगाइए, फिर गड़गड़ गड़गड़ अंदर, एकदम आपकी तबीयत जान लीजिए लोहा लाट।
0: तो आज आप स्प्राइट क्या?
1: हाँ, हाँ। स्प्राइट 2 लीटर और एक साथ मुंह में लगाना है और फिर एकदम बिना रुके पीते जाना है।
0: ये बात तो सही है। और अभी मतलब कुछ ही मतलब हफ्ते क्या पिछले ही अभी जब बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, उसी में डॉक्टर लव की तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर लव ने एक नहीं दो, वो जो 2-2 लीटर वाली होती है वो ऐसे पी गए। हम तो कहे सर जी सांस तो ले लीजिए, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं सांस नहीं लेंगे,
1: सांस लेना मना है।
0: लोहा लोहे को काटता है, लेकिन लोहे को लोहे की इंटेंसिटी के बराबर होना चाहिए। तो इसी समय सृष्टि आप जाइए, मैं तो कहती हूँ तुरंत 2 बोतल खरीद के रख लीजिए, कभी पी लीजिए। आप जैसे आपकी आदत नहीं है ना, तो आप तुरंत नहीं पी पाएंगी, 15 मिनट के गैप पे पी लीजिएगा।
2: बोतल लानी चाहिए
0: स्प्राइट की।
2: स्प्राइट?
1: स्प्राइट
2: तो 15 रुपए की भी मिलती है।
0: नहीं 15 वाली में आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी।
1: वही तो, आपके
0: कम से कम ढाई लीटर
1: पीना है
0: और मैक्सिमम 5।
1: इतना पी लीजिए फिर तुरंत बताइए,
0: फिर इसके बाद आपको दूसरा स्टेप बताया जाएगा। इतना करके फिर आप बताइए कि क्या सीन है, आवाज़ निकल रही है या फिर आवाज़ बंद हो गई है? दोनों ही कंडीशन में 2 अलग अलग उपचार होंगे।
2: बंद हो जाएगी फिलहाल।
0: नहीं नहीं, कैसे बंद हो जाएगी?
1: यहाँ बता रहे सांस नहीं लेना है, मुंह लगाना है।
0: देखो सृष्टि, आपने सुना होगा कि अक्सर नाली वगैरह जाम हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तेजाब डाल देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पानी की बाल्टी लेके खूब प्रेशर से पानी डाल देते हैं। फिलहाल हम लोग अपने जो गले है उसको साफ करेंगे प्रेशर से पानी डाल के, तो पानी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि पानी तुम्हारे बॉडी में भी 70% है ऐसा लोग कहते हैं, तो पानी नहीं काम करेगा। हमको 70% अभी स्प्राइट अपने बॉडी में मेंटेन करना पड़ेगा, तब वो प्रेशर से जाते हुए पूरे गले को साफ
1: कर देंगे।
0: जैसे पहली बारिश होती है ना मौसम की, तो वो पूरी जो कहते हैं ना धूल मिट्टी उनको बहा के ले जाती, वैसे ही ये स्प्राइट की 2.5 लीटर की बोतल आपकी पूरे गले को एकदम चकचका कर देगी। तो सृष्टि ट्राई करके आइए और फिर उसके बाद अपने रिजल्ट बताइए। सृष्टि के गले का तो इलाज हो गया
1: जी, एकदम गले का इलाज हो गया। उनकी गली भी बहुत शानदार है और गला भी बहुत शानदार है।
0: तो चलिए दोनों को और शानदार बनाते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक।
1: जी बिल्कुल, म्यूजिकल ब्रेक बहुत जरूरी है। ऐसे क्या सुनाने वाली हैं आप?
0: सर जो तेरा चकराए।
1: अच्छा, क्या आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए।

0: बहाने कोई भी हो लेकिन पहले सवालात जरूरी हैं। चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन है जिनके पास सवाल है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग, योर गुड नेम?
1: कमल नैन बोल रहे हैं मैम।
0: अरे कमल जी, कैसे हैं? शुभ संध्या। आजकल तो आवाज़ें नहीं आपकी सुनाई देती, आपको भी जुकाम हो गया क्या?
1: असल में जब इंसान को कोई प्रॉब्लम होगी तभी वो याद करेगा,
0: अच्छा
1: उसके पहले तो याद नहीं करेगा।
0: ये बात, मतलब आप ये बात मानते हैं कि अब दुनिया थोड़ा सा मतलब ही हो गई है, मतलब प्रॉब्लम में ही याद करेगी।
1: मैम, आज के डेट में हम 100% लोगों को मतलब ही समझता हूँ।
0: हाँ चलिए बताइए, डॉक्टर लव आपके सिर्फ आपके अपने हैं, जब मन कहे तब शनिवार को कॉल करके अपने सवालात के लिए उन्हें याद कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या हाल है, दिल का हाल बताइए कैसा है?
1: दिल्ली का हाल का पता करने के लिए तो सर से बात करना चाहते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: आप जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर
2: जी।
1: सर हमारा क्वेश्चन ये है कि घर वाली की छोड़ दिए सब, मतलब नहीं सर, बाहर वाली जो है सर कॉल नहीं करती है, हफ्ता हफ्ता एक एक दिन, मतलब एक एक महीना फोन नहीं करती, तो इसका मतलब सर क्या बात है, मतलब वो छोड़ रही है कि क्या बात है?
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही होगी।
1: जी
2: हाँ, मतलब बाहर वाली का फोन ना आए तो बहुत अच्छा है, बाहर वाली के चक्कर में आप घर वाली से भी चले जाएंगे।
0: बाहर वाली के चक्कर में घर वाली से पिटाइल बा, ये वाला हो जाएगा आपका।
2: हाँ
1: नहीं सर, तो उसको पता थोड़ी ना है।
2: पता देखिए, खैर खून खांसी खसी बैर प्रीत मदपान, तुलसी दाबे ना दबे जाने सकल जहान। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं, और ये इश्क उनमें से एक है।
0: हाँ सब कहते हैं इश्क और मुश्क नहीं छुपते।
2: हाँ
1: नहीं तो सर इसे मान लीजिए कि हमारा वो जो है बहुत पुराना, हमारा मान लीजिए कि प्यार है, बचपन का प्यार है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं?
2: तो आपने शादी अपने बचपन वाले प्यार से क्यों नहीं की?
1: नहीं सर, घर वाले ने हमारी शादी अलग कर दी, उसकी शादी अलग हो गई, अब एक दूसरे से तो बिछड़ गए।
2: अच्छा मतलब वो विवाहिता है? मतलब आप भी विवाहित?
0: वाह वाह, तब तो आपकी मतलब ये जो कहते हैं केमिस्ट्री लंबी, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ चल सकती है।
2: ये तो बहुत बढ़िया है कि मतलब वो शादी कर चुकी हैं, बताइए उसके बाद भी आपको कभी कभी फोन कर लेती हैं, तो ये जान लीजिए कि बहुत बड़ी बात है।
0: क्या बात है?
2: हाँ हमारी तो 30 में से किसी
0: बड़ी
2: की
0: बात है। हम तो कहेंगे कि आप बड़े मतलब किस्मत वाले हैं।
2: हाँ किस्मत वाले हैं।
0: क्या बात है
2: कि वहाँ पर जाने के बाद भी उसने आपको याद रखा है।
1: सर 1999 से हमारा मोहब्बत चालू हुआ था सर।
2: 1999 से, यानी तब आप लगभग 25-30 साल के थे।
1: उनको देखा नहीं है।
2: अच्छा 12 साल।
0: कितने साल से आपने नहीं देखा है?
1: जी 12 साल हो गया।
0: ओ माय गॉड।
2: हाँ तो मतलब
0: बोलेंगे सच्ची वाली मोहब्बत, क्या कहने।
2: देखा नहीं है लेकिन मोहब्बत चल रही है।
0: बिल्कुल यही होना ही चाहिए।
2: मतलब व्हाट्सएप कॉल होती है कि नहीं, कि ऑडियो कॉल ही होती है?
1: सर क्या कॉल से बातें हो जाती थी, अभी मतलब हो गया होगा 15-20 दिन तक वो कॉल नहीं किया था, मैं बीच में कॉल किया था, हमने पूछा क्या दिक्कत, उन्होंने बताया कि घर पे शादी थी इसकी वजह से कॉल नहीं कर पाए थे।
2: हाँ तो भाई देखिए, महंगाई बढ़ गई है, सोचता रिचार्ज महंगा हो गया हो, मतलब यूपी में ही है कि
1: रिचार्ज तो सर मैं ही कराता हूँ ना।
2: अच्छा रिचार्ज आप कराते हैं?
1: जी बैलेंस नहीं रहेगा तो फोन आएगा, मतलब किसी और के मोबाइल से आएगा कि बैलेंस खत्म हो गया, डला दीजिएगा। अरे हमेशा नहीं कहेंगे सर, कभी कभी।
2: भैया जरा अपने नंबर हमको दे दीजिए, हमारे पास 30 हैं, हम परेशान हो जाते हैं, उनमें से 2-3 का भी आप करा दिया कीजिए।
0: हाँ कमल जी, कभी कभार हाँ।
1: हम सबका थोड़ी ना करा पाएंगे।
2: नहीं सबका नहीं करा पाएंगे, जैसे हम आपके अपने हैं, हमारी 30 है तो हमारा 10, आप समझिए।
1: नहीं सर उसका नहीं कराएंगे ना तो हमारी इंसल्टिंग हो जाएगी, क्या बताओ, एक अभी तक हमने इनसे कभी कोई चीज मांगा नहीं, एक रिचार्ज नहीं करा पाते हैं।
2: अब सोचिए यही चीज हम भी तो सोचेंगे कि आज तक हमने कमल ने जिसे कुछ मांगा नहीं और आज पहली बार मांगा और नहीं दे पाए।
1: आप कहिए तो आप मैम डलवा सकते हैं सर।
2: अच्छा हमारी पत्नी में आप नहीं जो है रिचार्ज करवाएंगे? तब नहीं हो पाएगा, हमने 30 पत्नियों में आगे जीरो हटा दिया।
0: आप डॉक्टर लव से जानना क्या चाहते हैं कि वो मतलब आपसे डिस्टेंस वाला रिलेशन निभा रही है कि नहीं निभा रही है?
1: यही जानकारी करना था कि मतलब इसमें दिक्कत आ रही है तो काहे को दिक्कत आ रही है।
2: अच्छा ये व्हाट्सएप कॉल होती है कि नहीं होती है, मतलब व्हाट्सएप कॉल?
1: सर मतलब ऑडियो कॉल होता है, लेकिन वो भी मतलब जो पहले तो डेली होता था, मतलब दिन भर में एक नया कॉल आ जाता था, लेकिन अभी क्या आज 10-12 दिन से ऐसा कि मतलब कॉल एकदम से नहीं आ रहा है।
2: देखिए भाई साहब, आपके पास नीला पीला हरा काला जो भी ड्रम हो उसे अपने घर से तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए। अरे मान लीजिए कि कहीं घर वाली को पता चल गया।
1: नहीं, घर वाले को ये चीज पता है उनको कि उनसे बातें करते हैं, मतलब ये और उनको सब पता है कि मतलब खाली इनसे बातें करते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है।
2: अच्छा, मतलब धन्य है आपकी पत्नी।
0: क्या बैलेंस बना क्या के रखा है आपने?
2: मतलब उधर
0: कमल जी आने वाले समय में लव गुरु पार्ट टू आप बनने वाले
2: हैं। नहीं, आप एकदम कृष्ण का नहीं आए। मतलब
1: जब मेरी उम्र थी सर, तो ये क्या ना कि कुछ बच्चे आकर के हमसे पूछते थे कि मतलब वो उसको ऐसा करना था, कैसे क्या करें, तो लेटर जो होता था हमसे लिखवाते थे, उनको तरीका हम बताते थे, पास हो जाते थे, आते थे बोलते थे यार बहुत अच्छा तुमने जवाब बताया था।
2: नहीं, पत्र हमने भी बहुत लिखे, और जिसके पत्र हमने लिखे उसके साथ दो चीज हुई, या तो उसकी शादी हो गई या पिटाई हो गई। हालांकि बात एक ही है,
0: इन्होंने सबकी सगाई करवा दी, इन्होंने सबकी जिंदगी मतलब क्या कहते हैं ना, झिंगा लाला करा दी। क्या बात है, क्या बात है कमल जी। आप तो आने वाले समय में देखिए, अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या है और डॉक्टर लव ना मिले, तो कमल जैन जी से चैट रूम में तुरंत तत्काल संपर्क
2: करें। कमल नैन जी दो को एक साथ संभाले हुए हैं
0: और बैलेंस के साथ बताते हुए। हाँ, क्या मतलब आपकी पर्सनालिटी। ओ माय गॉड,
1: हमने उनको जो क्लियर था ना, हमने उनको बता दिया उनके साथ गद्दारी थोड़ी ना करना है, हमने उनको बता दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने भला बता तो दिया, लेकिन कुल मिलाकर आप हमारी नजर के सामने कोई बात नहीं करेंगे ना उनसे मतलब कोई मतलब रहेगा, हमारे पीठ पीछे आप जो मर्जी करें लेकिन मेरे सामने नहीं। तुमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है।
2: अरे वाह, क्या पत्नी मिली भाई आपको। ये जान लीजिए आपके पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य था जो आपको ऐसी पत्नी मिली।
0: अच्छा कमल जी, आपके पास तजुर्बा बहुत ज्यादा है
1: सर, जब ये पुण्य था तो वो दूसरा वाला क्या है?
2: वो महापुण्य है।
0: देखिए, इंसान के साथ जन्म होते हैं तो क्या पता है किसी दूसरे वाले जन्म का ये भी पुण्य होगा। तो कमल जी, एक सवाल था आपसे, जैसे आप बड़े तजुर्बेवान हैं और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सक्सेसफुल रहा है प्यार की गली में भी और शादी की भी राह पे, तो सवाल ये है कि हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम है किशोर। किशोर का सवाल ये है कि मतलब उनकी मतलब इच्छा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लें, ठीक है। समस्या ये है कि उनकी गर्लफ्रेंड भी शादी करना चाहती है लेकिन किसी और लड़के से,
1: तो फिर कैसा, ये तो एक तरफा हो गया फिर।
0: नहीं तो मतलब प्यार इनसे करती है लेकिन शादी किसी और से करना चाहती है, तो क्या करें? या तो आपकी तरह डिस्टेंस वाला अपना लव रिलेशन बनाए।
1: हाँ, इसमें खाली एक ही चारा है, बंदूक उठाए और मंडप पे पहुंच जाए डोली सजने से पहले, दो दिन फायरिंग कर देंगे तुरंत साथ में चल
2: देंगे। सन्नी देओल वाला डायलॉग बोल दें, अगर इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा लाशें, और सबसे पहली लाश उसकी होगी जिसके सर पर सेहरा बना होगा। हाँ, ऐ सन्नी देओल का डायलॉग,
0: क्या बात है।
1: हाँ, यही चारा दिख रहा है। अगर मैं दोनों तरफ से होता तब तो ठीक है, अच्छी बात है, घर वाले नहीं मानते तो उसका तरीका अलग था।
0: हाँ, बात तो सही है।
2: अब लड़की नहीं मान रही है तो बस
1: शादी करना चाहती तो इसका मतलब वो बेकार है।
2: हाँ, लाशें बिछा दूंगा, वही है।
1: अब या तो फिर वो एक बंदूक उठाए और बता दे वहाँ पर पहुँच करके कि नहीं, हाथों ने हथियार छोड़ा, चलाना नहीं भूला,
2: चलाना नहीं भूले। हाँ।
0: वाह वाह वाह, मतलब मुझे ऐसा ही सटीक उत्तर चाहिए था जो आपने दिया।
1: चलाए ना, खाली लेकर के पहुँच जाए बस।
2: हाँ यार, धड़कन फिल्म का वो डायलॉग बोल दे कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता,
1: इनकी बर्बादी हो जाएगी, तुरंत उठा कर जेल में चले जाएंगे, रहेंगे ना, कोई टेंशन ना देखेंगे ना, कोई टेंशन नहीं।
0: वाह क्या बात है। तो तत्काल से किशोर जी, अगर आप सुन रहे हैं तो इस जो कहते हैं समस्या का समाधान आपको मिल गया है, और समाधान लेके जल्द से जल्द जहां पहुंचना है आप पहुंच जाइए।
2: हाँ, असलाह उठाइए और पहुंच के फायर कर दीजिए।
1: ये तो किसी और के, आपने हमारा तो बताया नहीं अभी तक।
2: हाँ, हम जहाँ तक हमारा अनुमान कह रहा है, वो अनुमान ये कह रहा है कि पुरानी वाली को भूल जाने में आपको ज्यादा ही भला है।
1: अरे सर, हम दोनों ने कसम खाई कि जब तक जिंदा रहेंगे बुढ़ापे तक,
2: हाँ,
1: साथ नहीं छोड़ेंगे।
2: ठीक है, तो ये कसम आप पूरी कर रहे हैं, वो नहीं पूरी कर रही है तो गलती उनकी है।
0: ये उन्होंने ऐसा कहा कब?
1: अभी तो गलती नहीं मानी जा सकती ना, हो सकता कि वो बीमार हो, कॉल करने में असमर्थ हो, ना कर पाया, कोई मतलब उसके आगे पीछे हो,
2: तो आप जो है उनके नंबर पर कॉल करके देखिएगा क्या कॉल उठ रहा है उनका या नहीं उठ रहा है।
1: कॉल उधर से ही आएगा, मैं कॉल कभी नहीं करता हूँ।
2: ओहो, मतलब हो सकता है पतिदेव हो। हाँ, बड़ी सावधानी बरतते हैं।
0: क्या संयम है, क्या बेकरारी है, हाँ। क्या इंतजार है, और उस इंतजार में भी पेशेंस है। वाह,
2: अच्छा, अब खाली आप
0: आपके ऊपर तो किताब लिखनी पड़ेगी।
2: मतलब आप हमको खाली
1: खाली यही परेशान है कि हो सकता है वो किसी बंधन में बना हो, इसी वजह से कॉल ना कर पा रहा हो, तो इसके लिए अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। जब एक बार बातें हो जाएंगी तो बता देंगे क्या क्या दिक्कत।
0: तो बिल्कुल, तब तक के लिए आप नौतपा एंजॉय करिए और सीधे नौतपा।
2: हमको जिले का नाम बताइए कि उनकी शादी किस जिले में हुई है।
1: वो कहाँ पे है?
2: हाँ हाँ, जिला
1: वो सर बस्ती साइड में, बल्ला वो क्या बोलते हैं, ये जो बस्ती और ये बहुनान के बीच में है।
0: अच्छा अच्छा,
2: नहीं तो अगर आप जिला बता देंगे तो हम प्रॉब्लम दूर कर देंगे आपकी।
0: चलिए कोई बात नहीं, अगर वो रेडियो सुनती हैं तो
2: बभनान।
0: ओह क्या बात है,
2: चलिए बभनान यानी जहाँ पर कोई बभ ना हो। हाँ,
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, और मैं तो कहूँगी इंतज़ार करिए, और आपकी प्रेमिका के लिए हम एक गाना बजा रहे हैं, अगर वो सुन लेंगी तो मुझे लगता है कि बैक टू ट्रैक आ जाएंगी।
1: नहीं सर, क्या ना हमको, हमने उनको एप्लीकेशन लोड कराया था लेकिन वो थोड़ा सा मतलब डिलीट हो गया था, फिर दोबारा नहीं वो कर पाए हैं।
0: नहीं तो एप्लीकेशन लोड करा दीजिएगा, क्योंकि ये गाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना।
1: तो सुनते थे पहले, लेकिन क्या है ना उनका डिलीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी आपने जो बात की है इसको रिकॉर्ड करके उनको बोलेंगे, आप सुनिए आपके बारे में हमने क्या क्या बात की।
0: और उनके लिए गाना भी प्ले कर रहे हैं, उसको जरूर उन्हें सुनाइएगा, स्पेशल उनके लिए। थैंक यू सो मच कमल जी। डॉक्टर लव, अब तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस है। तो चलिए हम सुनते हैं सीधे तौर पर एक सोल्यूशन वाला गाना, जिसको सुनने के बाद शायद उनका प्यार जो है वो उनके पास
2: वापस आ जाए।
0: शायद नहीं, बेशक
2: बेशक।

0: तो किसी की उलझन दूर हो गई और किसी को बचपन का प्यार याद दिला दिया, लेकिन अभी भी कुछ तो है जो अधूरा है। यानी कि हमारे कुछ सीक्रेट लिसनर्स हैं जिनके सवालात बाकी हैं और अभी कॉल्स भी बाकी हैं। तो डॉक्टर लव, ऐसे लोग रेयर ही होते हैं कमल जी की तरह।
1: हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर,
0: जो अपनी समस्या के साथ साथ दूसरे की समस्या का भी समाधान साथ लेके आए हूँ।
1: साथ लेकर आए हैं
0: वो इनडायरेक्टली अपनी समस्या का समाधान भी लेके ही आए थे।
1: हाँ, मतलब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में।
0: ये बात तो सही है। तो एक कॉलर है हमारे, कभी कभी कॉल करते हैं, मुंबई से सुनते हैं हमें, और उन्हें उनका सवाल ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके, मतलब वो एक ऑफिस में कॉर्पोरेट में काम करते हैं और उनके जस्ट बगल वाले टेबल पे एक इनकी को कलीग है जिसके साथ मतलब ये प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करते हैं। अक्सर कॉफ़ी वगैरह वो बनाती है तो 2 कप लेके साथ में आती है उनके लिए, और लंच भी कभी कभी एक्स्ट्रा ही लेके आती है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे हिंट दे रही है कि वो मुझे प्यार करती है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये प्यार है या फिर मुझे भ्रम हो गया है। मतलब वो चाहते, मतलब देखिए मुंबई जैसे शहर में पिटने में टाइम नहीं लगता, तो उनको ये भी डर है कि ऐसा ना हो मेरी नौकरी चली जाए, कंप्लेन कर दे
1: जी।
0: तो दो तरफ से घिरे हुए हैं कि
1: मतलब हाँ भी हो सकता है,
0: कहूँ कि ना कहूँ, और मतलब एक दो जगह इनकी, मतलब जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे भी इनकी सेटिंग हो सकती है, पर ये ऑफिस वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मतलब दो तरह की इनके दिमाग में वो है। इन्होंने पूरा अपना सिचुएशन बताया कि मैं ऑफिस वाले को इसलिए प्रेफर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सामने पूरे टाइम रहती है, तो कोई मतलब झोल आगे नहीं होगा कि मुझे धोखा देगी या ऐसा कुछ।
1: तो मतलब मुझको लगता है कि जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है,
0: एक्सपीरियंस
1: बोलता है, तो मैं एक बार जो है वो वैशाली से यात्रा कर रहा था।
0: वैशाली से?
1: अच्छा। हाँ, मतलब ट्रेन से। तो उसका एक रूल है कि आपको सुबह एक प्याली चाय मिलती है।
0: अच्छा, बस
1: दोबारा नहीं मिलती है।
0: मतलब खाना मिलता है
1: फिर? हाँ, मतलब खाना मिलेगा फिर आपको, मतलब सुबह आपको एक चाय मिलती है।
0: लंच वंच
1: भी मिलता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन चाय एक प्याली ही मिलती है, रूल है। तो सुबह हमको थोड़ा सा चाय थोड़ी सी ज़्यादा पीने की आदत है, मतलब 1.5 कप, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और जब वो चाय लेकर के आया तो फिर उसने कहा कि मेरा मन भरा नहीं, तुम्हारे सामने भी एक सज्जन बैठे हुए थे, हमने कहा कि क्या चाय मिली तो, लेकिन थोड़ी सी कम लगी हमको, थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी थी, जाड़े का महीना भी था। तो उन्होंने कहा कि चाय एक ही बार मिलती है, दोबारा मिल नहीं सकती। ने कहा अच्छा, लो ट्राई करते हैं। तो दोबारा जब वो आया तुमने कहा भैया एक जरा सुनिए, तो उसने कहा हाँ बताइए। मैंने कहा देखिए सर में थोड़ा सा दर्द है और क्या एक प्याली चाय मिल सकती है? तो उसने कहा जी अभी लाया। तो वो चाय लेकर के चला आया। तो जब वो चाय लेकर के चला आया तो जो मेरे सामने बैठे थे उनका मुंह बन गया। तो अच्छा, हमारे कॉलेज लाइफ में आपको एक रियल इवेंट सुनाता हूँ बिना जी। सुनाऊँ? हम लोग की कॉलेज की लाइफ थी, तो एक लड़की इंटर पास होकर के कहीं बाहर से आई। ठीक। तो जब वो बाहर से आई तो फिर ये हुआ कि बहुत दिखने में बड़ी खूबसूरत और एकदम ऐश्वर्या राय लगती थी। बाल भी जो है वो पीछे कटे हुए, कौन से स्टाइल कहा जाता है जिसको आप रिबन लगा कर ऐसे पीछे कर लेते हैं, यहाँ तक बाल होता है,
0: साधना कट?
1: नहीं भाई, वैसे बाल ऐसे पूरा बाल पीछे की ओर गया, खाली यहाँ तक बाल है, गर्दन तक
0: कुछ होगा।
1: हाँ, तो वो मतलब आंखें भी भूरी भूरी। तो हम लोग को लगा कि यार अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया बोलती थी, आप जानती हैं CBSE बोर्ड वाले, हम लोग ठहरे UP बोर्ड वाले। तो किसी की हिम्मत हुई नहीं कि उस लड़की के पास जाए। तो हमारे ग्रुप का जो सबसे जो है पढ़ने में कमज़ोर, दिखने में भी बहुत खूबसूरत नहीं, एवरेज से भी कम, हमने कुछ दिन के पश्चात जो है वो उस लड़की को उसके साथ घूमते हुए देखा। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने कहा ये तो कैसे हो सकता है भाई, क्या हम इससे भी गए गुजरे हैं? तो हम उस लड़की के पास गए, हमने उससे कहा कि यार ये बताओ तुमको यही मिला? तो कहें देखो हम बाहर से आए थे और कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा था, यही पहला आया जिसने मुझसे बात की, तो मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। जिंदगी ने एक सबक सिखाया कि सिचुएशन कुछ भी हो पूछ के देख लो। तो अगर आप पूछ के देख लेंगे तो हो सकता है आपका फायदा हो जाए। तो चूंकि उस लड़की से हम नहीं पूछ पाए थे, इसलिए हमने चाय वाले से पूछा कि क्या एक कप चाय और मिल सकती है। पूछ लेने में कोई दिक्कत थोड़े है, मैं ये कहता हूँ पूछ के देख लो,
0: पूछ के देख लो।
1: हाँ, पूछ के देख लो।
0: सो जनाब, आप पूछ के देख लीजिए। देखिए, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन अगर रिस्क का सोचते तो दुनिया आज इतनी आगे ना
1: बढ़ती। और मतलब एकदम किसी भी सिचुएशन में हम तो इस बात पर 100% मेरा विश्वास है कि पूछ के देख लीजिए। हो सकता है भाई, LIC का एजेंट निकलता है तो क्या करता है, एक भी बीमा उसके पास नहीं होता, वो 10 लोगों के पास जाता है, पूछता है। और फिर देखिए, बहुत सारे गुंडा में ऐसे लोग हैं जो LIC के दम पर आज बहुत अच्छे अच्छे मकाम पर हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा, पूछ के देखा होगा। अक्सर हम डर जाते हैं और हमारे अंदर नकारात्मकता पहले आ जाती है कि यार ये कहाँ मना करेगा हमको। तो इसलिए हम तो यही सलाह देंगे भाई साहब कि आप एक बार पूछ के देख लीजिए कि वो जो है वो राज कपूर वाली स्टाइल से पूछिए। जानते हैं राज कपूर वाली स्टाइल?
0: हाँ हाँ, पता है, सब जानते हैं।
1: क्या है?
0: तो चलिए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना, और उसी के बाद हम फिर जानेंगे कि राज कपूर वाला स्टाइल कैसे डॉक्टर लव ने अप्लाई किया और 30 पत्नियां बना ली। गुड इवनिंग नव्या, थैंक यू सो मच फॉर 2 कप चाय। और चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना 1990s से, जो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है।

0: Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.
1: So Dr. Love, आपने कहा चांद सिफारिश, क्या कभी चांद किसी की सिफारिश कर सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है।
1: नहीं तो
2: क्यों नहीं कर सकता?
1: मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि चांद भी किसी की सिफारिश करता हो। हाँ, चांद उल्टा किसी के प्यार को लूट के जरूर ले जाता है।
2: नहीं, मुझे लगता है चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी आगे भी तो ध्यान दीजिए,
1: देता वो तुमको बता।
2: हाँ, मतलब अगर हम चांद से पूछते कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कौन है तो वो ये कहता कि तुम हो।
1: अच्छा, लेकिन की हाँ, नहीं ना
2: वही तो चांदनी से
1: चांद के बाज है। अरे, हमारे इम्तियाज जी का सवाल है कि डॉक्टर लव सर जी, शादी में मार बरातियों को पड़ती है तो दुल्हन विदा होने पर क्यों रोती है?
2: शादी में जो मार है वो बरातियों को पड़ती है।
1: ये बराती अक्सर पिट कहे जाते हैं।
2: नहीं, असलियत में हम आपको बताएं जो हमारा अनुभव है कि जैसे लोग बरात में पहुंचे तो उस समय वो जो है हमको लगता है अपने आप में विधायक या सांसद से कम औकात नहीं रखते हैं। होता नहीं, अरे बराती आए ना
1: मतलब तो बराती रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं रात भर।
2: अच्छा, उसके पश्चात आप जो है जब आप यहाँ से जाइए तो बस वगैरह जाएगी, लोग मिलेंगे, ये है फूफा जी, नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम, ये सब होता है। अब फिर आधे घंटे के बाद ये मेरे फूफा जी हैं, हाँ भाई जय राम, फूफा जी क्या हाल। तो मतलब ये होता है कि अच्छा उन लोग को पता नहीं अड्डे का पता कैसे चल जाता है कि मतलब कहाँ है।
1: अरे वो लेके गाड़ियों में जाते होंगे।
2: हाँ, लेके जाते होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि जो बराती लोग हैं वो जब थोड़ा सा अंदर अंग्रेजी जाती है तो फिर बाहर निकलती है।
1: बात
2: तो बाहर निकलती है तो ऐसी स्थिति में उनका क्रियाकर्म।
1: तो सवाल ये है कि दुल्हन क्यों रोती है विदाई?
2: दुल्हन इसलिए रोती है विदाई में, देखिए जब पिताजी कहते हैं, मगर दुल्हन के पापा अपने दामाद से कहते हैं बेटा ख्याल रखना, तो उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी बिटिया तो लक्ष्मी बाई है ही, संभाल ही ले जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। तो दुल्हन रोती इसलिए है क्योंकि उसी दिन से वो बेगम हो जाती है इम्तियाज भाई। तो बेगम मतलब बिना गम के, सारे गम वो शादी के दिन उसके आंसू निकल, दिल के अरमा नरधा में बह गए, तो वो बह जाते हैं। और उस दिन पत्नी के रोने का और पति के हंसने का आखिरी दिन होता है।
1: वाह वाह।
2: हाँ, विदाई मतलब अगर हो रही है और लड़की रो रही है, लड़का हंस रहा है, तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि वो लड़की के रोने का अंतिम दिन है और लड़के के हंसने का अंतिम दिन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नर्क क्या होता है तो विवाह कर लीजिए। हाँ, मतलब आपको जिंदगी समझ में आ जाएगी।
1: वाह वाह, हाँ। क्या बात है। और इम्तियाज जी कह रहे हैं कि तूफान में पत्नियां क्यों नहीं उड़ती हैं, सब कुछ उड़ जाता है क्योंकि हाँ, पति भी नहीं उड़ते
2: हैं। हाँ, क्योंकि पत्नियां जो होती हैं वो बहुत समझदार होती हैं। हमारे बगल में एक पत्नी है, वो अपने आप को चारपाई में जब लेटती हैं तो रस्सी से चारों ओर से बांध लेती हैं। हाँ, तो तूफान में भाई पति लोग अपना बाहर सो गए।
1: पत्नियां अच्छा खासा जेवर पहन के सोती हैं, जेवरों का वजन रहता है इसलिए वो उड़ नहीं पाती।
2: हाँ, जेवरों का वजन रहता है। हाँ, ये तो बात सही है। और कम से कम 2.5-3 किलो का तो पायल पहनी रहती होंगी।
1: कमल जी लिख रहे हैं दुल्हन सामाजिक है, इसका मतलब वह सोच रही है कि हमारे घर वाले रिश्तेदार नातेदार आए थे, मार गए हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं तो लोग मुझे ताने मारेंगे।
2: ये क्या नजरिया निकला?
1: प्रैक्टिकल, मतलब कितनी प्रैक्टिकल बात सोचते हैं। मतलब क्या बात है कमल जी, आप आज 2 नहीं 3 नहीं 4 बार हमें गर्व महसूस करवा रहे हैं कि हमारे कितने इंटेलिजेंट होता है।
2: कितने इंटेलिजेंट होता है, मतलब वो समझती है कहीं बराती मार खा के गए तो उसका बदला हमसे न लिया जाए।
1: ये बात तो सही है। चलिए चलिए, बहुत सही बात बताई। और चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।
2: हाँ, नगमा जी बिल्कुल सुन लेते हैं।
1: और
2: क्या
1: गाने को सुनने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा।
2: अच्छा, मतलब ऐसा क्या खास सुनाने वाली है?
1: अरे सुनाएंगे।
2: अच्छा, मतलब बताएंगे नहीं
1: ना,
2: ये रहस्य है जो कुछ सेकंड के बाद खुलेगा।
1: बिल्कुल खुलेगा, नहीं सुनेगा।
2: अच्छा हाँ सुनेगा।
1: तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर कोई लड़की प्रेम में पड़ जाए और प्रेम में पड़ने के बाद उसे रिग्रेट हो कि प्रेम में तो नहीं यार पड़ना चाहिए, दिस इज द हैवी मिस्टेक आई हैव डन, देन वो क्या करे, रिग्रेट करे या प्यार को डिसकंटिन्यू करे?
2: नहीं ना रिग्रेट करे ना डिसकंटिन्यू करे, मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई नेमत। मगर शर्त यह है कि दुनिया न जाने, दुनिया वाले जान ना पाए, बाकी सब ठीक है। देखिए अगर आपने हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया तो समझिए कि एक जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू गंवा दिया। दिल टूटने ऐसी चीज लाइफ में एक बार इंसान की होनी चाहिए।
1: तो चलिए सुनते हैं जग्गा जासूस से गलती से मिस्टेक।
2: गलती से मिस्टेक
1: क्योंकि सभी से हो जाती है,
2: हो जाती है
1: और बारातियों से भी गलती से मिस्टेक हो गई
2: हो गई।

0: पंडित जी ने हमको शादी का टाइम नहीं बताया। शादी का टाइम किसको शादी करनी है भाई?
1: हाँ, किसको करनी है तो बताइए आप।
0: सर जी, हमको पंडित जी ने बोला था कि आपकी शादी 4 साल में होगी, बस हमको पंडित जी ने ये नहीं बताया कितने बच्चे होंगे।
1: ये बात तो इम्तियाज जी की बिल्कुल सही है। ये आप एक काम कीजिए कि आप जब पैदा हुए थे जिस साल, जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान,
0: हाँ?
1: और दिन, ये इतना हमको जो है वो इसी आप इसी चैट बॉक्स पर मैसेज कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, समय और शहर। और हम आपको ये भी बता देंगे कि आपका विवाह कब होगा,
0: हाँ, ये
1: बच्चे
0: बात
1: कितने होंगे, उन बच्चों के कितने बच्चे होंगे।
0: हाँ, ये बात जरूरी है, क्योंकि यहाँ आजकल अपनी जनरेशन से ज्यादा आने वाली जनरेशन की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि डीजल पेट्रोल गायब होने वाला है। सब कुछ सोच समझ के प्लान करना पड़ेगा,
1: प्लान करना पड़ेगा। तो हम आपको यहीं पर बैठ बैठ के बता देंगे।
0: हाँ,
1: तो तुरंत इम्तियाज जी आप जो है वो भरिए।
0: हाँ, ये बात तो सही है। और चलते चलते मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे श्रोताओं के कुछ सवालात हैं।
1: जी, सवालात हैं।
0: तो सवालात नहीं, सवाल।
1: अच्छा,
0: तो उनका एक और मतलब उत्तर दे दिए कि एक ही सवाल है। एक हमारे लिसनर हैं, वो थोड़ा खर्चे से परेशान हो गए हैं।
1: खर्चे से मतलब खर्चा कम है कि ज्यादा है?
0: उनकी पत्नी बाजार जाती है,
1: हाँ?
0: लिस्ट बना के ले जाएगी, कह रहे हैं 2000 का सामान लेना,
1: हाँ?
0: लौट के आएगी तो 15000 का बिल बना रहेगा,
1: हाँ?
0: तो जब भी जाती है आती है तब ये चीज हमेशा होती है। तो ये बताइए इस समस्या से कैसे बचें?
1: जब पत्नी कहे 2000 का सामान है तो पति को 2000 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं देना चाहिए।
0: तो साथ में लेके जाती है इनको?
1: साथ में लेके जाती है।
0: कहते मुझे अकेले डर लगता है बाजार।
1: अकेले डर लगता है तो फिर उनसे कह दिया कि तुम पर्चा हम कर दो, सामान हम ले आएंगे।
0: नहीं तो कहते आप गलत ले आओगे।
1: नहीं, कहते हम गलत बिल्कुल नहीं लाएंगे, जब हमने शादी नहीं गलत की।
0: अच्छा, ये हाँ, बात अगर कहेंगे तो मान जाएगी?
1: भले भाई को तो बताओ, अगर हम गलत होते तो तुमसे शादी करते?
0: हसीना मान जाएगी?
1: बिल्कुल हसीना मान जाएगी।
0: तो चलिए, इसी के साथ मुझे और डॉक्टर लव को दीजिए इजाजत, और अगली बार के लिए थोड़ा सा और तैयार होके, प्रिपेयर होके आप लोग आइएगा अपने सवालों के साथ। और मैं तो कहती हूँ कि क्योंकि देखिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी बातों

0: करते हैं। वो एक बात बोलते थे कि बच्चे दो ही अच्छे,
1: लेकिन आ जाएगी
0: नहीं। तो एक बार हम उनके घर चले गए तो उनके 5 बच्चे थे। तो हमने अपने मित्र से कहा, हमने कहा यार तुम तो कहते थे बच्चे दो ही अच्छे, तो 5 क्यों? कहीं हम सही कहते थे, बच्चे ये जो 5 हैं इनमें से 2 ही अच्छे हैं, बाकी सब नालायक है। तो हाँ मतलब हाँ,
1: तो आप 5-6 नहीं 10-15 रखिए जिसमें 2 अच्छे हों।
0: हाँ 2 अच्छे हों।
1: तो इसी के साथ आरजे बीना और डॉक्टर लव को दीजिए इजाजत, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश ये वीडियो और जो सिंपल हो इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून एंजॉय करते हैं ये वाला गाना इसके बाद में एंजॉय करेंगे एक और आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल का फरमाइशी गीत फिर चलेंगे आपके फरमाइशी गीतों की तरफ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा

पानी दा रंग वेख के। मैंने भी पानी के बहुत रंग देखे हैं। लोग कहते हैं पानी का रंग नहीं होता ना, लेकिन सिर्फ कहते हैं, सबने देखे हैं पानी।

आदाब एंड सशकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में, आई मीन सैटरडे नाइट स्पेशल वाली शाम में, खास खास बहुत ही खास बहुत ही प्यारी सी बात और बहुत ही प्यारे से बहुत ही खास से जज्बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, आए हाय अपनी फरमाइशी की गठरी को खोलो ना, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोलो ना और उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दो और लगा दो जितने चांद आप लगाना चाहते हो, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका जज्बात आपकी यार जो सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा के लिए आपकी और गीत आपके नाम से तो रहेंगे ही रहेंगे ना। सो दोस्तों, अहमद फराज जी ने क्या खूब कहा है कि हजार गम है खुलासा कौन करे। सही कहा ना मैंने कि हजार गम है खुलासा कौन करे और मुस्कुरा देता हूं अब तमाशा कौन करे। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, कमल नयन नव्या गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, उदालक शर्मा मनकापुर से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, मालवे नगर से, राजेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, शशि सिंह जी गोंडा से और शिवम दुबे लखनऊ से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल। सो कैसा है आज का दिन और क्या आज के सैटरडे नाइट स्पेशल को बहुत बहुत बहुत खास बनाना है, क्योंकि कल तो संडे है, कल मैं नहीं आने वाली हूँ, तो कल के जज्बातों की भी गठरी आज खोल लीजिएगा और चैट बॉक्स में गपशप की झड़ियाँ लगा दीजिएगा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश बिना किसी देरी के, और पहली फरमाइश हमारे पास में शिवम दुबे की, उनको सुनना है गाना यारी तोड़ देनी। सो एंजॉय करते हैं पंजाबी सुपर डुपर डुपर हिट नगमा शिवम दुबे की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी प्यारी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। Stay tuned, everyone.

तो दोस्तों हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा शिवम दुबे की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना किसी देरी के। तो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश के लिए? मैं तो बहुत तैयार हूँ और बहुत ही जोरों शोरों से तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके पहले स्वागत कर लेते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल नव्या आपका। नव्या है माधोपुर गोंडा से और निशा है पटेल नगर गोंडा से। आप दोनों का स्वागत और इस्तकबाल है। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा। वैसे गोल्ड के चैन में कोई बात हो चाहे ना हो, लेकिन ये दिल के चैन में ना, ये जज्बात के चैन में ना, ये मन के चैन में ना, ये दिमाग के चैन में ना, इसमें बहुत सुकून है भाई, बहुत सुकून है। तो एक बार अगर आपको कोई गोल्ड वाला चैन दे तो उसको मत लेना, रिजेक्ट कर देना। लेकिन अगर आपको ये दिल का चैन कोई दे देना तो उसको जरूर रख लेना, और ना भी दे रहा हो तो चुपके से चोरी से छीन के रख लेना, लेकिन रख जरूर लेना। स्टेट ही उन्हें एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में रंग का ये गाना हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टेट ही उन्हें

और कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। अच्छा जी, वैसे प्यार के सिम्टम्स तो कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन के भी सिम्टम्स कुछ ऐसे ही होते हैं और एडिक्शन के भी सिम्टम्स कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा अपने इस प्यार को ये समझने के लिए कि कहीं ये एडिक्शन या फिर अट्रैक्शन तो नहीं। अगर ये एडिक्शन और अट्रैक्शन नहीं है तो डेफिनेटली ये लव ही है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो केके गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से और मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आप दोनों का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके आरजे सिंपल। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। वैसे दोस्तों, अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने के पहले आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल एक चीज और कहना चाहेगी कि मैं जो भी बोलती हूँ वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। मैंने बहुत दुनिया देखी तो नहीं है, मैंने बहुत छोटी सी दुनिया देखी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे लिसनर्स ने मुझसे ज्यादा दुनिया देख रखी है। लेकिन वो दोस्तों क्या है ना कि जितनी भी दुनिया देख रखी है उतने में जितनी भी जिंदगी जी रखी है, उतने में जितना भी तजुर्बा हो रखा है, उतने में जितना भी एक्सपीरियंस कर रखा है, वो सब पता नहीं क्यों साझा करने का मन करता है मेरा। और ये अच्छी बात है ना शायद। तो प्लीज अगर आपके ओपिनियंस अलग हैं तो दिल पे मत लेना। मेरे ओपिनियन अलग हैं, आपके ओपिनियन अलग हैं, हर एक इंसान के ओपिनियन अलग होते हैं। इनफैक्ट अगर एक घर में दो इंसान रहते हैं या फिर 10 इंसान रहते हैं तो वो जो दो इंसान रहते हैं उन दोनों के भी ओपिनियंस अलग ही होते हैं, या फिर वो जो 10 इंसान रहते हैं उन दसों के भी ओपिनियंस अलग ही होते हैं। तो अपना अपना परसेप्शन होता है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपना अपना विचार होता है, अपना अपना दुनिया देखने का नजरिया होता है। फिलहाल तो मेरा जैसा है मैं वैसा आप लोग को दिखा ही देती हूँ। और दुनिया तो ऐसी है ही है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी, लेकिन घड़ी निर्मम, पहले इस्तेमाल करके भले विश्वास करें बाद में चाहे ना करें, लेकिन दुनिया है, पहले उसको इस्तेमाल करिएगा तभी विश्वास करिएगा। पहले विश्वास करके फिर इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, मीन्स जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से। जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है दो रास्ते का गाना, बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी। तो बिंदिया ऑब्वियसली चमकेगी और चूड़ी ऑब्वियसली खनकेगी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नगमा। और दोस्तों आप लोगों ने सच में मेरा कहा माना, मैं मान सकती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। कल मैंने कहा था ना कि तगड़ी प्लेलिस्ट तैयार करना, आप लोगों ने एकदम चकाचक प्लेलिस्ट तैयार की है। आए हाय।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर। लव यू जग्गू दादा, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमने एंजॉय किया है, शायद बहुत दिनों बाद फरमाइशी प्रोग्राम में। दो रास्ते मूवी का था ये नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम वेलकम इन योर शो मुमताज अंसारी जी गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ आपका भी स्वागत है। और नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि अलविदा कहने के बाद भी यदि दिल उसके लौटने की प्रतीक्षा में है तो वहाँ प्रेम है। गुड इवनिंग आरजे सिंपल मैम, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग नागेश्वर धाकड़। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उद्दालक शर्मा की, और उद्दालक शर्मा को सुनना है गाना ओह माय गॉड। आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में आए हाय। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जब से ये फरमाइशी प्रोग्राम कर रही हूँ तब से पहली बार इस गाने की डिमांड की गई है। ओह माय गॉड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच दालक शर्मा फ्रॉम मनकापुर, स्टे ट्यून्ड।

से छलका आंसू और जा टपका शराब में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। किसकी फरमाइश पर? उदालक शर्मा की फरमाइश पर। और उनका कहना है कि मैडम जी ये वाला फरमाइशी गीत था सैटरडे नाइट स्पेशल वाली प्लेलिस्ट से, सो थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी के हथियागढ़ गोंडा से, और दीपक जी को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना माहिया तेरी कसम, हाय जीना नहीं जीना तेरे बिना। आहा, इतना प्यार है अपनी माहिया से कि कसम खा के कह रहे हैं कि जीना नहीं जीना तेरे बिना। यहाँ तो मैंने बहुतों को देखा है दोस्तों कि कसमें भी अपनी माहिया की जूठी जूठी खा लेते हैं, मतलब बताओ शर्म भी नहीं आती है ना। लेकिन नहीं, इतना इतना नहीं करना चाहिए। अब देखिए अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची कसमें खानी चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं नागेश्वर धाकड़ जी। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं दीपक जी की फरमाइश पर ये वाला गाना जो कि है हथियागढ़ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। संतोष कुमार फ्रॉम गिलौली।

जॉय के है ये वाला गाना दीपक जी की फरमाइश पर, जो की है हथिया गड़गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को सुनना है सैटरडे नाइट स्पेशल प्लेलिस्ट से बजरंग बली जी वाला गाना। तो पवन सुत हनुमान का ये डिवोशनल सॉन्ग एंजॉय करते हैं हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, जो कि है गौरा चौकी से।

दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये डिवोशनल सॉन्ग सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर जो कि है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने के लिए? सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना इससे पहले कि याद तू। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये वाला नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। हमने एंजॉय किया है नजराना का ये गाना किशोर कुमार जी की आवाज में मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है नव्या की माधोपुर गोंडा से। नव्या को माधोपुर गोंडा से सुनना है गाना, मुझे प्यार से देखने वाला, मुझे अपना समझने वाला एक दिल है, मेरा दिल है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में। एंड दोस्तों, हमारी नव्या ने इस गाने को डेडिकेट किया है आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल को। स्टे ट्यून्ड एंड लव यू सो मच नव्या।

0: तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, मेरा दिल है, प्यारा दिल है, यहाँ दिल है, बस दिल है। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, किसकी फरमाइश पर? नव्या की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे बढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, इट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा, आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके आज सिंपल, और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले नागेश्वर धाकड़ का कुछ कहना है, इन्होंने अर्ज किया है हम लोगों की जज्बात नहीं मिलते। नागेश्वर धाकड़ जी, इन्होंने अर्ज किया है कि एक फूल के सूख जाने से बाग उजड़ा नहीं करता, एक तारा टूट जाने से आसमान खाली हुआ नहीं करता। कैसे सोच लिया एक शख्स के जाने से दुनिया वाले बेवफा हैं, हर माँ का बेटा बेवफा नहीं होता। सो अगर मैं आपकी इस लाइन में कुछ जवाबदारी करना चाहूँ तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि पास रहकर भी यहाँ लोग दगा करते पास रहकर भी यहाँ लोग दगा करते हैं, छोड़ जाने वाले ही सिर्फ बेवफा नहीं होते। बात रुकने या चलने जाने की नहीं है दोस्त, बात रुकने या चले जाने की नहीं है दोस्त, जिंदगी में मिले जख्म कभी बयां नहीं होते। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजन सिंह की, और उनको सुनना है गाना पागल शायर। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, स्टे ट्यून्ड।
1: तू ख्वाब ना देखे कर, ख्वाबों में चाहूंगा

और मैं पागल शायर हाँ तेनु इश्क ते ला दूंगा। हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ राजन सिंह की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे लिसनर का कहना है कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। अच्छा जी हाँ, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। तू जहां तक दिखाई देता है उसके आगे मैं देखता ही नहीं, पढ़ता रहता हूँ रात दिन जिसको वो खत जो उसने कभी लिखा ही नहीं। आए हाय, इतना किसके प्रेम में पागल हो रहे हैं आप, सब मोह माया है बच्चा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा यहाँ पे, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, सो काहे को इतना दर्द बटोर रहे हो। इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीफ जी की बाराबंकी से, उनको सुनना है गाना ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता टै टै टै टै टै टै टै टै। सो इंजॉय करते हैं ये वाला गाना मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर जो की है

0: मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का, 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी और जो सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी का आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों चले चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की और के गुप्ता जी की, तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। के गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से और शशि सिंह जी को सुनना है मोहम्मद अजीज की आवाज में गाना दिल है बेताब, मूवी का तेरा गम अगर ना होता। सो एंजॉय करते हैं ये गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फरमाइशी प्रोग्राम जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस आपके नाम से। स्टे ट्यून्ड और एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल है स्टेज।

गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता, हमने एंजॉय किया है ये गाना शशि सिंह जी की फरमाइश पर और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से के गुप्ता जी की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन इस फरमाइशी गीत से आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को जरूर कुछ याद आया है, सो आप सभी की खिदमत में जरूर पेश करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि जो पास है वो साथ भी दे, जरूरी नहीं कि जो पास है वो साथ भी दे, कुछ लोग रुक कर भी दिल को घाव देते हैं, वफा और बेवफाई को रास्तों से ना नापिए, वफा और बेवफाई को रास्तों से ना नापिए, यहाँ तो साथ चलने वाले भी दगा देते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है संतोष कुमार की गिलौली गोंडा से और उनको सुनना है गाना नगीना मूवी का भूली बिसरी एक कहानी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुराधा जी की आवाज में।

भूली बिस्तरी एक कहानी, नगीना का ये गाना अनुराधा जी की आवाज में दोस्तों हमने इंजॉय किया है संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों किसकी, मुमताज अंसारी जी की। और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना आंखों में नींदे ना दिल में करार, और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। सो एंजॉय करते हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तो आंखों में नींदे ना दिल में करार, और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नीना, आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निब्बर जी की। निब्बर जी को सुनना है गाना रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। एंजॉय करेंगे निब्बर जी की फरमाइश पर ये वाला गाना, लेकिन उसके पहले बातें तो हर कोई समझ लेता है मेरे दोस्त, बातें तो हर कोई समझ लेता है मेरे दोस्त, तलाश तो उसकी है जो मेरी खामोशी पढ़ सके। सो एंजॉय करते हैं अब ये वाला नगमा। हाजिर जवाबी शब्दों से सब कोई कर लेते हैं ना, नजरों से बातें समझ जाए, जज्बात समझ

का छाया खुमार के दिल परदेसी हो गया और हमें उनसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निब्बर जी की फरमाइश पर, जो कि हैरानी बाजार सोनार गली गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा, इम्तियाज अहमद फ्रॉम गोंडा। चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर ने क्या खूब लिखा है कि जो खामोशी को पढ़कर समझ सके वही इंटेलिजेंट होता है, वरना खुली किताब तो हर कोई पढ़ लेता है। तो क्या आप अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहे हैं? हाँ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि कुछ बातें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, सब कुछ मुकम्मल हो तो जीने की चाहत घट जाती है। नागेश्वर धाकर जी, एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है बहुत ही खूबसूरत से गाने की, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नाउ लेट्स गो टू अगले और आखिरी वाले डिमांड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं, और ये ना पूछो कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा मेरे दोस्तों। सो इंजॉय करते हैं ये वाला गाना और लेती हूँ अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। दोस्तों मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक हम ही अकेले थे, बाकी सारा कारवां उसका था। सो वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है क्योंकि मैं कल नहीं मिलूंगी, तो परसों मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेतहाशा प्यार और आशीर्वाद आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, बाय बाय। I love this song. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मर भी रही होंगी ना, मुझे इस गाने को सुना दिया जाएगा तो मैं जिंदा हो जाऊंगी।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
13: विजिट करें एटिस्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, और कार्यक्रम आ चुका है बहारे गजल। और आज तो शनिवार है, आज तो हमारी गजलें होती हैं और आपके गीत होते हैं। तो इस शनिवार के प्यारे से सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है, वंदन है। और भाई बहुत से लोगों को बहुत अच्छा सुना हमने, और इस दिन की प्रतीक्षा भी रहती है कि कौन हमें क्या सुनाने वाला है। तो हमारे जितने श्रोता हैं जो अभी कुछ देर में वक्ता बन जाएंगे, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और चलते हैं भाई पहले अपने हम गजल की तरफ, गजलें हमारी हैं और गीत आपके होंगे। तो हमारे साथ मुस्तफ़ा जी सऊदी से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार आपको और शुभ संध्या भी आपको। तो चलिए भाई अब गज़ल आपको सुनाते हैं और इसके पश्चात आपकी सभा में रखते हैं प्रश्न गीतों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं कि बहुत ही प्यारी सी गज़ल के साथ, पंकज उधास की आवाज़ में, और इसके बाद होते हैं आपसे रूबरू। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: जी तो गजलें हमारी हो चुकी, गजल हो चुकी, अब गीत आपके होंगे। हमारे साथ मुस्तफा सऊदी जी हैं, नितिन सिंह जी हैं हमारे साथ, और फिर उसके पश्चात नागेश्वर धाकर जी अपने चिर परिचित अंदाज में हैं। क्या बात है भाई, आपका नटखटपन अच्छा लगता है, क्या बात है। ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना, श्रीमती सविता शास्त्री जी उपस्थित हैं। नमस्कार शुभ संध्या सर जी, नमस्कार जी। हाँ, नीना जी ने लिखा मनु जी गायब हैं, ऐसा कैसे आप कह सकती हैं। और इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ हैं। भाई इम्तियाज अहमद जी, सलाम करते हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। रवि जी हैं और नागेश्वर लिखते हैं, गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार। ये सॉन्ग सुनकर मैं भी माला माल हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि इतना माल कहाँ रखूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने भी साफ बोल दिया कि 5 लाख से ज़्यादा माल नहीं रख सकते घर में। बिल्कुल आप हमारे घर में आकर रख दीजिए और हम सुरक्षा करेंगे उसकी, हमारी कुछ सेटिंग है। तो आप निसंदेह तुरंत चले आइए FM, और आपके पास जितना ज़्यादा हो उतना हमको दे दीजिए और हम जो है वो रख लेंगे। मनी शर्मा जी उपस्थित है भाई हमारे साथ जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सामान्यतया मैं शुरुआत करता हूँ पुराने गीतों से, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है गीत सुनने का। आज सुना था तो गीत सुनने का मन कर रहा है। कोई तुम सा नहीं, जी हाँ, किस फिल्म का ये गीत बहुत ही शानदार रहा है, और इस गीत को सुनने की इच्छा हमारे मन में है। और देखते हैं कि भाई कोई तुम सा नहीं, किस फिल्म का ये गीत हमको कौन सुनाता है। जी हाँ, देखते हैं कौन हमारे साथ। जी हाँ, फोन भी आ चुका है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: हाँ बताइए, अगर इतने दिन तक आप गायब रहेंगे तब तो हम भूल ही जाएंगे आपको।
1: अरे सर ऐसा मतलब क्या है कि बुलाए आदमी जो है मत कीजिएगा।
0: नहीं मतलब अचानक, मतलब इतने दिन के बाद। और नितिन सिंह लिखते हैं, हम नहीं दिखे थे। बिल्कुल आप दिखे, आप आपके अलावा वो कोई दिखता ही नहीं। नहीं, एक संदेश आया है कि नितिन सिंह ने कहा हम नहीं दिखे। हमने कहा बिल्कुल आपके अलावा और कौन दिखेगा।
1: नहीं सर, हम निकलते, अगर आपको याद हो तो ठीक, शायद 4 दिन पहले पूर्णिमा थी।
0: अच्छा हाँ, 4 दिन पहले पूर्णिमा थी। हाँ पूर्णिमा हमेशा रहती है।
1: जी बिल्कुल, पूर्णिमा हमेशा रहती है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पूर्णिमा नहीं है।
0: बिल्कुल स्टूडियो के फोन पे नहीं थी, बाकी तो आसमान में।
1: कल हो सकता है कि चांद जो है आपके स्टूडियो में भी चमक जाए।
0: अच्छा तो ये बात है, तो फिर भाई तो
1: कोशिश तो रहेगी, कल ये चांद जो है काफी देर तक रहे।
0: नहीं, आप कोशिश कीजिएगा, वादा मत कीजिएगा। कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, वादे टूट जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, दोनों टूट जाते हैं। और हम कोशिश भी नहीं करेंगे, वादा भी नहीं करेंगे, किस्मत की बात है।
0: जी जी
1: जी,
0: तो चलिए हम आपकी कोशिश का इंतजार करते हैं। फिलहाल कोई तुम सा नहीं।
1: जी, और बिल्कुल सर इसमें एक चांदनी वर्ड आई है। जी, इसमें इस गाने में एक चांदनी शब्द है।
0: हाँ?
1: तो मैं आपको जब सुनाऊंगी तो अभी आप नोटिस कीजिएगा कि चांदनी है कि नहीं है।
0: जी
1: जी, तो मैं शुरू करती हूँ।
0: जी निसंदेह।
1: सर ये बताइए, पूरा गाना सुना है या आधा सुनाना है?
0: नहीं पूरा सुना दीजिए, मतलब इतने आधा सुनाएंगे।
1: और सुन के बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि मन रखने के लिए मत बोलिएगा।
0: नहीं नहीं, हम हमेशा बोलेंगे अच्छा लगा।
1: जी बिल्कुल ठीक है, तो हम सुनाते हैं।
0: जी
1: जी, धूप निकलती है जहाँ से

कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं।

कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। अच्छा आगे सुनिएगा।

कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं।

0: सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, वास्तव में आज तो कोई आपके जैसा नहीं। नागेश्वर ने लिख दिया है, वाह पूर्णिमा जी आपके ऐसा कोई ना नहीं है। और सविता जी ने लिखा है कि भाई बहुत प्यारी आवाज है इनकी।
0: थैंक यू।
1: समझिए वाह पूर्णिमा जी, कोई तुमसा नहीं। राजेश सिंह ने भी तारीफ के भाई प्रणाम करते हैं आपको भी, और बहुत सारी तारीफ आपने लूट ली है आज
0: जी। थैंक यू जरा नवाज़ के लिए।
1: जी, और आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे बुधवार को शनिवार को आना, आइए आप।
0: जी बिल्कुल आएंगे। और लेकिन सर आपको भी एक वादा करना पड़ेगा हमसे।
1: जी
0: आप कल मिलेंगे?
1: कल मिलेंगे।
0: कल मिलेंगे ना?
1: जी
0: जी बिल्कुल। तो तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, एक और वादा है।
1: जी
0: सर, तो कल संडे है, कल मिलते हैं।
1: कल मिलते हैं इंशाल्लाह, जरूर मिलते हैं अगर इसको की इच्छा हो तो।
0: ओके सर।
1: ओके
0: नमस्कार।
1: जी हाँ, तो भाई ये पूर्णिमा जी और बहुत सारे स्टार्स मिल गए, और रवि गोंडा जी ने भी बहुत सारे स्टार दे दिए, मनीष शर्मा जी ने दिए, चलती है। और इम्तियाज जी ने लिखने कहा एक ओल्ड सॉन्ग तो बनता है। जी बिल्कुल, आई चलते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ, रोमांटिक कुमार।

0: सभी।
1: जी हाँ, तो देखते हैं भाई इस गीत को कोई ना कोई करेगा मुकम्मल, कोई ना कोई आगे की लाइन खा गई, अभी फोन नहीं किया। जी हाँ बिल्कुल फोन करेंगे और ये फोन चलता रहेगा। जी हाँ, वो फोन आ चुका है हमारे पास। हेलो,
2: हेलो,
1: ओहो रोमांटिक कुमार जी, दादा प्रणाम।
2: अरे थैंक यू सर, लेकिन बड़ा मत बनाइए आप।
1: अरे नहीं, अब आप बड़े हैं तो आपको बड़ा बनाना पड़ेगा।
2: तो बुड्ढा बनाना पड़ेगा, चलिए अच्छा
1: जी, मैं बड़े हैं तो बड़ा बनाना पड़ेगा,
2: चलिए तो अच्छी बात है।
1: हाँ, तो ये रेशमी जुल्फे आपने उठा ली।
2: जी हाँ
1: जी,
2: तो अगर आप इजाजत दें तो मैं।
1: जी जी, मैं कलबद्ध निवेदन करता हूँ, मतलब ऐसा न कहें आप।
2: जी तो मैं शुरू कर रहा हूँ।
1: जी
2: रेशमी जुल्फे

पैर झुक जाएंगे, ये सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, वो इनको न बतलाना, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर

जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़वाएंगे, जी को तरसाएंगे, जे कर देंगी दीवाना कोई इनको न बतलाना कि मैं देख कर

0: शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा। और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।
0: थैंक यू सर, आपने बहुत सही गेस्ट
1: किया। जी नहीं, ये मैंने गेस्ट नहीं किया, ये श्री राजेश सिंह जी जो मेरे सबसे जानकार श्रोता है उनका मैसेज आ चुका है।
0: थैंक यू उनको भी।
1: जी और नेहा जी भी बहराइच से। और ये बताइए भाई, वो हजार बातें कहे जमाना वो अभी हमने सुना नहीं है
0: जी,
1: तो क्या अच्छा हाँ।
0: वो गान भी तो अभी प्रयास कर रही है अपने मोबाइल से गाने।
1: जी जी जी
0: जी जी
1: अच्छा दादा प्रणाम। जी हाँ चलिए भाई, बहुत ही प्यारा गीत सुना। अब आपके सभा में रखते हैं एक प्रश्न। आप सभी ने फिल्म देखी होगी नसीब, उसमें शुरुआत होती है गीत की, जिंदगी इम्तिहान लेती है। अब इम्तिहान जिंदगी लेती है फिर आता है दिल लगी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। जी हाँ, उस गीत में कितनी चीजें हैं जो इम्तिहान लेती हैं, अगर आपको बता सके तो आप क्रम से बताइए। पहले जिंदगी ने इम्तिहान, जिंदगी आया है, फिर दोस्ती आया है, फिर मैकशी आया है। तो क्रम से आपको बताना है कि इस गीत में इम्तिहान लेने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर एक पर क्या है, नंबर दो पर क्या है, नंबर तीन पर क्या है, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए। और भाई मेरे साथ नेहा जी भी उपस्थित है, खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और अब चलते हैं भाई, आज एक इच्छा है बड़े दिनों से, काफी दिन से इच्छा सुनना है, एक नात शरीफ सुनने की। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जी हाँ, कोई उस दिन कोई व्यस्त था, हमको मैसेज आया था कि सर मसरूफियत ज़्यादा है, नहीं तो बिल्कुल सुनाते। और हमको लगता है कि वो मसरूफियत अब समाप्त हो गई होगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, बहुत ही प्यारी सी नात शरीफ है। और नागेश्वर धाकड़ ने लिख दिया है पांच, इम्तिहान लेती है कौन कौन सी चीज़ें हैं ये बताना है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, फिर उसके बाद कौन सा शब्द है, फिर कौन इम्तिहान ले रहा है, फिर कौन इम्तिहान ले रहा है, शब्द के साथ बताइए। और हो सके तो आपका ही दूरभाष क्रमांक है 63-93-31-64-29 6393-31-6429, ये आपका दूरभाष क्रमांक है। आप इसी बहाने आपकी आवाज़ भी सुन लेंगे हम नागेश्वर धाकड़ जी, और आप बता भी पाएंगे कि उस गीत में कितनी चीज़ों ने इम्तिहान लिया है। शुरुआत जिंदगी से होती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्तिहान लेती हैं। चलिए, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये गीत, ये नात शरीफ हमको सुनने को मिलेगी ऐसा मुझको प्रतीत होता है। फिलहाल आप कागज़ कलम उठा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये गाना आपने सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आपको ये गीत भी सुनवा देता हूँ। अब आपको काम ये करना है कि इस गीत को सुनने के पश्चात आपको ये बताना है कि इम्तिहान किन किन चीज़ों ने लिया। तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो फिर चलिए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा। फिलहाल हमको अपने प्रश्न की भी उत्तर की आवश्यकता रहेगी जो प्रश्न हमने किया है। और देखते हैं भाई हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: आप सर राजेश सिंह बोल रहे थे
1: जी? अरे बोल रहे हैं, प्रणाम।
0: नमस्ते सर
1: जी। प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: ठीक है सर, ठीक है
1: जी, बताइए।
0: अब सर नसीब में तो वो जो इम्तिहान शब्द है वो कितनी बार है हमें तो नहीं पता है।
1: नहीं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, फिर क्या? हाँ, फिर कौन सी चीज है जो इम्तिहान लेती है?
0: मैकसी।
1: हाँ ठीक।
0: और दोस्ती तीन हो गए, और सर इतना और नहीं याद है सर।
1: अच्छा, नहीं याद है।
0: अच्छा हाँ जी। हाँ। जी जी, इसमें तीन आवाजें थी, सपना अवस्थी, कमलेश अवस्थी और अनुमग हुसैन।
1: सपना अवस्थी की आवाज है इसमें?
0: जी जी, सपना अवस्थी उनके जो पति थे कमलेश अवस्थी वो, और अनुमग।
1: मुझे लगता है जो फीमेल वॉइस है वो सुमन कल्याणपुर है।
0: नहीं, सपना अवस्थी। सुमन कल्याणपुर बहुत पुरानी गायिका थी।
1: हाँ, लेकिन मुझे तो उन्हीं की आवाज जान पड़ रही, हो सकता है
0: नहीं, नहीं, नहीं,
1: हो।
0: कर लीजिए।
1: सपना अवस्थी की आवाज थोड़ी सी मोटी है। साथ छोड़ू ना तेरा,
0: तो सर वो जो ये आज की मूवी है वो बहुत पुरानी मूवी, 79 की बनी हुई मूवी है।
1: हाँ, 79 की बनी हुई मूवी है, 30 के। लेकिन जिंदगी इम्तिहान ले, मुझे नहीं लगता कि ये सपना अवस्थी की आवाज होगी।
0: मुझे
1: लगता है कि ये सुमन कल्याण।
0: अच्छा, वो जो अभी शुरुआत में सर एक गाना आपने बोला था।
1: हाँ?
0: वो टावर हाउस का 1962 में बनी हुई फिल्म थी
1: जी,
0: तो उसका आपने एक लहजा गाया था, बहुत अच्छा था, वो लता जी का सेट सॉन्ग था, तो वो गाना आप सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: ऐ मेरे दिल नादान, तुम गम से न घबराना। टावर हाउस 1962।
1: जी जी जी। इस गाने पर कॉपीराइट सविता जी का है, मतलब इस गाने को हमने पहली बार उन्हीं के मुंह से सुना था, और हम चाहते हैं कि आप इस गीत को गा दीजिए। और आपका बर्थडे था, वो साथी दे तेरे बिना भी क्या जीना, हमने बजा दिया था, आज आप सुना दीजिए। बहुत दिनों के आगे कुछ नया नहीं है।
0: अब ये तो दूसरे को मौका दीजिए सर।
1: नहीं नहीं, हम पहले आपसे मौका ले लें।
0: नहीं सर, अब दूसरे से।
1: ठीक है, तो
0: हम अभी हम सुना दूसरा गाना सुनाएंगे सर।
1: ठीक है, तो जिंदगी इम्तिहान लेती है ये गीत हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं, और आपको सिर्फ ये बताना है कि इम्तिहान कौन कौन सी चीजें लेती हैं। जिंदगी ने लिया, मैकसी ने लिया, दोस्ती ने लिया, खाली वो शब्द आपको बताने हैं। तैयार हैं आप लोग?
0: जी जी सर।
1: ठीक है, तो आप रहिए तैयार, और ये गीत हमने किया प्ले, और देखते हैं भाई कि परीक्षा में खड़ा कौन उतरता है। इम्तिहान लेती है क्या जिंदगी, कितने शब्द हैं जो इम्तिहान ले रहे हैं। सुनिए ये गीत और इसके बाद बताइए, ध्यान से सुनिएगा। लेटेस्ट अपडेट। हेलो।
2: हाँ नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार।
2: आज की लेती है, आज की इम्तिहान लेती है, मैकसी इम्तिहान लेती है।
1: हाँ
2: हाँ।
1: और
2: सभी? हाँ सभी बताना है क्या?
1: हाँ सारे, जितने भी इम्तिहान लेती है।
2: अच्छा, एक तो आज की है, एक मैकसी है।
1: हाँ।
2: और एक जिंदगी है।
1: जिंदगी स्वयं
2: से इम्तिहान लेती।
1: हाँ जी, वही से तो शुरू होता है गीत, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
2: अच्छा,
1: हाँ। पहले जिंदगी इम्तिहान लेती है। अच्छा, इसमें जो आवाज है क्या वो सपना अवस्थी है या सुमन कल्याणपुर है?
2: ये सबकी आवाज अलग अलग है।
1: नहीं, जो फीमेल वॉइस है वो एक ही है, जो महिला की आवाज है वो एक है, तो क्या वो सपना अवस्थी है? मुझे तो सपना अवस्थी नहीं लग रही है, मुझे तो वो सुमन कल्याणपुर लग रही है।
2: हाँ तो सुमन कल्याणपुर सपना अवस्थी नहीं है।
1: हाँ, क्योंकि सपना अवस्थी की आवाज थोड़ी मोटी है मुझको।
2: रीना राय जो गाती है वो सुमन कल्याणपुर की आवाज है, रीना राय।
1: हाँ वही, अभी राजेश जी ने कहा तुमको आश्चर्य हुआ, क्योंकि सपना अवस्थी की आवाज मुझे लग नहीं रही थी।
2: नहीं नहीं, सपना अवस्थी नहीं है, आप चाहे गूगल से पूछ रहे हो, नहीं हो सकता।
1: हाँ वही मुझे भी लगा, लेकिन हो सकता है कहीं हमको लगा हमारी गलतफहमी हो।
2: हाँ
1: तो मैं ये गीत प्ले कर रहा हूँ, फिलहाल अब आप आ चुके हैं तो गीत बाद में प्ले कर देंगे, पहले आपसे कुछ सुन लें।
2: अरे तो सभी बता देंगे, उसमें सब बता देंगे, गाते हुए जाएगा वो सब बता देंगे कितने इम्तहान है, हमको ये सुना तो याद आ गया इसलिए फोन करके बता दीजिए।
1: चलिए तो अब आप आ चुके हैं तो आपसे कुछ सुन लें, उसके बाद फिर ये गाना प्ले करें। तो क्या सुनाएंगे आप?
2: अभी तो फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं है सुनाने का, अभी मैं घर चला आ रहा हूँ, कपड़े लत्ते उतारना है।
1: जी जी
2: थोड़ा लेट हो गया।
1: ठीक है, कपड़े लत्ते उतार लीजिए, तब तक हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं।
2: ठीक ठीक हाँ उनसे पूछते हैं
1: कितनी चीजें इम्तिहान लेते हैं। जी हाँ भाई, तो तैयार हो जाइए, देखते हैं किसकी याददाश्त मतलब किसकी कलम सबसे पहले तेज उठती है। फिलहाल ये प्यास नगमा और आपको बताना है इम्तिहान कौन कौन सी चीजें इस गीत में ले रही हैं। इसके लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

0: जी हाँ, फोन आ चुका है हमारे पास और देखते हैं भाई ये फोन किसका है जो ये बताने के लिए एकदम तैयार है कि कितने लोगों ने इम्तिहान लिया। और देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार। अच्छा एक बार पुनः आप जी कैसी हैं?
1: बिल्कुल हवी है
0: जी।
1: तो हम इसका जवाब देना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: जी बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे आपसे।
1: जी सर, तो कुछ यूँ है कि अच्छा सर ये बताइए, लिरिक्स पूरा गा के सुनाना या बस ऐसे स्टैंड वाइज सुनाना?
0: नहीं, आपको वो पंक्ति बता देनी है जिसमें इम्तिहान लेती है, ये इम्तिहान लेती है, वो लेती है।
1: जी जी ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले स्टार्टिंग है वो जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: जिंदगी इम्तिहान लेती है, ठीक
1: जी हाँ। लोगों की जान लेती है।
0: फिर
1: उसके बाद दिल लगी इम्तिहान लेती है।
0: बिल्कुल सही, दिल लगी इम्तिहान लेती है।
1: हाँ, उसमें लाइन है कि दिल जलों की जान लेती है।
0: हाँ।
1: और फिर दोस्ती इम्तिहान लेती है।
0: दोस्ती इम्तिहान हो गया, तीन हो गया।
1: जी हाँ, दोस्तों की जान लेती है।
0: हाँ।
1: फिर दोबारा आता है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: हाँ,
1: फिर उसी में है दिल लगी इम्तिहान लेती है, और फिर उसी में है कि दोस्ती इम्तिहान लेती है।
0: जी
1: जी। फिर उसके बाद आता है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, उसके बाद बेबसी इम्तिहान लेती है सर।
0: हाँ।
1: बेबसी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, फिर स्टैंजा रिवाइज होता है, आशिकी इम्तिहान लेती है।
0: आशिकी इम्तिहान लेती है। हाँ।
1: आशिकों की जान लेती है।
0: हाँ।
1: फिर है कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है।
0: जी।
1: और फिर आखिरी है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, अगर मुझे जहाँ तक ऐसा याद आ रहा है।
0: जी अभी
1: तो
0: आप,
1: क्या हम कहेंगे?
0: अभी आप दो शब्द छोड़ रही हैं।
1: ओके, अभी दो शब्द तो कैसे छूट गए बताइए।
0: छूटा है, अब आप सोचिए जरा, सोचिए।
1: ओके,
0: हमने गाना इसीलिए हमने गाना सुना दिया है, इसके बाद प्रश्न पूछा है।
1: नहीं सर, तो हम बीच में कॉल कर दिए थे तो
0: जी।
1: सर प्रीत भी इम्तिहान लेती, मैंने जब
0: जी,
1: बताया।
0: जी बिल्कुल,
1: प्रीत भी मैंने बताया था। और प्रेमी भी जान लेती है।
0: हाँ, अब केवल एक शब्द बचा।
1: ओके, बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसों की जान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, और सर आशिकी इम्तिहान लेती है, भी मैंने बताया।
0: जी
1: सर, फिर दोस्त, फिर आशिकों की जान लेती है, फिर दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: जी
1: तो सर कहाँ छूट रहा है?
0: एक शब्द छूट रहा है, अभी तो मैं कह रहा हूँ
1: सर। अब तो फिर मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, कि दिल लगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, प्रीत भी इम्तिहान लेती है, और फिर जिंदगी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है, और दिल लगी इम्तिहान लेती है, पर आशिकी इम्तिहान लेती, तो सब तो बता दिया।
0: बस एक छूट गया
1: सर। अब कौन सा छूट रहा, मुझे सच में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज कर रहे हैं।
0: नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ।
1: तो हो सकता सर, अगर मैं स्टैंजा सुनाती तो शायद या तो फिर बता ले जाती।
0: जी, अंतिम में शब्द आता है जब वो शत्रुघ्न सिन्हा शराब पीने लगता है, उस स्टैंजे में
1: बेबसी इम्तिहान लेती है।
0: जी, मैं
1: अच्छा सर, हाँ
0: जी,
1: मैं तो शराब जो ग्लास छीन लेती है, फिर कहती है कि मैं कशों की जान लेती है।
0: हाँ, मैं कशी इम्तिहान लेती है।
1: और उसी सर, उसी गाने में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने भी देखा, तो ग्लास फिर उसके हाथ से छीन लिया जाता है।
0: वो बोतल पीता है, ग्लास से नहीं पीता है।
1: हाँ सर, जिससे भी सीखा। मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने भी मूवी देखी, पापा के साथ मैंने मूवी देखी थी, और काफी अच्छी मूवी है।
0: बहुत अच्छी।
1: और हाँ, मुझे इसमें शत्रु सिन्हा है उसमें जो है उनका रोल बहुत अच्छा लगा था।
0: जी
1: जी, तो ये आकाशवाणी भी हमेशा आता था शाम के 5 बजे, जो युवाड़ी प्रोग्राम होता था उसमें आता रहता था। तो जब हम सब लोग इकट्ठा चाय पीते थे, हम पापा दीदी सब लोग, तो ये गाना कभी कभी आता था, तो मेरे पापा गुनगुनाते रहते थे, तो मुझे याद है इसलिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू सर। मतलब आपको ना ये क्विज क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब इसके दिमाग जो है कहीं ना कहीं बहुत तेज होता है।
0: ठीक है, हम बिल्कुल रखेंगे इसको।
1: जैसे ये क्विज क्वेश्चन ही हमेशा जारी रखे, और ऐसे ही क्वेश्चन सर पूछेगा जिसमें मजा आए।
0: जी बिल्कुल।
1: जी सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार। जी हाँ भाई, तो तय हो गया कि कितनी बार इम्तिहान लेती है, और अब चलते हैं, एक प्यारा सा नगमा आपको और सुनाते हैं, और नगमे के बाद फिर लौटते हैं आपके पास।

जी हाँ, हमने आपको एक धुन सुनाई है, अब आपको ये बताना है कि ये किस गीत की धुन है। शुरुआत में ये बजा आपने सुना, ये एक बार पुनः आपको सुना देते हैं, और आपको सिर्फ ये बताना है कि ये गीत कौन सा है जिस गीत की ये धुन है। एक बार पुनः सुन लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो दूर कर लीजिए।

जी हाँ, आपके उत्तर की प्रतीक्षा हम एक मिनट तक करेंगे। धुन हमने आपको दो बार सुना दी और आपको बताना है कि ये कौन सा गीत है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ये गीत याद आ जाएगा। एक मौका आपको और देता हूँ, एक बार पुनः सुन लीजिए, हो सकता है इस बार आपको याद आ जाए। हमको लगता है कब तक याद आएगा भाई, चैट बॉक्स में जाकर के हम चेक कर लेते हैं कि ये ऐसा कोई है तो नहीं। प्रेमियों की जान लेती है पहली मोहब्बत, समय लेती है, क्या बात है भाई। मनी शर्मा जी क्या बात कही आपने। और मैं कशी जी, जी जी बहुत खूब। और जी अब आप जरा धुन बताइए, धुन बताइए, धुन बताइए, धुन बताइए, धुन बताइए, एक बार फिर से सुन लीजिए।

0: हेलो
1: जी हाँ, फोन आया और स्वतः कट गया। चलिए, अब लगता है कि उत्तर नहीं मिलने वाला है।
2: हेलो
1: हेलो
2: सर, नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।

0: भाई देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम।
1: जी मनी शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी जी मनी जी, क्या बात है भाई,
1: और बताइए सर कैसे हैं।
0: जी जी आपका आशीर्वाद।
1: धन्यवाद सर।
0: जी
1: सर मुझे लग रहा है ये जो आपने म्यूजिक बजाया है,
0: जी
1: मुझे लग रहा है पता नहीं गलत है या सही है, आने वाला पल जाने वाला है, मुझे लग रहा है यही सॉन्ग का है।
0: जी नहीं, ये नहीं सही है।
1: चलिए सर सॉरी।
0: चलिए हम आपको सुनाते हैं और आप सुनकर बताएंगे।
1: चलिए सर सुनाएंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मनी जी आपको फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आपको सुनाते हैं ये गीत।

जी हाँ, चैट बॉक्स की तरफ मरी निगाह नहीं गई भाई, क्षमा चाहते हैं आपसे। और अनिल जी ने लिखा है दोस्ती फिल्म का गीत है। जी हाँ, ये गीत, ये बात सही है। आशु मिश्रा जी है कोई जब राह न पाए, जी नहीं ये नहीं है। नेहा जी ने कहा कोई जब राह न पाए, जी नहीं। गीता श्रीवास्तव जी का एकदम जवाब सही था, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, क्या बात है। और कोई जब राह न पाए, जी हाँ ये नहीं है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, गीता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और प्रणाम करते हैं आपको। हम मूवी वही थी, सांग गलत हो गया जी, ऐसा ही अनिल जी के भी साथ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपके जैसे किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी दोपहर में, ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: The Haunted Night, डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।

0: सोचिए, किसी देर रात आपकी आंख खुलती है और आपको सुनसान रात में आपके घर के बाहर से सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। आप बिस्तर से उठते हैं और जैसे ही ये जानने के लिए कि इतनी रात आखिर कौन है जो यूं रो रहा है, आप दरवाजा खोलते हैं। पर वो रोने की आवाज दरवाजा खुलते ही बंद हो जाती है। आप इसे कोई सपना या अपना कोई वहम समझकर जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं, वो सिसकियों की आवाज फिर शुरू हो जाती है। ये कोई सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं, और जो इस भयानक अनुभव से गुजर रहा हो उसकी आंखों में नींद नहीं, खौफ होता है। ये किसी एक रात की घटना नहीं थी, ये मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से कस्बे नरसिंहगढ़ का हर रोज घटने वाला एक ऐसा किस्सा है जिसे सोचकर लोग आज भी कांप उठते हैं। आखिर किसकी थी ये सिसकियां जिसने वहां के हर इंसान को डर में जीने की एक वजह दे दी थी? आखिर वो क्या था जिसके खौफ से खुद रात भी उन गलियों में कदम रखने से पहले सहम जाया करती थी? ये सब जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये सिसकियां थी किसकी, वो कौन हो सकता था जो इतनी रात यूं किसी के घर के बाहर रो रहा हो, और क्या थी उसके रोने की वजह। पर ये सब जानने से पहले आपको एक चेतावनी, कमजोर दिल वालों के लिए ये सब जानना बहुत भारी पड़ सकता है। नवरात्रा के दिन चल रहे थे, माता का हर मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। नरसिंहगढ़ नाम के इस कस्बे में भी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां नवरात्रा के 9 दिन मानो जैसे मेला सा लगता है। सुबह 4 बजे से ही वहां श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगती थी, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती थीं। पर इन महिलाओं में भी एक युवती थी, सीमा, जिसका मानो हर नवरात्रा में एक ही ख्वाहिश होती थी कि वही सबसे पहले माता के दर्शन करे। इसलिए वो सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर जाने की तैयारी शुरू कर देती, और सुबह 4 बजे मंदिर के द्वार खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाया करती। सीमा अभी कुछ हफ्तों पहले ही शादी करके इस कस्बे में आई थी। उसका हसमुख व्यवहार, पूजा पाठ के प्रति उसकी लगन ने सीमा को घर का एक प्रिय सदस्य बना दिया था। सीमा हर रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती, घर के हर सदस्य का वो पूरा ख्याल रखती, और नवरात्र आते ही तो वो और भी खुश रहने लगती थी। और सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मंदिर जाती। वो सुबह 3:30 बजे से ही मां की पूजा की तैयारी में लग जाती थी और 4 बजे से पहले ही मंदिर पहुंच जाती। उसके आसपास के लोग भी उसकी भक्ति की इस शक्ति से काफी प्रभावित रहते थे। पर एक बात हमेशा सीमा को खलती रहती थी, उसका घर मंदिर के बिल्कुल पास होते हुए भी उसके घर वाले उसे दूसरे और लंबे रास्ते से जाने को कहते थे। कई बार उसने अपने घर वालों से उस रास्ते के रहस्य के बारे में पूछना भी चाहा, पर जैसे ही वो इस बारे में पूछती, उसके घर वालों के माथे पर एक शिकन सी आ जाती और डर से उन सब के चेहरे फीके पड़ जाते। जवाब में सिर्फ यही सुनने को मिलता कि ज्यादा अंधेरा होने पर उस रास्ते पर जाने के बारे में भी वो ना सोचे, और खासकर नवरात्रा में। सीमा ने भी ज्यादा सवाल जवाब ना किए और जैसा उसके घर वालों ने कहा उसने वैसा ही किया। वो नवरात्रा की हर सुबह लंबे रास्ते से ही अपनी पड़ोस में रहने वाली नीलम के साथ रोज मंदिर जाया करती। नीलम बस कुछ ही दिनों पहले उसके पड़ोस में रहने आई थी और सीमा से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वो दोनों सुबह मंदिर जाते तो नीलम हमेशा सीमा से कहती,
1: हम लोग हमेशा लंबे वाले रास्ते से ही मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर तो घर के कितना पास है।
0: जवाब में उसे सीमा से बस यही सुनने को मिलता कि उसके घर वालों ने ऐसा कहा है। खैर, सीमा और नीलम दोनों ही नवरात्रा में सुबह 4 बजे उस लंबे रास्ते से ही रोज मंदिर जाया करती। उस समय रास्ते पर सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं होता था, होता था तो बस अंधेरा। लोग कहते हैं कि रोज की रातों और नवरात्रा की रातों में काफी फर्क होता है। कई लोगों का मानना होता है कि नवरात्रा के समय भूत प्रेत और रातों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये 9 दिनों वो आजाद होते हैं, इसलिए इन 9 दुर्गा की 9 रात हमें काफी संभल कर गुजारना होती है। शायद यही वजह थी कि सीमा के घर वाले उसे इन रातों को उस रास्ते से और भी दूर रहने की हिदायत दे रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। आखिर वो सुबह आ ही गई जिसने सीमा और उसके घर वालों की आने वाली

0: रही थी, मानो वो चीख चीख कर कुछ बोलना चाह रही हो। सीमा मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और हर रोज की तरह उसने मां की पूजा की थाली सजाई। सिंदूर, चंदन, चावल, भोग, दिया और ऐसी ही कई सामग्री थाली में लिए वो अपनी पड़ोसन नीलम के दरवाजे पर पहुंची। उसने गौर किया कि शायद आज नीलम देर से सोकर उठी है और वो अभी भी पूजा की तैयारी ही कर रही है। ये जानकर उसने उसका दरवाजा और जोर से पीटना शुरू कर दिया।
1: अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ देगी क्या?
0: नीलम जानती थी कि वैसे तो सीमा बहुत शांत व्यक्तित्व की है, पर सुबह मंदिर के लिए देर हो जाए तो वो बहुत नाराज होती है। और हुआ भी वही। नीलम जब अपने घर से बाहर निकली तो सीमा आग बबूला थी। वो बोली तो कुछ नहीं, पर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले गई। सुनसान रास्ते पर वो दोनों साथ होने के बावजूद एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे, क्योंकि सीमा के कदम आज देर होने की वजह से दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। सुनसान रास्ते पर उस अंधेरे में सीमा की तेज कदमों के चलने की आवाज हर जगह गूंज रही थी, पर अचानक ही वो रुकी और कुछ सोचने लगी। और उसने जिंदगी में एक ऐसा कदम बढ़ाया जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। आज देर हो जाने की वजह से सीमा ने उस रास्ते से होकर गुजरने का सोचा जिस रास्ते से लोग दिन में गुजरने तक में सहम जाते थे, जिस रास्ते पर रात में जाने से उसके घर वालों ने उसे कई बार मना किया था। सीमा ने देर होने की वजह से एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। देर होने की वजह से उसके दिमाग से ये भी निकल चुका था कि क्या उसकी दोस्त उसके पीछे आ भी रही है या नहीं। वो बस चली जा रही थी। उसे किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। इस घोर रात में ये किसकी सिसकियां हो सकती हैं? आसपास के जितने भी घर थे वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर ये रोने की आवाज किसकी थी? इन सभी बातों पर गौर करने की जगह वो मंदिर की ओर और तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। तभी उसे लगा उस सूने रास्ते पर कोई उसके पीछे है। उसने सोचा शायद वो नीलम हो, पर नीलम तो बहुत देर पहले ही उसका पीछा छोड़ चुकी थी। तो आखिर वो कौन थी? इन सभी बातों से बेखबर सीमा को तो यही लग रहा था कि नीलम उसके पीछे है। वो तेज आवाज में बोली,
1: अरे तू कितना धीरे चल रही है, जल्दी चलना मेरे साथ।
0: उसका ये कहना था और उसे

0: महसूस हुआ, मानो एक तेज हवा का झोंका उसके अंदर से होकर गुजरा हो। सीमा जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंची, उसके कदम अचानक ही जम गए। वो मंदिर के बाहर बुत बनकर खड़ी हो गई। वो मंदिर के दरवाजे के बाहर कुछ यूं खड़ी थी, मानो कोई लाश कब्र से निकलकर आ खड़ी हुई हो। जो कदम मंदिर के अंदर जाने के लिए हमेशा उतावले रहते थे, वो आज मानो जमीन पर जम गए थे। देखने में ऐसा लगता था मानो सीमा को किसी ने पकड़ कर रखा हो, पर वहां कोई न था। तभी एक आवाज की गूंज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। वो नीलम थी, वही नीलम जिसे वो देर होने की वजह से पीछे ही छोड़ाई थी। नीलम सीमा के पास आई और उससे बोली,
1: तुम इसे कितना आगे निकल आए और यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं गई?
0: पर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। उसे बड़ी हैरत हुई। उसने बहुत बार सीमा को आवाज दी, पर हर बार उसे ऐसा लगा मानो वो सीमा से नहीं किसी पत्थर से बात कर रही हो। दो चार बार बुलाने के बाद नीलम ने सीमा का हाथ पकड़ा और दूसरे ही पल उसकी चीख निकल गई। सीमा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। उसकी चीख सुनकर पुजारी भी दौड़कर मंदिर से बाहर आया। उसे देख बुत की तरह खड़ी सीमा ने अचानक ही एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसके लंबे बाल पूरी तरह बिखर गए। उसकी आंखें पहले से ज्यादा बड़ी हो गई। उसके होंठ कपकपा रहे थे और अचानक ही वो जमीन पर बैठकर बहुत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख में दर्द भरा हुआ था, मानो कोई उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा हो। ये सब देखकर नीलम बुरी तरह कांप उठी और वहीं बेहोश हो गई। इस भीषण चीख को सुनकर वहां के आसपास के सभी लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। हर कोई सीमा का ये रूप देखकर बुरी तरह डर गया था। थोड़ी ही देर में सीमा के घर वाले भी आ गए, पर सीमा किसी को भी पहचान नहीं रही थी। जब सीमा के पति ने सीमा के पास जाने की कोशिश की तो सीमा ने उसे ऐसा धक्का दिया,
2: छोड़ मुझे,
0: कि वो काफी दूर तक जा गिरा।
2: छोड़ मुझे।
0: सीमा के पति को यूं लगा कि उसको धक्का सीमा ने नहीं, चार पांच लोगों ने मिलकर दिया हो। सीमा को पांच लोगों ने मिलकर एक रस्सी से बांधा और गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठते ही सीमा शांत हो गई। सीमा अब तक एक भयानक रूप ले चुकी थी। उसे चार लोगों ने कसकर पकड़ा हुआ था। वो
2: मुझे, छोड़, छोड़ मुझे।
0: और वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी भगवान की एक मूर्ति को देखकर कभी जोर से रोती तो कभी बेवजह ही हंसने लगती। बेवजह हंसने और रोने का ये सिलसिला सारे रास्ते यूं ही चलता रहा। फिर ये सभी लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां के पुजारी को शायद पहले इस बात की इत्तला कर दी गई थी। वो एक पेड़ के नीचे हाथ में मोर पंख लिए खड़े हुए थे। सीमा को दो लोगों ने कसकर पकड़ा और उन बाबा के पास ले गए। उनके पास जाकर तो मानो सीमा और भी बुरी तरह चीखने और चिल्लाने लगी।
2: छोड़, छोड़ मुझे।
0: फिर उस पर कुछ छिड़का गया जिससे वो अचानक ही शांत हो गई। फिर वो खुद ब खुद उस व्यक्ति के पीछे उस मंदिर के अंदर चली गई। आधे घंटे के अनुष्ठान के बाद सीमा लगभग निर्जीव होकर बाहर निकली। फिर उसे आराम से गाड़ी में बैठा दिया गया। उसकी गाड़ी में बैठने के बाद उन पंडित ने उन सभी लोगों को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस रास्ते वो कल गुजरी थी वहां एक घर पड़ता है। आज से करीब 8 साल पहले वहां एक लड़की को दहेज के लिए उसकी शादी के बाद पहली ही रात जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं उसके ससुराल वालों ने उस मासूम लड़की को उस रात आग की लपटों में जिंदा ध्वस्त कर दिया था और बाद में घर में धोखे से आग लग जाने की अफवाह फैलाकर उसके अगले ही दिन वो गांव छोड़कर चले गए। पर एक और चीज थी जिसे वो छोड़कर जा रहे थे और वो थी उस लड़की की रूह।
3: The Haunted Place। गुजरात में ऐसी कई जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं जगहों में से एक जगह है डुमास। डुमास का बीच गुजरात की खूबसूरती का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर अपनी खूबसूरती के अलावा एक चीज और है जिसकी वजह से गुजरात के डुमास का नाम हर किसी की जुबान पर होता है और वो है इस जगह पर भूत प्रेत से जुड़े आए दिन होने वाले हादसे, समुद्र में किसी के डूबने का एहसास, बचाओ बचाओ की चीख, रात में सोते हुए लोगों के कान में किसी का फुसफुसाना, रात में बीच पर टहलते हुए किसी के रोने या उससे भी बुरी तरह हंसने की आवाजें। डुमास घूमने आए कई सैलानियों को इस तरह की शिकायतें करते पाया गया है। कई लोग कहते हैं कि उन लोगों ने रात में कई बार किसी को समुद्र में डूबते हुए देखा है। वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हैं पर जब भी कोई उन्हें बचाने के लिए बीच की तरफ भागता है तो वो अचानक ही गायब हो जाते हैं। फिर अचानक ही आधी रात में सुनसान बीच किसी की हंसने की आवाज से गूंजने लगता है। कई सैलानियों का कहना है कि उन्हें रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने कहा है उन्हें रात में कोई चेतावनी देता है कि बीच की तरफ ना जाए। और बेवजह ही देर रात लोगों के हंसने और कई बार बेहद बुरी तरह से मातम मनाने की आवाजें लोगों ने यहां सुनी है। डुमास के स्थानीय लोग इन सब घटनाओं की वजह वहां पर होते अंतिम संस्कारों को बताते हैं। लोग कहते हैं कि जिन लोगों को मुक्ति मिल जाती है उनकी आत्मा अंतिम संस्कार के बाद धरती छोड़ देती है, पर जिनको मुक्ति नहीं मिलती वो प्रेत बनकर आज भी इस जगह पर भटक रहे हैं। वजह कोई भी हो, पर एक बात तय है, भूत प्रेत की ऐसी घटनाओं ने इस जगह को जितना डरावना बनाया है उतना ही इस खौफनाक रहस्य की वजह से गुजरात का डुमास लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और बना हुआ है हमारे देश का एक और हॉन्टेड प्लेस, द हॉन्टेड नाइट। डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।
4: His men stole the queen from her bed.
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

संगीत तो मेरा देश है और सप्तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसी अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीजों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और उपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हुए उस पद पर आगे गईं, जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीज़ों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को स्वर कोकिला कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं, जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी न भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो, यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में, यानी कि एक बड़े से कमरे में, उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

आवाज उनकी अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं, नाम आनंद घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी। बस तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में चार चांस लग गए थे। संगीत के साथ साथ उनकी सादगी इस तरीके से फैली जैसे मानो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब फैलती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। बेवफाई के बहुत सारे गाने जब उन्होंने गाए, तो उनमें से कुछ ऐसे गाने जो आज के शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और प्यारा सा गाना।

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गा करके अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर ये साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे ख्याम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो कि गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ऐ वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया। पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थीं जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई ऐसे गानों को गाए जो कि आज हमारे जहन में हमेशा से रहते हैं। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल, हर शैली में अपनी आवाज को इस तरीके से पहुंचाया जैसे मानो कि हम उन्हें सदियों से खोज रहे थे और आज वो हमें मिल पाई हैं। नई पीढ़ी के साथ में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2010 के बीच में तो कई ऐसे संगीतकार भी उनके साथ में आए, तो भी उनके साथ मिलकर के कई उन्होंने गाने गाए जैसे कि हमारी श्रेया घोषाल जी हैं, और उनके साथ में भी उन्होंने कई सारे गीतों को अपनी आवाज दी। तो आइए इस प्यारे से एक और गीत को सुनते हैं जो कि बेवफाई के नाम पर कई हम सबके जहन में आज भी रहते हैं।

भारत की कोकिला, स्वरों की देवी लता मंगेशकर दीदी को शत शत नमन। उनकी मधुर आवाज सदा हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। लता दीदी सिर्फ गायिका नहीं बल्कि सुरों की वह गंगा थी जिनका प्रभाव हमेशा हम सबके जहन में रहेगा। उनकी आवाज हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी धरोहर भी हैं। लता दीदी हमारे संगीत की आत्मा हैं, जिन्होंने अपने स्वरों से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है। उनकी गायकी हमें भक्ति, प्रेम और जीवन के हर रंग का अनुभव कराती है। इसी तरीके से आज का सफर, यानी कि आज का सफर हमारा लता दीदी के साथ उनकी यादों को लेकर के था। मैं हूँ आपकी आज एक ख्वाहिश, मिलूंगी एक नए सफर पे, एक नए संगीत के साथ में, एक नए गायक के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर
1: क्या